किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। आज दिन है बुधवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 45 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर ने बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर।

0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज मालाबार नीम के साथ हल्दी की सहफसली खेती इस विषय पर जानकारी दे रही हैं राम सबेरे वर्मा, और आपसे इस विषय पर बात कर रही हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, फसल उत्पादन के साथ साथ वानिकी प्रजाति के पौधों का रोपण कैसे करें, बहुत सारे कृषि वानिकी की पद्धतियां हैं जिनके तहत वानिकी प्रजाति के पौधे भी रहें और बीच में आप फसल उत्पादन भी कर सकते हैं। इसी पद्धति के तहत मालाबार नीम के साथ हल्दी की सहफसली खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व अपर कृषि निदेशक आर.एस. वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। वर्मा साहब, ये बताएं कि कृषि वानिकी और खास करके मालाबार नीम के साथ हल्दी की सहफसली खेती के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: किसान भाइयों नमस्कार। सहफसली खेती जो है उत्तर प्रदेश में पहले से की जा रही है, लेकिन मालावरी और हल्दी की खेती का ये प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। क्योंकि हम उत्तर भारतीय इस विधि को अपनाते नहीं थे, लेकिन अब किसान भाई लोग जब इससे मालूम हुआ कि क्या फायदा हो सकता है और उसकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है जो अन्य फसलों से शायद संभव नहीं है, तो उसके कैसे कैसे किया जाए इसको मैंने एक प्रयोग शुरू किया कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी कैसे बढ़ जाए और उसकी लागत कैसे कम हो जाए। तो जो गन्ना क्षेत्र है कुछ और दूसरी फसल को लेते थे, लेकिन वो आमदनी उस स्तर की नहीं होती थी जिस स्तर की

0: गन्ना क्षेत्र है, कुछ और दूसरी फसल को लेते थे, लेकिन वो आमदनी उस स्तर की नहीं होती थी जिस स्तर की आमदनी आपको मालावरी नीम और हल्दी या कोई दूसरी क्रॉप के रूप में साथ जब लेंगे, फसल के रूप में लेंगे, तो उससे जो फायदा होगा।
1: जी
0: जैसे मालावरी नीम है, ये दक्षिण भारत में इस काम के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर राय को लगाया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्लांट कुछ तैयार कर दीजिए कि जिससे हमारे किसानों की आमदनी फसल से ज्यादा अच्छी हो अगर ये एक साथ की जाए।
1: तो इसकी क्या खासियत महसूस कर रहे हैं आप?
0: जो हमने इसका ट्रायल किया, तो इस ट्रायल में 1,000 प्लांट्स हमने मालावरी नीम का साउथ इंडिया से मंगाया, और वो लगाने के बाद में सबसे अच्छी बात है कि ये 20 साल में जिस प्रकार से सागौन का पौधा तैयार होता है, सागौन के पौधे में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसको 20 साल में तैयार हो जाता है और किसान इसको बेचते हैं, वही पैसा मिलता है जो टीक से मिलता है।
1: हाँ,
0: आमदनी ये एक बहुत बड़ी बात
1: यानी
0: होगी।
1: जो सागौन से आमदनी होगी, ठीक आमदनी मालाबार नीम से भी हो सकती
0: नीम
1: है।
0: होगी, ऐसी होगी, क्योंकि हमने जो प्लांटेशन किया हुआ है इसको रोड साइड में किया है, और जो कि जब ये तीसरा साल है आज, तो तीसरे साल में लोगों को देख करके ये लगता है कि वास्तव में कोई बहुत ऐसी चीज है जिससे हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। मालावरी नीम को आप 3 बार कटिंग कर सकते हैं, हर 6 साल में बेच सकते हैं प्लाई इंडस्ट्री को,
1: जी
0: और अगर आप उसको टीक के रूप में देखना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, आजकल एक बर्मा टीक आता है मार्केट में, सब लोग उपयोग कर रहे हैं,
1: जी
0: तो वो 20 साल में काटते हैं। फर्क क्या है कास्ट में, ये 20 साल में तैयार होता है, और जो हमारी प्रजातियां हैं वो 50 साल 60 साल उसमें जाके सागौन तैयार होता है। तो ये की व्यवस्था है, और इससे कि हमारी किसान भाइयों की आमदनी हर हाल में बढ़ती है,
1: जी
0: पूरे देश में इसकी डिमांड है आज की डेट में।
1: तो इसका रोपण कितनी अंतरण पर करते हैं?
0: हाँ, एक पौधे के लिए जो इसको इसकी कैनोपी है उसको 100 स्क्वायर फीट चाहिए,
1: अच्छा,
0: और 100 स्क्वायर फीट का मतलब ये हुआ कि 10 × 10
1: फिट पर।
0: फिट पर,
1: हाँ
0: 10 फीट लंबाई और 10 फीट चौड़ाई।
1: हाँ
0: तो ये 10 फीट की जो लंबाई होगी, तो इसमें जितने पौधे आप लगा सकते हैं, 1 एकड़ में 400 पेड़ लगते हैं, चार
1: जी
0: सौ पौधे को रोपण करेंगे। और अब चूंकि ये पौधा इतना फास्ट ग्रोइंग है कि दो इस समय मेरे पास 3 साल का पौधा है,
1: हाँ
0: और वो 3 साल का पौधा 40 फीट का हो गया।
1: वर्मा साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे मालावार नीम के साथ हल्दी की सफसली खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-150-22-362, 94-150-22-362, 94-150-22-362। किसान भाई बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी आमदनी बढ़े तो उसके लिए आप अगर जरवल जाते हो तो उधर जाके देखिए, निश्चित रूप से जितनी आपकी कृषि की आमदनी है उससे 4 गुने से कम पैसा नहीं मिलेगा मित्रों। इसलिए किसान भाइयों, हमारे साथी भाइयों, आप सभी लोग इसकी खेती करिए और अपने आर्थिक जीवन को संभालिए।
1: आर्यस वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मालावार नीम के साथ हल्दी की सफसली खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मालाबार नीम के साथ हल्दी की सह फसली खेती, इस विषय पर अभी कृषि चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत हमें जानकारी दे रहे थे राम सबेरी वर्मा, और आपसे इस विषय पर बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का सुविचार दान।
3: स्वेच्छा पूर्वक पात्र व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार निस्वार्थ भाव से दिया गया धन दान कहलाता है। दान में दातापन का भाव नहीं होना चाहिए। मानव जीवन में दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। दान देने से आत्मिक शांति एवं प्रसन्नता मिलती है। इससे समाज में सहानुभूति, भाईचारा, प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ती है। दान देने से व्यक्ति का मानसिक तनाव भी कम होता है, ऐसी मनोवैज्ञानिकों की

0: मान्यता है। हमारे शास्त्रों में दान को मनुष्य का परम कर्तव्य और संस्कार माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दान तीन प्रकार का होता है, सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। आवश्यकता और उपयोग के आधार पर दान के कुछ अन्य प्रकार भी प्राप्त होते हैं, यथा अन्नदान, विद्यादान, औषधि दान, वस्त्रदान, श्रमदान, समयदान इत्यादि। भूखों को भोजन और अनाज देना अन्नदान के अंतर्गत आता है। किसी को शिक्षित करना या विद्या प्राप्त करने में सहायता करना विद्यादान है। रोगियों के इलाज व उनकी औषधियों का प्रबंध करना औषधि दान है। पात्र व्यक्ति को कपड़े, कंबल आदि उपलब्ध कराना वस्त्र दान के अंतर्गत आता है। अपना समय निकालकर किसी की निस्वार्थ रूप से सेवा शुश्रूषा करना समय दान कहलाता है। इनमें से अन्न दान को महादान कहा गया है, किंतु विद्या दान उससे भी बढ़कर है, क्योंकि अन्न से तो क्षणिक तृप्ति होती है, किंतु विद्या दान से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तृप्त हो जाता है। अन्नदानम महादानम विद्यादानमतः परम अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यावज्जीवं च विद्यया। शास्त्राध्ययन से ज्ञात होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा शिव, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज रघु इत्यादि राजाओं ने दान की महिमा को भली प्रकार समझा था। आज भी इन सब का नाम अत्यंत आदर एवं श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। महाराज रघु तो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने विश्वजीत यज्ञ में अपना संपूर्ण धन ही दान कर डाला था। उसी समय वर्तंतु के शिष्य कौश उनके पास गुरु दक्षिणा हेतु 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की याचना लेकर उपस्थित हुए। महाराज रघु ने कौश को दक्षिणा देने का निश्चय करके कुबेर पर आक्रमण करने का विचार किया, किंतु उनके आक्रमण के पूर्व ही कुबेर ने उनके खजाने को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया, जिससे महाराज रघु ने कौश को संपूर्ण खजाना दे दिया। किंतु कौश ऐसा त्यागी था कि वह आवश्यकता से अधिक धन लेने से मना कर दिया। ऐसा दिव्यदाता और ऐसा अद्भुत गृहीता भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलता है, जो आज भी सबके चित्त को आह्लादित करता है। दान की इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है। दान की महिमा का ही एक अन्य उदाहरण श्लाघनीय है। महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों तक का दान जगत कल्याण के लिए सहर्ष कर दिया था। इस प्रकार दान प्रत्येक युग एवं काल में महत्वपूर्ण रहा है। इसकी महिमा का ख्यापन अनिर्वचनीय है।
1: दान। डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है। प्रभु अपने भक्तों का सदैव हित करते हैं। यदि प्रभु की कृपा दृष्टि पानी है तो आइए चलते हैं प्रभु के धाम और लगाते हैं प्रभु की जय।

हे ईश्वर, इस सृष्टि को तूने बनाया है, इसे अपने हाथों से सजाया है और हम प्राणियों को ये जीवन वरदान में दिया है। हमें इस जीवन के हर पल का ज्ञान तूने ही कराया है। हे प्रभु, अपनी इस कृपा को बनाए रखना, हमें सही और गलत में भेद करने की समझ देना, हमें शिष्टाचार, शांति, संयम व सहनशीलता की भावना प्रदान कर, जिससे हमारे द्वारा कोई भी किसी को भी कभी दुख न पहुंचे।

सिया भी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। प्रभु आप जगत के पालनहार हैं, दुखों को हरने वाले हैं। जब जब अंधकार ने धरती पर अपने पांव पसारे हैं, तब तब आपने अवतार लेकर हमें दुखों से बचाया है। हे प्रभु, पृथ्वी पर अवतार लीजिए और हम भक्तों का कल्याण कीजिए।

माता रानी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माता रानी उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटाती। किस्मत के मारों का माता रानी ही बेड़ा पार लगाती हैं। हे माता भवानी, आप संपूर्ण जगत की जननी हैं, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।

श्रोताओं, हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराध्यना यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ भाग 218।

भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया, किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है, उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे चतुर सेन और राजेंद्र करचू के। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह की 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: राजसिंह चौहानः अवोचत् यत् कोऽपि अर्हः ग्रामीण श्रमिकः एकमपि दिनं कार्यं विना न भवेत्। श्री चौहानेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वकारेण राज्यैः केन्द्रशासित प्रदेशैः च साकं दृढ समन्वयं विधाय अस्याः नूतन व्यवस्थायाः निर्बाध संचालनाय सर्वाः प्रशासकीय वित्तीय च सज्जता विहिता। अवधेयास्पदं वर्तते यत् पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां वर्धिता अयं वृत्त्यवसरः ग्रामीण आजीविकां सुदृढां करिष्यति, चिरस्थायि सामुदायिक सम्पत्तीनां निर्माणं च विधास्यति। अनेन सहैव विकसित भारतस्य संकल्पं तीव्रगत्या प्रवर्तयिष्यते। जापान देशस्य प्रधानमंत्री साने तकाइची अद्य सायं त्रिदिवसीय भारत यात्रा प्रसंगे नवदेहलीं प्राप्स्यति। इयं तस्याः प्रथमा आधिकारिकी भारत यात्रा वर्तते। सा श्वः प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह षोडशे भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। इदं शिखर सम्मेलनम् उभयोर्देशयोः कृते द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र क्षेत्रस्य समीक्षां सुदृढीकरणं च विधातुं सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचाराणां विनिमयीकरणं कर्तुमेकं प्रकृष्टम् अवसरं प्रदास्यति। उत्तराखंड राज्यस्य मदरसा शिक्षा प्रणाल्याम् अद्यारभ्य एकं बृहत् परिवर्तनं प्रवृत्तं संजातम्। अस्याः नूतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया निष्क्रियो भविष्यति। सहैव राज्यस्य सर्वाः अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाः एकेन विनूत्नेन तंत्रेण संचालिताः भविष्यन्ति। अद्य जुलाई मासस्य एक दिनांकतः उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियमः 20-26 तथा उत्तराखंड सर्वकारीयेतर अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 20-19 इत्येते सर्वे निष्प्रभाविनः अभवन्। राज्य प्रशासनेन उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था अधिनियमस्य अन्तर्गतं एका नूतना व्यवस्था प्रवर्तिता। अस्य प्रत्यग्र तंत्रस्य अन्तर्गतं उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणम् एव शिक्षायै उत्तरदायी भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। दोस्तों, हमारी दिनचर्या और हमारी रोजमर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही है समाज में डॉक्टर का महत्व और उनकी भूमिका के बारे में। आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज का दिन और आज का विषय दोनों ही अत्यंत विशेष हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनके होने से जीवन में एक सुरक्षा की भावना जुड़ी होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से रोग में भी विश्वास और राहत महसूस होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की। आज विश्व चिकित्सक दिवस है, एक ऐसा अवसर जब हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और उस अदृश्य सेवा को पहचानते हैं जो वे हर दिन हमारे लिए करते हैं। कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में, कभी इमरजेंसी रूम में, कभी ओपीडी में और कभी हमारे गांव के किसी कोने में जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं, लेकिन सेवा का जज्बा असीमित होता है। श्रोताओं, डॉक्टर्स केवल दवाई देने वाले लोग नहीं होते, वे उस विश्वास के स्तंभ होते हैं जिन पर हम अपने और अपनों के जीवन की रक्षा की उम्मीद टिकाए रहते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रोग के लक्षण नहीं, रोगी की पूरी कहानी समझने का प्रयास करता है, और ये समझ, ये संवेदना, ये करुणा, यही डॉक्टर को एक सामान्य पेशेवर से ऊपर उठाकर एक सामाजिक हीरो बना

0: देती है। एक ऐसा हीरो जो न ताली बजाने से दिखता है, न मंच पर खड़ा होकर भाषण देता है, बल्कि अपने सफेद कोट में चुपचाप हर दिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। डॉक्टर बनना कोई एक दिन का सफर नहीं होता है, इसके पीछे होता है एक लंबा संघर्ष, वर्षों की पढ़ाई, न जाने कितनी नींद रहित रातें, असंख्य इम्तिहान और फिर रोगियों की सेवा में डूबा एक समर्पित जीवन। ये पेशा केवल ज्ञान नहीं, सहानुभूति की भी मांग करता है। हर दिन न जाने कितनी भावनात्मक स्थितियों से होकर गुजरना होता है, किसी को बुरी खबर देना, किसी को उम्मीद देना, किसी को असहनीय दर्द में देखना और फिर भी शांत रहकर समाधान की दिशा में काम करते रहना, ये केवल एक कुशल चिकित्सक ही कर सकता है। आपको याद होगा जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई थी, तब पूरे विश्व में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं, लेकिन डॉक्टर ही थे जिन्होंने पीपीई किट में कई कई घंटे बिना आराम किए ड्यूटी की। कई बार उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी, संक्रमित रोगियों के बीच खुद को जोखिम में डाला, लेकिन मरीजों को छोड़ना नहीं चुना। ये त्याग, ये सेवा का भाव, यही डॉक्टर्स की असली पहचान है। और आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि डॉक्टर होना महज एक पेशा नहीं, ये एक जीवन की तपस्या है। हमारे भारत देश में तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और ये केवल एक कहावत नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसे हर गांव, हर कस्बा, हर घर महसूस करता है। वो बूढ़ा पिता जो अपने दिल की दवाई समय पर लेकर फिर से खेत में काम करने लगता है, वो माँ जो अपने बच्चे को तेज बुखार में डॉक्टर के पास ले जाती है, वो नवयुवक जो एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ता है, हर एक को एक डॉक्टर की उपस्थिति उसका आत्मविश्वास, जीवन देती है और उसकी सेवा शक्ति देती है। आज के दिन आइए हम ये भी समझें कि डॉक्टर का सम्मान केवल फूलों से, भाषणों से या एक दिन की सराहना से नहीं होता। डॉक्टर का असली सम्मान तब होता है जब हम उसकी सलाह को गंभीरता से लें, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद उठाएं, दवाओं का पालन करें और झूठी अफवाहों से दूर रहें। डॉक्टर तभी बेहतर सेवा दे सकता है जब समाज भी जागरूक और सहयोगी हो। एक और बात श्रोताओं, जो आज के दिन हमें सोचनी चाहिए, वो ये है कि मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों के अलावा भी कई ऐसे सहायक कर्मी होते हैं जैसे नर्सिंग, पैरामेडिक्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, जो पूरी टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर उस टीम का वो ध्रुव तारा होता है जिसके निर्णय, मार्गदर्शन और नेतृत्व से पूरा इलाज संचालित होता है। इस टीम भावना को समझना और डॉक्टरों के परिश्रम को समाज में उचित मान्यता देना बहुत आवश्यक है। आज के दिन हम अपने बच्चों को ये भी प्रेरणा दे सकते हैं कि वे डॉक्टर बनने की ओर सोचें, क्योंकि ये न केवल करियर का एक श्रेष्ठ विकल्प है बल्कि समाज की सेवा का एक सीधा रास्ता भी है। अगर हमारे युवाओं में सेवा का भाव हो, दूसरों के दुख को समझने की संवेदना हो और समर्पण का मन हो, तो डॉक्टर बनकर वे दुनिया को वास्तव में बदल सकते हैं। श्रोताओं, डॉक्टर का काम केवल शरीर का इलाज नहीं बल्कि आत्मबल को भी पुनर्जीवित करना है। जब कोई कहता है डॉक्टर साहब ने कहा है सब ठीक हो जाएगा, तो ये वाकई ही आधा इलाज होता है। यही कारण है कि डॉक्टर को केवल शारीरिक चिकित्सा का ही नहीं बल्कि मानसिक संबल का भी स्रोत माना जाता है। तो आइए आज के इस विशेष दिन पर हम डॉक्टरों को दिल से धन्यवाद दें, उन्हें सम्मान दें और अगर संभव हो तो धन्यवाद का एक संदेश भी भेजें। कभी कभी ये छोटा सा भाव भी उन्हें और आगे सेवा करने की प्रेरणा दे सकता है और डॉक्टरों के इस अमूल्य योगदान को न भूलें, क्योंकि जब हम थकते हैं, टूटते हैं, बीमार होते हैं, तब यही होते हैं जो बिना शोर के हमारे लिए लड़ते हैं। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: समाज में डॉक्टर का महत्व और उनकी भूमिका, इस विषय पर हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। और अब आइए डालते हैं एक नजर आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 से हमारे दिल्ली केंद्र से। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी प्रयागराज की मरकज से। इसमें आज की पेशकश होगी मकाला, बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार। मकाला निगार होंगी डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलामे

काला निगार होंगी डॉक्टर नीलोफर हफीज और कलाम शायर होंगे असलम आदिल। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस इस विषय पर विविध प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। कानून की बात हमारी केंद्र से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 से, जिसमें आज आप सुनेंगे भ्रष्टाचार रोकने में जन सहयोग। इस विषय पर विशेषज्ञ कुंवर शशांक एडवोकेट हाई कोर्ट से भेंटवार्ता। भेंटकर्ता होंगे आतिश कुमार श्रीवास्तव। मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम आंगनबाड़ी के अंतर्गत दोपहर 1:15 से चर्चा होगी। सुरक्षित गर्भावस्था, संस्थागत प्रसव, आयरन और पोषण अपनाएं, खून की कमी को दूर भगाएं, स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत बनाएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित भोजन के नियम, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना इस विषय पर। साथ ही आज की भेंटवार्ता का विषय रहेगा महिलाओं में हड्डियों का स्वास्थ्य जोखिम व रोकथाम के उपाय। इस विषय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल लखनऊ के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निर्मेश भल्ला से भेंट करेंगी नीना सोनकर। लोकगीतों के लोक माधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 से आप आनंद लेंगे हरीश चंद्र गिरी व साथियों का आल्हा गायन। इन्हीं के गाए आल्हा गायन आप सुन सकते हैं लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:50 पर भी। तो ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं नमस्कार। लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविध

नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव सेवा, समर्पण और जीवन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे।

दोस्तों, हर साल 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस देश के महान चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि संयोगवश उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुआ था। डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि सेवा, संवेदना और समर्पण का दूसरा नाम है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, अपनी बीमारी, पीड़ा या संकट से जूझ रहा होता है, तब एक चिकित्सक अपने ज्ञान, अनुभव और मानवीय संवेदनाओं के माध्यम से उसे नया जीवन देने का प्रयास करता है। यही कारण है कि चिकित्सकों को समाज में अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

दोस्तों, सदियों से भारत की चिकित्सा परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। आयुर्वेद के जनक माने जाने वाले महर्षि चरक, महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े अनेक भारतीय चिकित्सकों ने चिकित्सा जगत को एक नई दिशा प्रदान की है। आज भारत स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और विश्व भर में अपनी पहचान बना रहा है।

दोस्तों, कोरोना महामारी का समय तो शायद हम कभी नहीं भूल सकते, जब पूरा विश्व भय और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। तब हमारे डॉक्टरों ने, नर्सों ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने परिवारों से दूर रहकर अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों लोगों की सेवा की। कई सारे डॉक्टर्स ने तो स्वयं अपने प्राणों की परवाह किए बिना मानवता की रक्षा का दायित्व निभाया। उन्होंने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन मानवता का एक बेहतरीन उदाहरण दिया। उनके इस त्याग और समर्पण को देश सदैव सम्मान के साथ याद रखेगा।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हमें ये अवसर देता है कि हम उन सभी डॉक्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें जो दिन रात लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा में लगे रहते हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर महानगर का आधुनिक चिकित्सा संस्थान। हर स्थान पर चिकित्सक समाज की सेवा में निरंतर कार्यरत हैं। एक चिकित्सक केवल रोग का इलाज नहीं करता, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, रोगों से बचाव और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के लिए भी प्रेरित करता है। आज की बदलती जीवन शैली के कारण अनेक नई स्वास्थ्य चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में डॉक्टरों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, हमें भी अपनी जिम्मेदारी को अब समझना होगा, अपने चिकित्सक द्वारा दी गई सलाह का पालन करना होगा, समय पर दवाइयां लेना, स्वच्छता बनाए रखना और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस केवल डॉक्टरों का सम्मान करने का दिन नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने और स्वस्थ जीवन जीने का भी संदेश देता है। अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चिकित्सक केवल जीवन नहीं बचाते, बल्कि टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जीने का विश्वास भी देते हैं। आइए इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर हम सभी अपने जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, डॉक्टरों के प्रति सम्मान व्यक्त करें और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना बेहतरीन योगदान देने का संकल्प लें। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जैसे जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार

0: रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
3: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास कर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से

0: संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब एक दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
1: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले दो दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा सुशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इसमें आज सुनिए कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन। राग है बसंत मुखारी।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध थी और राग था बसंत मुखारी। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को हैं, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।

0: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रूपए, गोवा में 406 रूपए और केरल में 401 रूपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रूपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के तरवर इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर

आयोजित कर रहे हैं। सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस

0: डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरे होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है, एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की

0: पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। सुबह के 8:15 और 8 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत कार्यक्रम यंग वरेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम यंग बरेली में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे कार्यक्रम को सुन रहे होंगे। तो भाई रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिए क्योंकि हम आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी हाँ, तो जो लोग अभी तक सो रहे हैं भाई उठ जाइए, 8:15 चुके हैं भाई, कार्यक्रम यंग बरेली लेकर हम हाजिर हो गए हैं। श्रोताओं कहते हैं कि जहां चाह वहां रहा, मन में जैसा हम सोचते हैं अगर उस ओर हम कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं तो वैसा हमें मिल जाता है। अगर जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो लगातार ईमानदारी से प्रयास करना होगा। और आज यंग बरेली कार्यक्रम में यंग अचीवर हैं समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित श्री उमेश कुमार जी, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम यंग बरेली लेकर हाजिर हैं और आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक बुधवार को लेकर आते हैं अपने यंग अचीवर को। आज 1 जुलाई को आज हमारे साथ कार्यक्रम में यंग अचीवर इस समय मौजूद है समीक्षा अधिकारी मिस्टर उमेश कुमार जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी।
1: थैंक यू सर।
0: उमेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने RO AR की परीक्षा 2023 में अप्लाई किया था, अप्रैल 26 में इसका परिणाम आया था।
1: हाँ सर।
0: और जिसमें आपने 145वीं रैंक हासिल की थी। हाँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, आपके जो शिक्षक गण हैं उन सभी को शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद सर।
0: कैसे मन में आया कि हमें इस ओर जाना है, हमें समीक्षा अधिकारी ही बनना है?
1: सर, ये शुरुआत में UPPCS की तैयारी करता था, तो उसी के थ्रू में इसका भी लोक सेवा आयोग द्वारा ही कराया जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से।
0: जी।
1: मैं, ये मेरा ये तीसरा प्रयास था, इससे पहले मैं 2 प्रयास दे चुका हूँ लेकिन फाइनल नहीं, सिलेक्ट नहीं हो पाया था। इस तरफ जाने का प्रयास मेरा जो था 2017 में शुरू हुआ था।
0: जी।
1: 2017 में मैंने पहली बार सिविल सेवा की तरफ रुख किया था और उसी के दौरान मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।
0: जब आपने इस ओर रुख किया तो कोई खास वजह, किसी व्यक्ति ने आपको प्रेरित किया हो?
1: हमारे सीनियर से, मेरे एक मित्र है डॉक्टर प्रशांत गंगवार
0: जी,
1: तो उन्होंने हमको मतलब सजेस्ट किया था कि मुझको ये सब देना चाहिए।
0: आप तैयारी कर रहे थे तो किस दौरान कोई जॉब भी कर रहे थे या सिर्फ तैयारी में ही मशगूल थे?
1: नहीं सर, मैं जॉब नहीं कर रहा था, जॉब नहीं कर रहा था, तैयारी किया।

0: लगातार मैं मेंस दिया हूँ, ये मेरा 8वां मेंस था सब मिला के। एक
1: यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत की है।
0: लंबी यात्रा रही है सतत रूप में।
1: थोड़ा बताइए अपने शिक्षा के बारे में, कहाँ से आपने प्राइमरी शिक्षा पाई है
0: मैं
1: और
0: मूल रूप से ये पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील का साबेपुर का रहने वाला हूँ,
1: जी
0: और मैंने यहीं से अपनी जो बेसिक शिक्षा है वो प्राथमिक विद्यालय साबेपुर में पूरी की, इंटर कॉलेज बीसलपुर से,
1: जी
0: और फिर जो यहाँ गवर्नमेंट राजकीय डिग्री कॉलेज है वहां से मैंने विज्ञान विषय में स्नातक किया है,
1: जी
0: और इतिहास विषय में फिर एमए किया है, और इसके बाद नेट जेआरएफ।
1: बहुत ही उत्तम शिक्षा आपकी रही है। आपने कहा कि हमने 8 मेंस दिए हैं, ये आपका 9वां प्रयास था या 8वां प्रयास था?
0: 8वां प्रयास था, टी आर ओ
1: जी
0: का तीसरा प्रयास था, रिव्यू
1: जी
0: आर्टिकल।
1: यानी कि इससे पहले आपने 7 मेंस एग्जाम दिए हैं ना, तो आप 7 बार असफल रहे। कैसा
0: जी, सर
1: महसूस करते थे आप जब असफलता आती थी, तो कैसा आपके मन में
0: ये
1: परिवार वाले के
0: जो
1: जो लोग थे उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी?
0: सर क्या है ना, ये सिविल सेवा थोड़ा जटिल श्रम साध्य एग्जाम है, काफी चरणों में होता है, डिस्क्रिप्टिव है, तो इसके लिए सतत प्रयास आवश्यक है, लगातार प्रयास करते रहना। 3 चरणों का एग्जाम है, तो असफलताएं तो घेरती भी हैं, और कहा भी जाता है, इसे लिखा भी है कि ऊपर नीचे होना आम बात है। जैसे निराला जी ने लिखा है एक जगह कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, जीवन में रह रहे उड़ता रावण जय में। तो ये आते जाते रहते हैं, मुश्किलें आती हैं, फिर उनसे लड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, असफलताओं से सीखते हैं, और ऐसे ही चलता रहा हमारा।
1: कभी मन में आया कि नहीं आप खेती बाड़ी कर लेंगे या कहीं पढ़ा लेंगे, लेकिन ये बड़ा 7 बार आपने मेंस दिया है ना, तो थोड़ा लगता है कि अब छोड़े काफी समय हो गया है।
0: हाँ, जैसे थोड़ी बहुत जब भी आप निराश होंगे तो निराशा आती है, लेकिन हर बार लड़ने की क्षमता ने ही मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, और मैं हर बार प्रयास करता था, फिर सोचता था कि एक बार और करते हैं, और ऐसे निरंतर प्रयास होते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, और इसमें मेरे माता पिता मेरे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है।
1: जी संघर्ष दिनों में ऐसे कौन से लोग रहे जिनका आप विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहेंगे कि भाई उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया?
0: जो मेरे छोटे भाई हैं
1: जी
0: देविंदर, सतिंदर और अवनीश, उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस यात्रा में, उनके बिना शायद ये सफलता अधूरी थी, और हमारे मित्रगण भी हैं, साथ दिया है, क्यों
1: आपका
0: सर।
1: जो यहाँ तक का सफर है उसके पीछे आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपके साथ खड़े रहे, अच्छी बात है। परिवार जब साथ हो, ये
0: क्या है ना
1: मंजिल जो
0: सर,
1: है
0: वो आसान हो जाती है।
1: आसान हो जाती है और जो हमारा गंतव्य है, जो हमारा मार्ग है, वो और सरल और सुगम बन जाता है ना?
0: क्या है ना सर, सफलताएं जो होती हैं वो एकांकी नहीं होती हैं, उसमें हजारों लोगों का सहयोग, मार्गदर्शन रहता
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल सही बात है आपकी।
0: उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के बनाए रास्तों ने हमें आसान किया यहाँ तक पहुंचने के लिए।
1: उमेश जी, जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, अभी कुछ लोग तो तैयारी कर रहे हैं या कुछ लोग सफल हो चुके हैं या कुछ लोग बस इस ओर जाने वाले ही हैं, तो आपका क्या उनके लिए एक संदेश होगा कि भाई वो किस तरह से मन में अपना कौन सा दृढ़ संकल्प रखें ताकि इस ओर वो सफल हो पाए? क्या कहेंगे आप उनके बारे में?
0: एक तो सर निरंतर सतत रूप में प्रयास करें, मन को स्थिर रख के, दूसरा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है
1: जी
0: उनसे एक निश्चित दूरी बनाए रखें, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: मोबाइल से बहुत ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छी है, लेकिन बशर्ते आपको ये जानना है कि हमें मोबाइल का कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं करना है,
1: जी
0: क्योंकि सतत रूप में आप जब पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, ऑथेंटिक किताबें पढ़ेंगे, तभी आप इस दिशा में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि यहाँ क्षणिक नहीं है, सब दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर पढ़िए, थोड़ा रोज सीखिए, रोज लिखने का अभ्यास कीजिए, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमें इस कार्यक्रम हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया।
0: सर मैं ये पंक्तियां कहना चाहूंगा कि
1: हाँ हाँ
0: सभी के लिए
1: जी
0: कि यही हौसला रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर सही यहां से जल भी निकलेगा, और
1: जी
0: होना मायूस अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकले।
1: क्या बात है, बहुत खूब पंक्ति आपने कही। और निश्चित तौर पर जो हमारे युवा साथी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे तो वो निश्चित तौर पर आपकी इन बातों से प्रेरणा लेंगे, जहां वो जाना चाहते हैं, जिस मंजिल को वो पाना चाहते हैं, उस ओर निरंतर प्रयास करेंगे। प्रयास करते करते वो अपनी मंजिल को पा लेंगे। और आकाशवाणी बरेली को आपने समय दिया है उमेश जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी बरेली परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में आप प्रतिष्ठित हों, यही हमारी शुभकामना है।
0: थैंक यू सर।

और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यंग बरेली। श्रोताओं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इनकी मनरेगा बुधवार से यानी आज से 1 जुलाई से बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBGRAMG हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आज से। जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि इसमें रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं और बरेली में सबसे पहले योजना के तहत पौधारोपण का काम किया जाएगा। जी हां, सबसे पहले बरेली में पौधारोपण का कार्य इस योजना के तहत किया जाएगा। जिले में ग्राम विकास विभाग को 22 लाख पौधों का रोपण का जो है वो लक्ष्य मिला है। इसे मनरेगा यानी कि VBGRAMG योजना के तहत कराया जाना है।

श्रोताओं, बरेली में इसको चलो अभियान का जो है संचालन जो ये अभियान शुरू होने जा रहा है, इसको चलो अभियान, ये आज शुरू हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको स्कूल से जोड़ना जो अभी तक शिक्षा से वंचित हैं, और जिले के विभिन्न ब्लॉकों और गांवों में शिक्षा के प्रति जागरूकता रैली निकाली जाएगी आज। और सुविधाएं से बच्चों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, स्कूल बैग, जूते, मोजे और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षक हैं और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा घर घर जाकर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसका उद्देश्य है यही। तो आपके आसपास भी अगर बच्चे हैं जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उन्हें भी आप स्कूल भेजें ताकि शिक्षा से कोई बच्चा वंचित ना रह जाए।

शुदा वक्त आप सुन रहे हैं करके हम यंग बरेली और आज है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। जी हाँ, भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और ये दिन देश के महान चिकित्सक, शिक्षाविद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पित है। इसका उद्देश्य लोगों को निवारक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूक करना है।

और सतियों, बरेली के मौसम की बात की जाए तो भाई कल बारिश हुई थी और बरेली का जो न्यूनतम तापमान रहेगा वो 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना भी बन रही है।

तुषिता ये तो था कार्यक्रम आज का यंग बरेली, कैसा लगा आपको? आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर बता दें, पता है हमारा कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन नंबर है 2300001।

0: यंग बरेली, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। आइए अब लोकगीत सुनवाते हैं आपको। ये स्वर है डोरीलाल गोला का।
1: जाकी

आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ, और इस वक्त आप सुन रहे हैं लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत हम, आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आपको जोड़ रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा कार्यक्रमों से, जिन्हें रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: बिलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्व भर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है, इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत। अलका याग्निक, अभिजीत की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है जुदाई।

अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश शमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या

बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे, नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मेलोडी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो टल जा।
1: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: प्रियंका शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और लीजिए अब हम लेकर हाजिर हो गए हैं आप सभी का चाहता कार्यक्रम। जी हाँ, जो कि है सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम, इसका नाम है आपकी पसंद। तो आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का हम आगाज करने जा रहे हैं, फिल्म का नाम बता दें आपको, फिल्म है चश्मे व दूर। इसे गाया है यशुदास और हेमंती शुक्ला ने, संगीत है राजकमल का और पसंद आप सभी की है। आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। ये हैं नगरिया कलान बरेली से मोहम्मद अकरम अंसारी साहब। आप हैं करुड़ा मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान साहब। सिंधौली मीगंज, ये हैं साथी हमारे बारसी क्लब सिंधौली मीगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख साहब। और ये हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशी राजा, चतिन मस्कीन और मेघा मस्कीन। सजी मंडी कसौजामा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपला कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, करिश्मा कश्यप, मुस्कान कश्यप और सभी साथी इनके। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम मंदुरापुर उत्तर प्रदेश से भाई सोनू जी हैं, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा जी, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह साथ में हैं, मुकेश कश्यप और शीतल कश्यप। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से हैं अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। आप हैं कस्बा बराड जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नन कुकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। और आप लिख रहे हैं साथी हमारे कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमधमा ग्राम सुखरीकला से हैं अमित जंगेल, शकुनी जंगेल, आरती जंगेल, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। आप हैं सलार पहलगांव कश्मीर से परजादा मिर्जा उद्दीन यादव, ये साथ में हैं इनके सभी साथी। और आप हैं रेंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। ये हैं धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाड़े, संदीप बाड़े और अमूल बाड़े। आप लिख रहे हैं दुरा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। ये हैं मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मेफरा नवाज और बेबी चांद लिख रहे हैं हमें दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। ये हैं गाड़से नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा स्वप्रिल और रक्षिता लोखंडे। गांव जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, यारण प्रजापति, लवेश प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति। ये हैं साथी बिलदावगढ़ कासगंज से एम असलम सैफी, जैबन शाह बेगम, अकरम सैफी, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिर सैफी और आवाद खान। गहिंदोबारा से हैं मोहम्मद कलीम जख्मी, जेरा बेगम अंसारी, मोहम्मद

0: प्रेक्षकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

शाह मंगला बेन शाह, और साथ में राजेंद्र जी शाह लिख रहे हैं पद्मा टॉकीज नेपाल नगर एमपी से। और इसी गीत के लिए हम तक ये पसंद पहुंची है कृष्णा पार दिल्ली से सुखबेदर सिंह चौड़ा सूटी दीवाना। और आप हमारे साथी हमें ये पसंद भेज रहे हैं इसी गीत के लिए, ये हैं साथी सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन और भारत भाऊ तांतले लिख रहे हैं आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से। ये धोतरा जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। आप है बुधनगर खंडवा चंदोची से पप्पू राणा और बहुत सारे दोस्त इनके हैं। कस्बा बताइयों से धीरे गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डी के हेटर और सभी लोग परिवार के इनके ग्राम वीरपुर पोस्ट बिलसर तहसील गंजेटा से हैं। मिस्त्री विपिन कुमार शाह के, सपना शाह के, रविंद्र, राजेश, रमेश चंद्र शाह के, राजीव भाई, प्रदीप शाह के, रंजीत शाह, सिद्धार्थ शाह के, सुजाता हैं, संगमित्रा हैं, प्रज्ञा, प्रतिज्ञा और उनके माता पिता। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापर यूपी से मोहम्मद फरहान, सलमान, इरफान, इसरार और नरस खातून। आप हैं मोहल्ला हलवाईयान शेखड़ बिजनौर से मोहम्मद बका फरीदी भाई, मोहम्मद इकबाल फरीदी जी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादर रानी और हिना कौशल में लिख रहे हैं। और ये है ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसामा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, अनंत, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूर्यश्री यादव। आप हैं मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। आप हैं छत्तीसगढ़ से चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाह, खदीमा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। ये हैं साथी हमारे हाल टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार केला, यशोदा यादव, राजीव यादव और संजीव यादव। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा सबिया और अनस और रेहान। आप हैं लालकुर्ती रुटकी कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिक वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। ये हैं गांव भोजपुर तगात सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर भाई और वकील अहमद। मौलागढ़ ने बसी भोजपुरा जिला बदायूं से हैं, जिला बरेली से हैं मोहम्मद हसन अंसारी, अजरुद्दीन अंसारी। और आप हैं साथी हमारे सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं, शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। उत्तम कुमार बघेल साहब और रुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल लिख रहे हैं, पता गया है लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और आप हैं ग्राम पयोनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार संजो चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक, साथ में है पूरा इनका परिवार। गांव बांडी वाला फजल का पंजाब से है ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, साथ में है गरिमा और रजत बगड़िया। गाँव नंगखेड़ा फकवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा और राहुल शर्मा। आप हैं गुजरात से गांधीनगर से सुरेश राठौड़, मंजुला जी राठौड़ और विशाल, साथ में निशा। आप हैं झज्झरना से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक और रवि भाटिया। ये हमें पसंद भेजी है हमारे साथी ने ग्राम रसूडा, पता इनका है नरसिंहगढ़ से जिला राजगढ़ एमपी से गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी और कृतिका, रमेश चंद डांगी। आप हैं चमनपुरा उदयपुर से नसीम खान, सहीबा खानम, जब्बार मोहम्मद, फरीद बानो, अशरफ खान, रईस खातून और मंजू निम्मी। आप हैं ग्राम धुर्रबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू। शेकड़ बजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, नदीम बाकी, अब्दुल गनी और अलीमी, साथ में जन्नत भाई। और आप हैं गुजरात ग्राम से हैं प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी। यह बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संग्रामदीश रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान। आप हैं राम सिंह जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से अशोक बब्बर, पवन, राजेश, अजय, राहुल और वमनु। और आप हैं ये साथी हमारे नेहरू चौक पैठड से, पैठड का पता है ये, सुरेश यादव, अनिता यादव, आरती, पूजा प्रसाद यादव, सोनल यादव और बेबी सिया यादव। आप है ग्राम आनंदपुर दुनका मीरगंज बरेली से जितेंद्र
सिंह राजपूत, प्रभात राजपूत।

आप ट्यून क्या है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, आकाशवाणी बरेली हरदम आपके साथ। कार्यक्रम में आप सुनाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है अनामिका, इसे गाया है किशोर कुमार ने और संगीत दिया है राहुल देव वर्मन ने, बोल हैं मजरू के और पसंद है आप सभी की। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन।

इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र। कार्यक्रम में आप सुनवाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर। इसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। बोल है अनवर सागर के, संगीत है नदीम श्रवण का और पसंद है आप सभी की। आप हैं साथी हमारे पीपर पारा पालचुबा मंगोली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तर दिवाकर परमेश्वर दिवाकर भानुप्रिया योगता दिवाकर नितिन और वंशिका दिवाकर। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा लाडो कोयल मल्होत्रा

और उनके पिताजी हैं नाना चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कुल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। आप हैं साथी हमारे सफीदों सिटी हरियाणा से नाना खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव कुश और समस खन्ना परिवार। ये हैं वारिस अली खान साहब, इस्लामुन्निशा शकील, अहमद शाहनवाज खान और दानिश लिख रहे हैं संजयनगर ऐशवाक से। आप हैं भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशा छीपा, पूजा परिहार। आप हैं गिरगांव महाराष्ट्र से ज्ञान नांद्रे और मरोत्रा पांचाल। ये हैं विजय सुलकर, रत्ना सुलकर, कुमकुम गुड़िया, मोतला महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं अपनी पसंद। आप हैं गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी बामिका और वाणी थांदी। आप हैं मोहल पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। ये जिला खरगैन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मुसफ भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और यह सुदामा नगर खंडवासी लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश चक्ता। आप नावा जिला पटेला पंजाब से सोम दत्त का और कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और ये हैं उगति से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार गुप्ता, प्रिंस प्रशांत और कार्तिक कुमार गुप्ता। आप हैं शनि बाजार कस्बा उगति से प्रभाकर गुप्ता, आदेश गुप्ता, सचिन भाई, देव गुप्ता, प्रियल गुप्ता और कायरव गुप्ता, साथ में है गुप्ता परिवार पूरा। और ये हैं शमजगमर राही, शाहीन फातिमा और अनु खान। आप हैं साथी हमारे सदर बाजार कुराबली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेव वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। शेरवानी स्कूल गंदवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। सप्तरंग सदर परिवार से हैं कुमार वल्लवी, श्री रामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। पुनावले पुणे से ही हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने। ये हैं मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जश्मीन, शकीला, सना, समा, हिना, राजिया, सुल्तान अंसारी और परिवार के सभी लोग। ये हैं जबलपुर एमपी से हैं अशोक सिंह, अंकिता जी हैं, सुनीता जी हैं, ऋतु सिंह और गुड़िया वीरा सिंह हैं। आप हैं गेवराई महाराष्ट्र से चीनी फैक्ट्री के पास से हैं दिनकर सालवे, अजय राजपुरे, एकनाथ पवार और भाव साहेब मोटे। आप हैं कट्टा चांद खां, प्राणा शाह बरेली से हैं जनब साहब मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। ये हैं सूर्यवाड़ी छत्रपति समाजनगर से हैं प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी, सुभाष सदानंद और नीरज विराज। आप हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अजना गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामणि शेंडे। गांव लोगंड ठाकुर वाला से हैं स्वर सिंह गिल, अजीत सिंह, राजदीप सिंह, कुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और साथ में सुखदीप सिंह। ये हैं दादागंज से गंगोला से हैं इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान, आजम खान और रहमान खान। मोलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्ता अब्बासी। और ये हैं साथी हमारे बनिया पारा धतमरी छत्तीसगढ़ से हैं, राज्य से हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा और संध्या कुकरेजा। खुर्जा यूपी से हैं भाई तिलक साहब राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा भाई, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा साहब हमें लिख रहे हैं। और ग्राम करली प्राणी मस्जिद बरली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मिराज अंसारी, अबार भाई, अल्ताफ सन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिफ हुसैन। ये हैं अस्ता रोड विश्व विचारण सागर एमपी से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर, साथ में हैं जयपाल यादव।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: कार्यक्रम में अब हम सुनवाते हैं इन श्रोताओं की पसंद पर गीत। आप हैं अस्तार रोड, माफ कीजिए, ये साथी हमारे हैं भाटापारा से, छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। आप हैं भाटापारा से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, वैदेही जोशी, बेबी हसीना जोशी, कुमारी अंकिता जोशी और खंडवा एमपी से हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। ये हैं साथी हमारे श्री गंगानगर से हैं नेकी राम बंसीवाल और राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति सिंह, सुशांत और चुलबुल रानी। कोल सिटी बरकाना से हैं अफजाल ताज, शाहीन सुल्तान, सोनू तस्नीम, नेपी साहनी और मोहम्मद अफजाल मलिक। ये हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश कुम गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्य गोस्वामी। आप हैं ग्राम देवगांव तहसील पूना महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात। आप हैं भिलाई से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। ये हैं रावल करनाल से विनोद लखनपाल से हैं और साथी हैं ये हमारे श्री परमाल सिंह जी, मनोहर सिंह, राम सिंह, सुनील सिंह, छोटा सा मुन्ना, अभय प्रताप सिंह और साथ में इनके दोस्त मुकेश श्रीवास्तव, साथ में कार्तिक पेनली और सहेब अली। आप लिख रहे हैं ग्राम पस्तौर तहसील लावला जिला बरेली से और ये हैं बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल। आप हैं ग्राम पीपल लोड गांव, ग्राम इनका पीपल लोड है सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा और साथ में ज्योति और शिवांश वर्मा। आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरग, जतेक विरग और मीका विरग लिख रहे हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से। आप हैं सनावर से शेख मुसब मोहसिन, शेख अशोक वर्मा और राजकुमार बुढ़ाना। गुनौर यूपी से हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा। और ये हैं साथ ही हमारे हैं अजित कसाना, मायादेवी रितिका, आदित्य भाई और लिख रहे हैं कांट रोड लदावली से। ये हैं साथ ही आप में लिख रहे हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आयन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीता, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी लिख रहे हैं। गोविंदपुरा सीर राजस्थान से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आप हैं टाउन विशालगंज से हैं जिला बरेली से जितेश शाहू, सितेश शाहू, अभिजल गौर, शिवरतन साहू, नर्मदी साहू, विशाल साहू, सचिन साहू, शुभम साहू, दीपेश साहू, नानक राम सागर। और ये हैं नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेज लाम से, जय लाम से, हर्षिता लाम से और सभी साथी हमारे ये लिख रहे हैं। भोजपुर बरेली से हैं हसमुख जी, हसान, हसम, समस, इनाया और शानूर, फलकनूर, ताज और मोहम्मद अवनारूर। ये हैं प्रदीप साथी हमारे रामपुर रोड किला छावनी से प्रदीप कुमार पाल, नमन, पिंकी, राधे, गुरु, मुस्का, ज्योति देवी हैं, जयप्रकाश,

और माही, गरीब भाई, श्री राम राठौर और सभी लोग ये पसंद भेज रहे हैं। आप हैं हयात कॉलोनी आर्या बिहार से, फैसल इमाम मोहम्मद, अफजल मोहम्मद, अकलाम नफीसा परवीन और जोहादुल। और आप हैं साथी हमारे ग्राम पंचायत बागरगंज तहसील फतेहपुर पानी टंकी के पास हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अवैभीत, भगवान दे, स्वाति सिंह, तन्यागतम और सभी मित्रगण। और यहीं से हैं ग्राम मास्टर अख्तर अली, शाहरुख अली, शाहिवा, मोवीन, आसिफ अली और उनके सभी साथी लिख रहे हैं ग्राम पंचायत बागरगंज से। ये हैं राजपले से मोनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं, राजकुमार प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और साथ में हैं राजेश कुमार वर्मा। और ये हैं मऊ से ही हैं मुन्ना बाबू स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ये हैं गांव खोकरवाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। आप हैं कोटवा, नारायणपुर, पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिहा, नेवादा, गाजीपुर से जिला से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, पेंजल राय। और ये हैं साथी आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे, भाविक ढींगरा और सभी साथी हमें लिखे, धन्यवाद आपका। आप हैं वीरशहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री मैत्री, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय पी भी कुल थे। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

फिल्म का नाम है चांदनी, बोल हैं आनंद वशी के, संगीत है शिव हरिका और सिखाया है सुरेश भाटकर और अनुपमा देशपांडे ने।

कार्यक्रम में आप सुनाने जा रहे हैं आपको फिल्म का नाम है चितचोर। इसे गाया है यशुदास ने और पसंद आप सभी की आप हैं। यह है जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी और कीर्ति भारती और भानुप्रिया। ये है ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटना जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से लकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद बजेंद्र वर्मा, साथ में सूरज कुशल वर्मा। ये है मंजू कटीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकाश मलिक और माही मलिक। आप हैं शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, साथ में रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। जमनिया गाजीपुर से सूरज जसपाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जसपाल। ये हैं साथी है हमारे मंसूरी रेडियो क्लब नेशनल क्लब से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लोबना और यश मंसूरी। आप लिख रहे हैं जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गायवा मल्होत्रा, भाई सुचर सिंह पाठक, विनोदपुरी, जसपाल यादव और सभी साथी। आप हैं लक्ष्य हरिद्वार से मेहराज जहां, गुलाब साहब राही और मोहम्मद ताज अंसारी। ये हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से सूरज चौरसिया, सरोज चौरसिया, सुबोध चौरसिया, सलोनी चौरसिया, संजू लल्ला चौरसिया, बाबू शिवा, शिवानी चौरसिया और पवन गौड़, साथ में योगेंद्र नायक और सभी साथी इनके। ये हैं बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से श्रीमती सरिता चौरसिया, सुमित भाई और वीर और अवीर, नाबगंज कानपुर से हैं श्वेता चौरसिया, पंकज चौरसिया और पीहू और दिया चौरसिया। गुजरे दौर की अदाकारा माफ कीजिए। ये हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। आप हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी, गीतिका खोरबाल और भान प्रकाश। आप हमें लिख रहे हैं अपनी पसंद परभरी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रगेश संगई, प्रत्येश संगई और पूरा संगई परिवार। और ये हैं बडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और ये हम तक पहुंची है पसंद रामजी साहुल, जीमलाल, रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू लिख रहे हैं लक्ष्मीपुर छत्तीसगढ़ से। और आप हैं जीने माफ कीजिए इन्होंने अपना ये जी हैं जी विष्णु टेलर साहब हमें लिख रहे हैं अपनी ये पसंद। और आप हैं विष्णु मिस्की, रितिका मिस्की, बेटी वाणी, आरब, माताजी चंद्रकला जी हैं, पापा काशीनाथ, भाई गणेश जी, बहन सोनी और आरोही प्रियांशी। लिख रहे हैं दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। ये हैं बीड शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश कुलथे और सभी सुनने वाले। और ये हैं विशाल कटनकर, धनंजय कटनकर, गांधी बाग कोला से साथ में रमेश जी। और अमरावती से हैं कमर ठेकेदार नसीब बेगम, नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार भाई, हिब्जा नूरी, नथु भाई, साकिर घराना वाले।

ठेकेदार साहब हैं, शौकीर अंसारी और हिना जी हैं। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हजिंदर छिंदा, जसवीर चस्सी और सीता और गीता। आप हम लिख रहे हैं रामकंड से महेंद्र मोदी और सभी इनके साथी। महाराज दरवाजा एटा से हैं नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवीन हसन अब्बासी, सुहेल अनस, यनस यशफ और रशीद वारसी। लिख रहे हैं किदवई नगर सिदरा टाउन से जुबेर अली खान भी हैं, और या ये हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबड़ी से ज्ञानी अल्ले, नवदीप अल्ले, विश्वदीप अल्ले, अशोक अल्ले। और आप लिख रहे हैं रावणर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ काली और सभी इनके मिलने वाले। अकोट से हैं विनायक वेंडे, श्रीमती मंगला वेंडे, विजय शुभम वेंडे, पवन जरिए और संजीव डाविराव। आप हैं साथी हमारे उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौड़कर, राही श्रीमती सरिता गौड़कर, प्रणिता सिद्धांत गौड़कर, अर्जुन गौड़कर और सभी लोग। ये हैं नागपुर से वैशाली शैलेश गौड़कर, सुमित गौड़कर, कुमारी धोनी गौड़कर और प्रिंस एकांश। आप हैं कोड़ी सेक्टर 5 सुनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बाय हिमाक्षी। आप हैं रिजवान खान, अरिडा राजा खान, फायजा नाज, नाजिया खान और सभी साथी। लिख रहे हैं जिला मुरादाबाद ग्राम बिजना से। और आप हैं नई बस्ती गंडवारा से हैं मोहम्मद हसीन हाशमी, नाजा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तमीर हाशमी और कलीम अंसारी। फाजिलका पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शाली खेड़ा, तेवंशी खेड़ा, वानी खेड़ा और वी खेड़ा। ये हैं वटिंडा रोड मडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानी नारंग। आप हैं नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। पीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रेमला भावसार, भावेश कुमार भावसार, साथ में राकेश कुमार भावसार। ग्राम ब्रजपुर पोस्ट के नहावर जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हैं कुलदीप कुमार सक्सेन। ग्राम ब्रजपुर से पोस्ट के नहावर से जिला मैनपुर से हैं कुलदीप कुमार सक्सेना। और आप हैं साथी हमारे गांव डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हैं जसवीर सिंह अरोड़ा। आप हैं मल्यान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा, नाजिया, आसफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। आप हैं जयराम खोरबाल, सचिन खोरबाल, अमन खोरबाल, दीपांशु खोरबाल। लिख रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से। और आप हैं संगवा धमतरी से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देव चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गणेश जयंत कुमार और हयांत कुमार चंदन। आप मढ़ियाऊ जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम। रायपुर अन्य जिला बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी और आफिया परवीन। राजकोट से हैं जैमिनी कुमार भावसा, हेतल जैन और कृष्णा जैन, साथ में राकेश जैन। ये में लिख रहे हैं अरुण कुमार मालवीय दर्द, पूरा परिवार है इनका। लिख रहे हैं बड़ी गेवी चौराह वाराणसी से। और आप हैं जिला बिजनौर ग्राम हातमपुर शेख से मोहम्मद साहिर, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद इवाम। आप हैं शिवांग बुलबाड़ा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजांश एस काले और लोकेश एस काले। गली सिकलापुर बरेली से हैं रतनलाल मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य और चंद्र प्रकाश मौर्य। आप है सागर लखनादौन एमपी से लालाजी चौबे, लालजी चौबे, रेमजी चौबे, सक्षम चौबे और उनके पूरे परिवार के सभी लोग। आप हैं साथी हमें लिख रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर साहब, अब्दुल हक डावर, जाओल हक डावर। लिख रहे हैं खंडवा से और भटापारा से हैं सोहन जोशी जी। आप हैं सियोरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, अदीब और कादिर चौधरी। तस्लीम लख जिला रामपुर से हैं सकाबत हुसैन मंसूरी, तालिब हुसैन मंसूरी, तौफीक मंसूरी, लहीगंज मंसूरी, राहुल भाई और सुनील जी हैं सारे दोस्त इनके लिख रहे हैं। आप हैं नसीबन बेगम, करोला ठेकेदार, आयशा खान, हादिया खान, आफिया खान। लिख रहे हैं हमें अमरावती से, साथ में हैं साइदा भाई, सूफिया, अनस और आयजा, साथ में अल्फिया सरोज चौक से। ये हैं गांव जाखू राजस्थान से समुदार खटक, बिना देवी खटक हैं, अमरजीत खटक, सुंदर देवी खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और सभी साथी।

0: उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू राहुल, रश्मि प्रियांश, सृष्टि बनी, आरुष और दिनेश और सभी इनके परिवार के लोग। और आप है मौर्य बस्ती सुरक्षरा बरेली से रामगोपाल मौर्य, सुनीता मौर्य, कृष्ण पायल मानसी। महाराष्ट्र से हैं बालप्रसाद कारवां, गीतांजलि कारवां, आकाश कारवां और आकांक्षा कारवां। भाटापारा से हैं हीरामणि वर्मा, पाराशमणि वर्मा और पुष्पेंद्र वर्मा, साथ में अनोखलाल वर्मा। और ये हम तक लिख रहे हैं बीके हितन दास। और आप हैं साथी हमारे सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरफ खुराना और एस के पप्पी। और आप हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षद खुशी गोस्वामी। आप हैं शुभा गोदारा, बिमला गोदारा, इंदुपावती, हिमांशु गोदारा, लिख रहे हैं फाजिलका पंजाब से। और आप हैं साथी हमारे मोहम्मद वकील अहमद, नाजनी बेगम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कासिम कमर, मोहम्मद कामरान अहमद, मोहम्मद शाहजहाबाद अहमद, नाज प्रवीण, नाजिश प्रवीण, रूही प्रवीण, खुशू प्रवीण, मोहित आकिफ और मोहम्मद जैद। लिख रहे हैं सिराजपुर जिला सुपौल बिहार से। और साथी हमारे हैं आराधना मंदिर के सामने से गंगवार साहब, ये हैं बेचला गंगवार जी, लिख रहे हैं गुड्डी देवी, शांत देवी, ज्ञानंद देव, ज्ञानेंद्र देव और इला देवी हैं, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद कुमार दीक्षित, राज महावीर कश्यप और साथ में श्रीराम राठौर और रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम। पंचकुला से हैं राहुल खुराना, अजिता खुराना, केशु रिधाना खुराना और तुलसी मस्कीन। मकरा मंदिर बीड़ी कॉलोनी से हैं बिनी सिंह सागर, पंडलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश कुमार सागर, राजेश कुमार वर्मा, रोहित भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक सुगुन, सारांश अयांश, अदिति वर्मा और शिवान, साथ में है प्रताप सिंह। आप हैं जनप्रतिनिधि से हैं साथी हमारे प्रदीप, सलूजा, संकिता और प्रथम। ये हैं साथी हमारे हैं ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदर गुप्ता। और आप लिख रहे हैं मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता।
1: जब मैं 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं मैंने भी किया। मुझे एक

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सप्रंग, और सुनवाते हैं आपको ये गजल। स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

कार्यक्रम के आखिर सुनाने जा रहे हैं आपको ये गीत। इसे गाया है साधना सरगम ने, एल्बम का नाम है वादा और संगीत है भवदीप जयपुर वालों का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब आपको जोड़ रहे हैं FM रेनबो कार्यक्रमों से, रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है 11:31, प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपकी तरफ से हमारे बीच में आते हैं और वो संदेश है, सिर्फ हमें नहीं आप सभी को, जितने भी श्रोता FM रेनबो से जुड़े उन सभी को लाभान्वित करते हैं। तो भाई, जिन लोगों ने अभी अभी बिल्कुल अपना रेडियो सेट ऑन करा है उनको बता देते हैं कि आप भी हमें मेल कर सकते हैं। आपके लिए मेल आईडी हम एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। मेल आईडी fmakashwanilakhnow@gmail.com और आकाशवाणी में वी रहेगा, ना कि डब्ल्यू। और इसके साथ साथ भाई वो मैजिकल नंबर है जिस पर आप डायल करके अपना प्यारा सा संदेश FM रेनबो के प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी मधुर सी आवाज भी सब लोगों तक सुनाई पड़ेगी और प्यारे से संदेश जरूर होना चाहिए। तो आप डायल कर सकते हैं लखनऊ का कोड 0522 यानी कि 0522, उसके अलावा 2238845 या फिर 2238852, ये दोनों नंबर है जिन पर आप डायल करके अपना प्यारा सा संदेश अपनी ही आवाज में हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और एमके राजी का मेल भी शामिल कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिखा है भाई, इन्होंने लिखा है भानपुर हरोवा जिला लखीमपुर खीरी से इनका मेल आया है। और रत्ना शुक्ला मैम जी, कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे जी को सादर प्रणाम। तो मैम तक आपका प्रणाम जरूर पहुंच गया और सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सुमोना मैम का कि और उसके बाद सभी आरजीएस को भी धन्यवाद इन्होंने कहा है। और संदेश के माध्यम से उन सभी गणमान्य लोगों को आज के दिन हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं जो आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। और डॉक्टर्स डे की इन्होंने बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामनाएं देने के लिए एमके राजी। और डॉक्टर सोनिया नित्यानंद जी और डॉक्टर जो हर हफ्ते आकाशवाणी लखनऊ में आते हैं और समय देते हैं उन सभी को, और जो नगर निगम के प्रमुख आती हैं उनको भी, सुषमा खरकवाल जी को, और हमारे मौसम वैज्ञानिक दानिश जी जो हर दिन गुड मॉर्निंग लखनऊ में मौसम से लेकर ट्रैफिक तक की जो अपडेट आप लोग विकास जी के द्वारा पहुंचवाते हैं हम तक, उन सबके और जो खुश जी के साथ विकास सर जो हम सभी इससे जुड़ते हैं उन सबका इन्होंने शुक्रिया कहना चाहे और कहा है कि भगवान सभी को स्वस्थ और मस्त रखे। इन सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमना मैम जी, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जुगन माटी के कार्यक्रम में कुछ और तरह की वैरायटी भी हम सुनना चाहते हैं जो कि इन्होंने मेंशन की है। तो और बाकी सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमके राजी, आपने बहुत ही अलग सी बात लिखी थी क्योंकि हम अपने जितने भी गेस्ट हमारे FM रेनबो से जुड़ते हैं, आप तक आते हैं, आप तक अपने बातों के कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं, उनका आपने शुक्रिया अलग से किया है। और उसके साथ साथ सभी आरजीएस को इन्होंने थैंक यू कहा है और खासतौर से आकाशवाणी कार्यक्रम प्रमुख जी का तहे दिल से इन्होंने शुक्रिया कहा है। तो जो को आपका सुझाव है सुगंध माटी की कार्यक्रम में, वो भी जो कि ये आल्हा जरूर सुनना चाहते हैं, बाकी कार्यक्रमों तो अच्छे लगते हैं लेकिन इस कार्यक्रम में ये आल्हा सुनना चाहते हैं, तो ये भी आपकी बात जरूर सुन ली गई है और इस पे जो भी आगे कोशिश की जाएगी कि आगे जो कुछ भी हो सके, प्रयास संभव, वो जरूर किया जाएगा। और अब किनका, नजीम रेंजी का भी मेल आ गया है, नाजिम रेंजी का मेल आ गया है और बस इन्होंने केवल हेलो लिखा है। तो नाजिम जी आपको भी बहुत बहुत हम कहेंगे शुक्रिया मेल करने के लिए। नागेश कुमार जी का भी मेल आया है, ये लिखते हैं, पेड़ लगाओ, धरती को फिर मुस्कान दो, हर सूखी राह को हरियाली की पहचान दो, आज जो पौधा तुम प्यार से लगाओगे कल उसी की छाओं में सुकून पाओगे। प्रेषक हैं नागेश कुमार, ग्राम व पोस्ट पता है, ग्राम एवं पोस्ट उमरी, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने मेल किया है। और इतनी अच्छी बात इन्होंने लिखी है क्योंकि आज से वन सप्ताह की शुरुआत हो रही है जो कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये सप्ताह चलेगा। वन महोत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं और हम क्या मना रहे हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी आप हमें मेंशन करिए,

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जमा अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो।
4: धड़कन लखनऊ की।
5: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन।

0: और जैसे कि हमने आप सभी को फोन नंबर बताया था, तो बस हमारे पास किसी का फोन आ गया, हमारे रेगुलर लिस्नर हैं। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं मैम, आप बताएं कैसी हैं?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस आप लोगों की आवाज़ सुन के कैसे कैसे कैसे कोई अच्छा नहीं हो सकता, ये बताइए।
1: आप मैम आज जो है बात तो बहुत दिनों के बाद आपसे हो रही है।
0: जी हम भी यही कहना चाहते हैं, बहुत दिनों बाद बात हो रही है, लेकिन अपना नाम और कहाँ से बोल रही ये तो बता दीजिए।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास क्षमा कर रहे हैं, सभी सुनने वाले।

0: मुस्कुराते रहिए और यूं ही खिलखिलाती रहिए और आपकी जी।
1: हेलो मैम
0: जी, बताइए
1: अपने भाई बहन के हम नाम लेना चाहते हैं
0: जी। वो आप हम आपसे कहने वाले थे, जल्दी से नाम ले लीजिए
1: जी।
0: जी।

0: मुस्कुराते रहिए और यूं ही खिलखिलाती रहिए और आपकी जी।
1: हेलो मैम
0: जी, बताइए
1: अपने भाई बहन के हम नाम लेना चाहते हैं।
0: जी वो आप हम आपसे कहने वाले थे, जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: जी वकील अहमद भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, सरबान सारी,
0: जी आपकी आवाज कहीं चली गई लेकिन आपकी जो संदेश है, आपका जो नाम है वो लोगों तक पहुंच गया। सभी बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ आपकी आवाज सुन रहे थे और आपके जितने भी सुनने वाले श्रोता दोस्त हैं वो सब भी आपका शुक्रिया कह रहे होंगे कि आपने उनका नाम ले लिया। तो चलिए हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और

और जानते हैं दोस्तों, जितने भी लोगों ने हमें मेल किया है, जितने भी लोग फोन लाइन पे कनेक्ट हो पा रहे हैं, उन सबका हम शुक्रिया कहेंगे। उसके साथ साथ कई लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी इस संदेश के जरिए भेजी है। हिंदुस्तानी रमेश सोनी जी ने लिखा है, हमको बहुत बहुत इन्होंने नमस्कार कहा है। और मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से मेल कर रहा हूँ। मेरा संदेश है कि जो लोग अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो कृपया वो ऐसा ना करें। बरसात का समय है तो गाड़ी ज़्यादा तेज ना चलाएं, और जिससे चोट लगे और गाड़ी पार्क करने के बाद जब आप अपनी गाड़ी को कहीं ले जाने से पहले ये देख लें कि कोई जानवर गाड़ी के नीचे लेटा हो या उसकी जान बच सके तो ज़रूर बचाएं, उसके बाद ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आप कहीं ले जाएं। आपने तो बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश दे दिए हिंदुस्तानी रमेश सोनी जी, आपने एक नहीं दो नहीं तीन संदेश दे दिए बच्चों की को किस तरह से लालन पालन में झगड़ा उनके सामने नहीं होना चाहिए, बरसात के समय में गाड़ी तेज ना चलाएं, और इसके साथ साथ आपकी गाड़ी के आसपास अगर कोई जानवर है तो उसको किसी भी तरह की चोट या आहत ना पहुंचाएं। ये तीन संदेश आपने एक साथ दे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखिए मोनू सेठ जी का भी मेल आ गया है खालिसपुर अमेठी से। रत्ना जी और साथ में परिवार की मुखिया आदरणीय सुमोना मैम जी को बहुत बहुत नमस्कार। और आपके यहाँ सभी प्रोग्राम बहुत सराहनीय होते हैं और जीमेल बहुत खास होता है, जिसमें अग्रिम समय पर विशेष समय आने वाले समय पर चर्चा की गई और जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। हेल्थ एंड फिटनेस सबकी सेहत पर बात होती है और इसके लिए आपका आभार। माटी की सुगंध माटी की में के लिए इन्होंने सुझाव कुछ नाम दे सुझाए हैं, और इस प्रोग्राम में रात में आठ बजे कर दिया जाए और कुछ आजेस की समय सारणी भी बदल दिया जाए, जिससे शाम को ही आते और उन्हें अच्छा समय सारणी इन्होंने बदलने का सुझाव दिया है मोनू सेठ जी ने। तो चलिए आपकी बात भी सुन ली गई है, हो सकता है इस पर कुछ आगे कुछ हो सके तो ज़रूर आपकी जानकारी में आएगा। तो इन सब बातों के साथ अब एक नंबर है आप तक गाने का, एक ट्रैक आप तक पहुंचाना है, उसको हम पहुंचाते हैं, सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में।

0: सपने बड़े हैं,
1: स्टाइल अलग है,
0: तो ये शो है आपके लिए।
1: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
0: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
1: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

और आइए दोस्तों, यूं तो 1 जुलाई अपने आप में बहुत खास है, लेकिन अगर हम खास बात की करते हैं तो कई खास बातों के बारे में आपको जानकारी सुबह से मिलती आ रही है। और इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं वन सप्ताह यानी कि वन महोत्सव, जो कि 1 से 7 जुलाई के बीच में आज ही से शुरू हुआ। ये वन महोत्सव मनाया जाएगा, इनफैक्ट ये इसकी शुरुआत हो चुकी है आज सुबह से ही। और ये बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह है और मॉनसून के आगमन के साथ दिल भी खिलता है, वादियां भी खिलती हैं और इसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सुधरता है। और एकजुट होकर के सभी नागरिकों को, विद्यालय को, संस्थानों को, समुदायों को और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी नागरिक ओवरऑल कहा जाए, इन सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट होकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और कदम बढ़ाने में आप सबसे छोटा सा सरल सा उपाय ये कर सकते हैं कि अपने आसपास पौधारोपण जरूर करिए। और सबसे आपका जो फेवरेट पौधा होना, चाहे उससे में कोई फल उगते हो या फिर वो फूल का पौधा हो या फिर कुछ शो प्लांट हो, कुछ भी हो, वो अपना जो फेवरेट पौधा है, ये मेरा सजेशन है आपको कि रत्ना का सजेशन है कि आप अपना फेवरेट पौधा या प्लांट आप जरूर इस सप्ताह के बीच में लगाइए और एक नहीं ज्यादा से ज्यादा लगाइए। क्योंकि आप अगर फेवरेट पौधे को लगाते हैं ना तो उसकी जो खुशी होगी आपको, उसकी मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि उसको अल्फाजों में नहीं बांधा जा सकता उस खुशी को। वो जब आप पौधा देखेंगे बड़ा होता, पालते पोसते उसको, जब वो बड़ा होगा, अगर वो फल देता है या फूल देता है या फिर वो सुंदरता से आपको रिझाता है, तो वो सुकून, वो खुशी और आप कहीं नहीं पा सकते। तो आप अपनी इसको प्राथमिकता में इसको आप शामिल कर सकते हैं। और क्योंकि हम यही कहना चाहेंगे कि हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है, जितने भी पौधे आप लगाते हैं या जितने आपके आसपास हैं उनकी देखभाल करना, उनके प्रति जिम्मेदारी निभाना, ये सिर्फ आपका हमारा ही काम है। सिर्फ पौधा लगा के छोड़ने से कुछ नहीं होता। और आप पौधे कहाँ से प्राप्त करें भाई, इसके लिए बहुत सारी आपके आसपास, आप थोड़े थोड़े दूर पे बढ़ेंगे तो आपको नर्सरी बहुत मिलेंगी या फिर आप एक कलम से दूसरा पौधा भी बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप वन महोत्सव सप्ताह जो शुरू हुआ है उसके बीच में करते हैं तो ये ताउम्र आपको याद भी रहेगा।

और इन बातों के साथ अब हम मेल भी शामिल कर लेते हैं जितने लोगों ने हमें मेल भेजा है। चूंकि 11:51 हो रहे हैं तो वक्त बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देगा। तो मोनू सेठ जी के बाद अब मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आ गया है और लिखते हैं कि मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहा हूँ। प्रोग्राम माटी की सुगंध बहुत अच्छा लगा और संदेश ये रहता मैम कि आसपास सफाई रखे नाले में कचरा ना डालें, इससे नाले चोक हो जाते हैं, बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है और आज डॉक्टर दिवस है तो एक बात और दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह में ही खाएं, सोशल मीडिया पर देख कर ना खाएं। और साहिबा अंसारी बबीता राव रोशनी दीदी का भी इन्होंने नाम मेंशन किया, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए और अपने मन से या स्टोर से खरीद कर नहीं खानी चाहिए। आपका संदेश बहुत प्यारा रहा। और इसके बाद अंशु गुप्ता जी का भी मेल आया है, नमस्ते आपको भी बहुत बहुत। नारायण, मैं नारायण गुप्ता बाबा श्री जग जीवन दास साहब कोटवो धाम डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी से हूँ और आपका प्रोग्राम हमको बहुत पसंद आ रहा है और हैप्पी डॉक्टर्स डे कहना चाहता हूँ। और इसके साथ गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वारिस अली खान जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त रत्ना जी को खान परिवार का बहुत आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी परिवार को भी सलाम। और अर्ज है, जिंदगी में कुछ हसीन पल यूं ही गुजर जाते हैं, रह जाती हैं यादें और इंसान बिछड़ जाते हैं। और इसके साथ संदेश ये है, जिंदगी गणित के समीकरण सी है, अधिकतम लाभ पाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि नकारात्मक को सकारात्मक में कैसे बदलें। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारा सा संदेश है कि नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, उसको सकारात्मकता की दिशा में ले जाने के लिए कुछ जरूर स्टेप उठाने चाहिए। वारिस अली जी का ये संदेश है, एडवोकेट वारिस अली जी संजय नगर ऐशबाग से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से संदेश और प्रोग्राम के बारे में लिखने के लिए। उसके बाद धर्मवीर भारती जी का भी मेल आ गया, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग और सुमोना मैम जी को उन्होंने नमस्कार कहा है। और धर्मवीर भारती कंचन नगर शुक्लागंज उन्नाव से, प्रोग्राम शानदार लग रहा है इस वक्त। और मैडम जी, मैं एक नियमित श्रोता हूँ एफएम रेनबो लखनऊ का और मेरा सुझाव छोटा सा है कि जब आप धड़कन लखनऊ की जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि धड़कन हम सब की होनी चाहिए और जितने भी सुनते हैं उन सब की धड़कन है एफएम रेनबो। थैंक्स मैम जी और फुल टीम को इन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कहा है, तो ये भी बात आपकी बहुत अच्छी लगी, सिर्फ किसी एक की नहीं, सभी जितने श्रोता हैं सभी धड़कन है एफएम रेनबो। और भाई ये वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है तो वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। और धर्मवीर भारती जी का भी मेल आ गया है, वो हमने शामिल कर लिया। उसके बाद सुधांशु जी का फिर से मेल आ गया है, राधे राधे सुधांशु जी, भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है। सुमोना मैम जी को इन्होंने नमस्कार भेजा और अपनी मसरूफियत की वजह से वो स्टूडियो में इस वक्त ज्यादा देर नहीं बैठ पाई हैं। और संदेश उनका यह है कि सुधांशु जी की स्कूली बस तथा गाड़ी सावधानी से चलाएं सभी ड्राइवर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, किसी ने अपने बच्चों को अपने आप के हवाले किया है तो बच्चों की सुरक्षा आपके हाथ में होती है। बिल्कुल सही सुझाव, बहुत ही दुरुस्त सुझाव है, आज से स्कूल भी खुल गए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। और कार्यक्रम में मैं कहना चाहता हूँ कि रविवार को सुबह 10 से 11 तक एफएम रेनबो दिल्ली से कनेक्ट किया जाए, उसमें ओपी राठौर जी का कार्यक्रम प्रसारित हो जाए जो कि अच्छा लगता है। तो ये सुझाव भी आपका सुन लिया गया है, नोट कर लिया गया है। और इन बातों के साथ हम आपसे क्या कहना चाहेंगे, आपसे ये कहना चाहेंगे कि एक छोटा सा सॉन्ग आप तक पहुंचाते हैं और आपको ये भी बता दें कि अगले कार्यक्रम से कुछ घंटे शालिनी आपके साथ रहने वाली हैं। तो शालिनी तो आपके साथ रहेंगे लेकिन रत्ना आपसे चलते चलते ये कहेगी कि जो अभी हमने आपसे कुछ देर पहले वन संरक्षण की जो बात की कि आप किस तरह से पौधे लगा सकते हैं और किस तरह से आगे अपने आसपास हरियाली आप बना सकते हैं, उस पर आप जरूर गौर करिएगा। और इस बार के 2026 की जो अगर हम बात करते हैं तो वन सप्ताह की जो थीम है वो रखी गई है वन और अर्थव्यवस्था, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आप वन को संरक्षित सुरक्षित और खूबसूरत बना के रखेंगे तो कहीं ना कहीं हाँ और आप भी लाभान्वित होंगे, है ना। तो इन बातों के साथ शालिनी भी आपके साथ जुड़ने वाली हैं कुछ ही पल में। तो रत्ना कहती है कि एफएम रेनबो से जुड़े रहिए, 100.7 के सभी प्रोग्राम्स को एंजॉय करते रहिए। और बस आज के लिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी फिर जल्दी इसी चैनल पर आपसे। रखिए अपना ख्याल, मौसम को एंजॉय करते रहिए और अगले कुछ घंटे रहिए शालिनी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर सनदी लेखाकारों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सनदी लेखाकार भारत की आर्थिक यात्रा में विश्वसनीय साझेदार रहे हैं। पारदर्शिता और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से सनदी लेखाकार देश की वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाते हैं, उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं और निवेशकों में विश्वास सृजित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनने के प्रयासों में सनदी लेखाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी TET 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रही यूपी TET की सुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी TET परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृति करने का भी फैसला लिया है।

पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत नए बदलाव 36 प्रश्नों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनने की लागत अब 2,500 रूपये होगी। 60 प्रश्नों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्टों की लागत 3,500 रूपये निर्धारित की गई है, जबकि तत्काल योजना के तहत यह 6,000 रूपये होगी। 36 प्रश्नों वाले पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रतिस्थापन साधारण पासपोर्ट जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह सम्मेलन दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोगों के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम में, चौथा 9 जुलाई को ब्रिस्टल में और पांचवां व अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। सुनिए
2: कहिए कहिए
3: सुनिए
1: सुनिए
2: कहिए कहिए ना
3: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
4: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: बारह बजकर 5 मिनट और 35 सेकंड का वक्त शालिनी आ चुकी है लेकर झटपटी बातें। जी हाँ, जायके के साथ, क्योंकि आज शत्रुपा में हम बातें करते हैं चटपटी वाली। समझ गए ना, कौन से डिश लेकर आए हैं, क्या खास है, क्या आपको नया बताने वाले हैं और कैसे आप उसे एंजॉय करेंगे, ये सब है सरप्राइज, वो भी एक छोटे से गाने के बाद। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट भी कर लेते हैं और हमारे साथ साथ बनाने की कोशिश करेंगी तो भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में हो भी सकती हैं। हाँ, तो बस

12:11 और 5 सेकंड का वक्त हो चला है दोस्तों, और सबकी निगाहें आसमान की ओर है। आज से नहीं कल से है, कई जगह तो बारिश हुई भी है और कई जगह ये बता कर गई है कि हम आ रहे हैं और आई नहीं है, है ना, कुछ इसी तरह का हुआ है। और सच में सभी लोग निगाहें ऊपर लगा कर बैठे हैं कि कब ये आएगी और कब हमें गर्मी से राहत मिलेगी। तो चलिए, मानसून तो आने ही वाला है, कहीं कहीं पर आ चुका है और उसकी तो बात हम करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, लेकिन इस बारिश से रिलेटेड जो बात हम करने वाले हैं कटहल की। कटहल बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, इसके कई तरीके हैं। किसी को इसकी पकौड़ियाँ पसंद है, कोई कोफ्ते इसके पसंद करता है, कोई ग्रेवी वाली सब्जी बढ़िया सी चटपटी मसालेदार पसंद करता है, कोई किसी तरह से खाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं, जब कटहल पक जाता है तो उसके अंदर का जो कोया होता है मीठा लगता है, वो भी खाते हैं। लेकिन अक्सर क्या करते हैं हम सभी, हो सकता आप भी करते हो, जो कटहल की बीज होती है उसे निकाल कर फेंक देते हैं। अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे भाई, आप तो कटहल की बीज की भी सब्जी बना लेती हैं, क्या बात है भाई, ऐसा होना चाहिए ना, जो किसी भी सामान का उपयोग अच्छे से कर सके, वेस्ट ना जाने दे कोई भी सारी चीजें। लेकिन आज पता है क्या हम बताने वाले हैं आपको, जो लोग बीज की सब्जी बना लेते हैं तो ठीक है, क्या कोई और भी चीज सोची है कि कटहल के बीज से और भी कोई चीज हम बना सकते हैं? नहीं सोचा ना, तो जरा सोचिए क्या कर सकते हैं और क्या खास किया जा सकता है नए अंदाज में। हाँ, इतना बता दिया काफी है, बाकी हम बताएंगे इस गाने के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, तौलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो दोस्तों हम सभी रेडी है ना कटहल की बीज की क्या बनाएंगे? आज हम टिक्कियां बनाएंगे। जी हाँ, और कटहल के खाने के बाद हम अक्सर बीज को फेंक देते हैं और कभी कभी उसको छीलना भी नहीं चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ना, कभी कभी स्लिप भी कर जाता है और बहुत से लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हम क्या करें जब

पहल बना रहे हो तो उसके मजबूत बीजों को पहले से ही अलग कर लें। और पता है आपको, इन बीजों में बहुत ताकत होती है, शरीर के लिए अच्छे भी होते हैं, और अगर हम सेहत की बात करें तो हड्डी भी मजबूत करते हैं, पेट भी ठीक रखते हैं, और बच्चों और बड़ों सबके लिए फायदेमंद होते हैं। कैसे बनाना है आपको, बीज को ले लेना है, अलग कर लेना है, और प्रेशर कुकर में 2 सीटी तक उबाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आसानी से उसका छिकला उतर जाएगा। जब छिकला उतर जाए, जो उसका गूदा होगा, जो बीज होगी, उसे अच्छे से मसल लेना है, और उसमें थोड़ा सा उबला आलू भी मिलाना है, कटा प्याज आप उसमें मिलाइए, हरी मिर्च मिलाइए, हरी धनिया मिलाइए, काला नमक, गरम नमक, ये सारी चीजें मिलाकर आप उसे गोल गोल टिक्की का आकार दे सकते हैं। और जैसा भी आकार आप देना चाहें, बढ़िया सा हार्ट शेप का भी आकार आप अपने हाथों से, उंगलियों से भी आसानी से दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब आपकी ये टिक्कियां तैयार हो, उन टिक्कियों को तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर, जो भी आप खाते हो, देसी घी पसंद करते हो तो वो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा तेल डालिए और टिक्कियों को आराम से तवे पर लाल होने तक सेक लीजिए। और जब आपको सर्व करना है तो भी आप जस्ट लाइक मटर चाट वाला या आलू वाली टिक्की की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और नहीं ज्यादा कुछ करना है तो ऊपर से नींबू निचोड़ लीजिए और बस चटकारे लगाकर खा लीजिए। क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा होगा ना अभी से। और ये सब करने में पता है मुश्किल से मुश्किल आपको 20 या 25 मिनट्स लगने वाले हैं, और कुछ भी अलग से खर्चा नहीं होना है। जी हाँ, जो सब्जी लाए हैं, जो आप हटा देते थे, उसी का ही बनाना है, और थोड़ा सा और कुरकुरी, उसे कुछ और बनाना है तो भुना चना होता है ना, उसे पीसकर आप उसमें मिलाएंगे ना, तो जो टिक्कियां हैं वो और कुरकुरी और टेस्टी हो जाएंगी।

12:26 का वक्त, शालिनी आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में, जो कि आप सभी सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। क्या है धड़कन लखनऊ की? जी हाँ, तो अभी आपने कटहल के बीज की टिक्कियां बनाना सीख लिया है। पसंद आई ना? टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इस स्माइल के साथ जब आप यस बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, जिनको कटहल की टिक्कियां नहीं पसंद आई और जिनको पसंद आई, दोनों के लिए हम अब नेक्स्ट चीज और एक बताने वाले हैं। वो क्या है? वाटर मिलन। अब आप सोचेंगे तरबूज के बारे में क्या ही बताएंगे, उसको तो हम लाते हैं और उसका तो यूज हम हर तरह से करते हैं और खाते हैं, मजा आता है। हाँ, दुख तो तब होता है जब हमारा तरबूज लाल नहीं निकलता है ना। तो चलिए, अच्छा क्या करते हैं, तरबूज की हम बीज को भी सुखा कर रख लेते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका गूदा तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन अक्सर हम उसका छिकला फेंक देते हैं। अक्सर क्या, हमेशा ही फेंक देते थे। तो अब क्या करना है आपको? अब आप सोच रहे होंगे कि शालिनी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है, अब क्या चीज बताने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि हम उस तरबूज के छिकले की सब्जी आपको बताने वाले हैं जो अक्सर आप फेंक दिया करते थे। जी हाँ, उसके छिकले की सब्जी कैसे बनेगी, क्या होगी, बहुत ही टेस्टी, लेकिन ये सारी चीजें इस प्यारे से गाने के बाद।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे तरबूज की और तरबूज के छिकले की सब्जी की। तो अब क्या करना है आपको, जो अच्छा पहले हम बता दें कि तरबूज के छिकले की सब्जी से आपको क्या फायदा होगा। आपको पता है ये गर्मी में हमारे शरीर को ठंडा रखता है और इसमें बहुत सारा पानी होता है, लू से भी बचाता है और जो रक्तचाप है उसे भी ठीक रखता है। और कैसे बनाना है अब आपको हम बताने जा रहे हैं। तरबूज का जो छिकला लेते हैं, जो उसके ऊपर का हरा या काले रंग का, जो भी जिस कलर का आपने तरबूज लिया है उसका छिकला हटाना है, यानी कि जो लाल रंग से और ग्रीन या ब्लैक कलर के बीच का जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसे निकालना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े सफेद हिस्से के काट के रख लेने हैं। और उसके बाद क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लिया आपने, कढ़ाई ली और उसमें आपने जो भी आप खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं या घी इस्तेमाल करते हैं वो आपको डालना है। गर्म होने पर आपको तड़का लगाना है जीरे का, हींग का और हरी मिर्च का। और उसके बाद जो आपने तरबूज के छिकले के टुकड़े काट के रखे हैं उसे उसमें डाल देना है। हल्दी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और साथ ही साथ नमक डालना है और 10 मिनट तक ढक कर पकाना है। और उसके बाद आमचूर भी आप उसमें डालिए। तो देखिए ये चटपटी सब्जी आपकी लौकी की तरह नजर आएगी। जी हाँ, और क्या करना है, समय इसमें आपका पता है मुश्किल से 15 मिनट लगना है। और अगर और टेस्टी बनानी है, सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा लुक देना है, तो उसमें आप बेसन को भूनकर मिला सकते हैं। तो बस एक बार ट्राई करके

दोस्तों आरा, अब हम आपको बताने वाले हैं चटनी के बारे में। आपको कौन कौन सी चटनी पसंद है? इमली की चटनी पसंद है, पुदीने की चटनी पसंद है, कच्चे आम की चटनी पसंद है, टमाटर की, लहसुन की, पुदीने की, सब अलग अलग फरमाइशें होती हैं ना। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ थोड़ी सी अलग प्रकार की चटनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कद्दू के बीज की चटनी। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से ले आए। ये भी हमने सोचा, अक्सर हम सभी लोग कद्दू जब काटते हैं तो उसके जो बीज होते हैं वो फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो बीज होते हैं कद्दू के, ये नींद अच्छी लाने में मदद करते हैं। गर्मी में जब रात में आपको नींद नहीं आती है तो कद्दू की चटनी, बीज की चटनी खानी चाहिए। जी हाँ, ऐसा हमारी दादी और नानी भी कहा करती थी। लेकिन ये बात है, आपको पहले इसका इस्तेमाल करना होगा, देखना होगा खा के, उसके बाद आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये तनाव भी कम करती है। अब करना क्या है, जब आप कद्दू की सब्जी बना रहे हो, उसके बीज

बच्चों को निकाल लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और धो कर धूप में 2 घंटे सुखा लीजिए। जब ये बीज सूख जाएं अच्छे से, तो आपको क्या करना है, आपको कढ़ाई पे या तवे पे इन्हें भून लेना है बिना तेल डाले। जी हाँ, जब ये कुरकुरे भून जाएंगे उसके बाद आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। क्या करनी है, वो भी आपको सिलबट्टे पर पीसना है। इसे मिक्सी में पीसी हुई ये काम नहीं आएगी, स्वाद नहीं आएगा। तो बस सिलबट्टे पर लहसुन ले लेना है आपको, 4-5 कली ले लीजिए उसकी। हरी मिर्च ले लीजिए, हरा धनिया, नमक, नींबू का रस और जो आपने बीज भून के रखे हैं उन्हें सबको एक साथ पीस लीजिए। और उसके बाद ऊपर से 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल भी मिला लीजिए। और अगर और स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें काला नमक भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। फिर देखिए क्या चटपटी चटनी बनी है। वाह, क्या बात है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ़ इनाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

12:55 हो चले हैं दोस्तों। तो आज आपने क्या क्या सीखा? कटहल के बीज की टिक्की जो ताकत के लिए बहुत अच्छी है, दूसरा तरबूज के छिकले की सब्जी जो कि गर्मी से बचाने के लिए बहुत अच्छी है, और फिर कद्दू के बीज की चटनी जो कि अच्छी नींद के लिए बहुत अच्छी है। और इन तीनों को हम सभी अक्सर फेंक दिया करते थे, पर अब कभी नहीं फेंकेंगे क्योंकि इसमें स्वाद भी है और सेहत भी। बस इसी के साथ शालिनी इस प्रोग्राम को करती है यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम हो चुपे तेरी बात में फिर आपके हम साथ रहेंगे, और अभी हम पूरा आपके साथ हैं शाम 4 बजे तक।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अपराह्न का 1 बजा है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, फिल्म का नाम है नमक हलाल। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बोल हैं जान के संगीत है बप्पी लहरी का। अनुरोध आप सभी का, आप हैं निकट बिजली घर मीगंज बरेली से हैं भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद नसीम एडवोकेट, दानिश अनजान, बाबर अजीम, हमज़ा और अनाविया फ़ातिमा। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहिब राही, महराज जहां लिख रहे हैं आज़ाद नगर लखसला हरिद्वार से। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। आप हैं साथी हमारे राम प्रसाद शर्मा, वंदना शर्मा, मनोरमा शर्मा, अजय, विनोद, खेमकरण, लक्ष्मी देवी और इनके परिवार के सभी लोग लिख रहे हैं छावनी अशरफ खां, पानी टंकी के पास, होली चौक, बरेली। ये है कनेरा मोहल्ला पटेल से बत्ता परिवार लिख रहा है हमें। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, साथ में हार्दिक बत्ता। पकीजा रेडियो संघ से हैं इस्लामपुरा से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, रमेश कौर, देवी मंतशा और मोहम्मद शादाब खत्री। गांधी चौक पंजाब रोपड़ से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। सुनवाते हैं आपको ये गीत।
1: अरे अरे।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, और अब बारी है अगले गीत की। शरण लिया है फिल्म दिल से, इसे गाया है सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी ने। अनुरोध है आप सभी का, आप हैं साथी वीरेश सिंह चौहान, गरीब भाई विक्रम भारद्वाज, सोनी मिश्रा, अंकित सिंह चौहान जिला बरेली से, और आप है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं, टीडीए मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से हैं, शुभचंद्र बजाज, विट्टा बजाज और साहिल बजाज। आप हैं मनकारा मंदिर बी डी कॉलोनी करगना बरेली से, बनी सिंह मासूम, बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश कुमार, राजेश कुमार वर्मा, रूही भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमती भारती, खनक, शगुन, सारांश, अयांश, अग्नि वर्मा और साथ में शिवांश और पृथ्व सिंह। आप हैं मोहल्ला गड़िया बरेली से कैसर शमशी, अजीम शमशी, सलीम शमशी, नावेद शमशी और साथ में है रजिया शमशी। और ये खत है मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बिसलपुर जिला पीलीभीत से, विमल वर्मा, विनय वर्मा, नितू वर्मा और उनकी बेटी है प्राची। इसके अलावा ये पत्र हम तक पहुंच रहा है, हमें मिला है बड़ा गांव सुपा सुपाई साई से, देवेंद्र तोती, राकेश ताती, निशा प्रकाश और देवेंद्र जी। भटापारा से हैं झावेंद्र कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, द्वारका प्रसाद वर्मा और सभी साथी। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का बरेली केंद्र और कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत। आप सुनवाने जा रहे हैं आपको कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश, अगला अनुरोध गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी से। इस गीत को सुनने की जो अनुरोध पत्र हम तक पहुँचे हैं, आप हैं मोहम्मद बक्का फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सादरानी, हिना कौशल लिख रहे हैं हमें, मोहनलाल भैयान, शेरकोट बिजनौर, जिला बिजनौर से। आप हैं अनोखलाल मौर्य, सुंदरदेवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील, खुशबू, आरोह, स्वाति मौर्य लिख रहे हैं, मौर्य मंदिर बार्डन मग्यारह प्रणव साहब रैली से। ये हैं रोड़ी सेक्टर 17 से रामेश्वर दास हैं, पिंकी सिंकी पल्लवी, आकाश आर डी चंद्रा, और नई दिल्ली से हैं सुरेंद्र खुराना, सुमित, अनीता और राजीव। ये है दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कनीलाल, रीता देवी, शिल्पी रानी, आकाश कुमार। आमलेश्वर से हैं शिवजी, सोमन ठाकुर, तारनी ठाकुर, ज्योति ठाकुर, और साथ में हैं गुड़िया ठाकुर। पीर बोहड़ा आपके जी, पीर बोहड़ा बरेली से हैं आज़ाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकी, मोतबसम। मोहल्ला तलीला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और राम प्रसाद शर्मा। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नेमा बेगम, कासिम अली, नादिम अली और जुनैद अब्बासी।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं अनुरोध की कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। आप सुनवाने जा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम है दयावान, इसे गाया है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने, संगीत दिया लक्ष्मीकांत पहलाल ने और बोल हैं अजीज कुरैशी के। अनुरोध है आप सभी का, आप हैं साथी हमारे, ये हमें पसंद भेज रहे हैं। ग्राम शंकरपुर पोषामा है, जिला बताइयों, पतागंज से हैं सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, केशव यादव, सोनी यादव, अंकिता यादव, अनिता यादव, सुनीता यादव, सूरजश्री यादव और साथ में हैं विनीता यादव। ये हैं साथी हमारे। अंशु चुग, स्वांत गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवाना, राधे और सभी साथी लिख रहे हैं हमें ये खत। आप हैं वैष्णव कॉलोनी सनाद एमपी से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश कौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। ये हैं साथी हमें, ये अपना पत्र भेज रहे हैं एडवोकेट वारिस अली खान, संजयगर ईशबाग लखनऊ से। सरोज चौक अमरावती से हैं ठेकेदार आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान। पोत्रा से हैं मुस्तफा खान, रऊफ भाई और शाहीन भाई। गांधी बाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और साथ में हैं विशाल कटनकर। ये हैं भगवानी संतोषी सेन, चंद्र प्रकाश, नेहा सेन, राजेंद्र चिराग सेन लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ भोसुदा से। और ये हैं बक्सर बिहार से सरबुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अहमद अंसारी, उस्मान अंसारी, चमनपार दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अबीबा, सारिमपुर बक्सर से राज एच डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफाम राज भागलपुरी।

कार्यक्रम का अगला किस्म बनाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर परिमल कसन से हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील, असलम सैफी और शुक्रिया लिख रहे हैं। साथ में हैं शम्स कमर राही कंजुंडवारा से, ये हैं यादव मोहल्ला सनावत एमपी से, दिलीप मालाकर, योगेश मालाकर, सुनीता मालाकर और मुस्कान मालाकर, साथ में जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकर। मलोट से हैं सुधीर नूतन और संदीप गुलानी, जगमोहन प्रजापति, सुनीता शर्मा है और इनके सभी साथी। ये पत्र मिला है हमें खुर्जा से, उत्तर प्रदेश से, त्रय अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा साहब हैं। और ये पत्र है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से, विनोद पुरी, वीपी रांझू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश, अनीता, ममता, मेघा, पूजा पुरी, गगन कपूर, कुंजन कपूर, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीश पुरी, सतीश पुरी, राकेश पुरी, विनोद पुरी, पालीपुरी, डीसी पुरी और अरुण पुरी। साथ में है नेहा पुरी, एकता पुरी, शमी पुरी, बोधीपुरी, सुनील पुरी, बीके पुरी और आरएस पुरी। ये पूरा पूरी परिवार हमें लिख रहा है अपना ये अनुरोध पत्र। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, हैप्पी राय और अमित कुमार राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, पंजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

पत्तों करके में सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है जहर। इसे गाया है राहत फतेह अली खान साहब ने। अनुरोध आप सभी का है, आप हैं मरोड़ पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सैना शर्मा और निवान शर्मा। रेंगने से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से, राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और आप हैं मलोड़ के पंजाब से ही हैं सतीश मिगलानी, सीमा मनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर सिंह संधू, महावीर संधू, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी। आप हैं सम्राट चौक जिला वाशिम से गिरीश देशमुख, सोनाली देशमुख, रेणुका आरव, अश्विनी देशमुख, मौसमी देशमुख, जयश्री देशमुख, माधुरी जोशी और जीव देशमुख। चंडीगढ़ से हैं सनी जनेजा और विमला हनेजा। आप हैं डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, करमबीर, धर्मबीर, प्रवीण नागर, अनिल नागर और सागर बख्शी, और साथ में भारत यादव। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र, और अब हम गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको। ये हैं छावनी अशरफ खां, टंगी के पास होली चौक बरेली से हैं, राम प्रताप शर्मा, जशी देवी, वंदना मनोरमा देवी, अजय फरजुद्दीन भाई, नरियावल से हैं हाजी तूफैल अहमद, नाजमा अंसारी, मस्तान कश्यप, बीना देवी, जोगराज शर्मा और नाटू भाई आप हैं। साथ ही हमारे डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारी ठाकुर, ज्योतिष रेयांश और सभी लोग परिवार के, और ये साथ ही हमारे जेलर मथुरा से हैं वसीम आसम बेलदार, अकरम आसम बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार, बहरकरणी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, कुमारी डब्लू डोम, सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और दीपा थापा। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत। इसे गाया है सादा सरगम और मुर्तजा ने, फिल्म साथिया है, बोल हैं गुजरा का संगीत है ए आर रहमान का।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। आप सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं के अनुरोध पर गीत। ये है मेहर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं, अभिजीत गौड़कर, श्रीमती सरिता गौहाड़कर, प्रिंस एकांश गौड़कर, बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गौड़कर, प्रणेता गौड़कर, अर्जुन गौड़कर टुक टुक, और नागपुर से हैं वैशाली शैलेश, सुमित गौड़कर, ध्वनि गौड़कर और सभी साथी इनके। और आप हैं फूलबाग क्लेशावनी से विश्वनाथ भारद्वाज, श्रीरथ भारद्वाज, गंगा भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी, कब देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज, मुनि देवी भारद्वाज, साथ में श्री राम राठौर। ये हैं बजीगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कुमार वाष्णेय, प्रभात, शीला, अमरीश कमल वाष्णेय, सलोनी कमल वाष्णेय, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, बद्रिचा और ऐश्वर्य कमल वाष्णेय का। और ये खत है दीदार रेडियो संघ से, बिल्लागढ़ कासगंज से, एम असलफ सैफी, जैबन शाह बेगम, अकरम सैफी और आवाज खान, मोहल्ला मलुकपुर, जुगन की गली निकट मस्जिद शेर खां पर है, से हैं बरेली से, बेबी बाजी, आना, मेरम, हानिया, परवीन, तमन्ना, तैवानूर, गुलफ खां, गुलफ शाह और हसन आलम और राशिद भाई। ये साथी हमारे गुरु नानक नगर मलोड़ पंजाब से, राजीव सेतिया, आरती सेतिया, तनिष सेतिया और साथ में रजनी सेतिया। और आप हैं, ये हमें साथी लिख रहे हैं, राहुल, इरम और इंद्रा

रायगढ़ से हैं वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, बली अकरम नूरजहां और उल्ला अकरम नूरजहां। आप हैं राजनांद गांव से, याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा और सभी साथी इनके में लिख रहे हैं। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत, फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है।

श्रोताओं, आप सुनवाने जा रहे हैं, आपको फिल्म का नाम है सुर, स्वर दिया है लकी अली ने, और अनुरोध है आप सभी का, आप हैं दौलतबाग मुरादाबाद से, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी, मोहल्ला तलिया उड़ा जागीर से हैं, बरेली से फयोद्दीन भाई, अबरार भाई अफजाल, मल्लू शीना, रामू प्रजापति, धर्मपुर बरेली फहीम खां से हैं, फहीमा सिद्दीकी अली, जमजम फातिमा, अंजू और साबिया, ये हैं बिमल ठाकुर, सरिता, शुभ, लव, गुनगुन लिख रहे हैं बक्सर दादागंज से, और अमर सिंह हैं, नीलू अमन हैं, और आप हैं वलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति अतुल, पायल वर्मा, प्रियांशी वर्मा, अर्थात ऋषि वर्मा हैं, ये लिख रहे हैं प्रमिलागंज अलोट जिला।

और श्रोताओं, मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि आपसे विदा लें, लेकिन ये कार्यक्रम बस यहीं तक। और अब स्टूडियो में आ चुकी हैं मुनव्वर जहां जी कार्यक्रम शामिल प्रोग्राम के लिए, और अब हम चाहते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार।

आ भी जा आ भी जा ए सुबह आ भी जा, आ गए हैं आपके मनपसंद अगले कार्यक्रमों को लेकर। और अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत हरीश मौर्य के साथ। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त एंड होस्ट मुनव्वर जहां।

0: तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए। दरमा कहते हैं दोस्तों इलाज को। अगर तुम चाहो तो मेरे दर्द का इलाज हो जाए, ये अभी कव्वाली आपने सुनी ज़हीर अहमद खान और साथियों की आवाज में।
1: बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

मैं नाराए मस्ताना, मैं वासिफे बिस्मिल हूँ, मैं रौनके महफिल हूँ, एक टूटा हुआ दिल हूँ, मैं शहर में वीराना, मैं नाराए मस्ताना। दोस्तों, अभी आपने ये आबिदा परवीन की आवाज़ में सूफियाना गज़ल सुनी।

शताब्दी अभी आपने सुनी अलका याग्निक की आवाज में ये गजल तुम आए। और आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र की आवाज से सजी हुई ये मखमली गजल, है शहर तेरा दीवाना के रब जाने क्या होगा।

में रंग भरे, बाद में बहार भरे। दोस्तों, अभी आपने ये खूबसूरत सी गजल सुनी मेहंदी हसन की आवाज में। इसी के साथ रस रंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

श्रोताओं, आज कानों में रस घोल देने वाली जो आपने गजलें और कव्वाली सुनी उन्हें हम बता दें। जो पहली कव्वाली सुनी थी वो जहीर अहमद की आवाज में थी, उसके बाद जो गजल सुनी आबिदा परवीन, भूपेंद्र सिंह, अलका याग्निक और मेहंदी हसन की आवाजों से सजी हुई आपने गजलें सुनी। गजलों का ये कार्यक्रम यहीं पर अब समाप्त होता है रसरंग। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, आइए अब हम आपको जोड़ते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
2: लचकत चमकत चलत कामिनी जही गुण दमकत चपल दामिनी ओ बावरी ओ सावरी अरे ओ चंचल पल छिन रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ। और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

हम विविध भारती से बोल रही हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना।
2: जी हाँ, बिल्कुल
1: हाँ। और भीगने अच्छा का अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत सच में बारिश जो होती है ना, एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
2: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं, है ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
2: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए कि मतलब एक

0: होती है ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कि कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया, अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
1: मैं करके बता,
0: पीछे खींचे। हाँ। तो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब, आप प्रतियोगिता के बारे में,
1: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती है
0: और पीछे भी खींचती है,
1: पीछे भी खींचती है। आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो, आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना। तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ,
0: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
1: अच्छा,
0: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहता है, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: उनकी राय मांगते हैं। फिर वो जो हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं, तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके बारे हम बात करेंगे।
1: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है, कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया।
0: जी है ना, आप बताइए।
1: तो इन सभी पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और
0: देखो ये आप बस मेरे साथ में ऐसा मत कर
1: व्यंजन लेके आई
0: है। बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता है वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आती है, पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
1: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
0: जी।
1: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं, कई तरह के पकौड़े,
0: कौन से पकौड़े बनाते हैं,
1: कौन से बेसन के, और
0: ताकि हम उसको एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा ले,
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सेक्योर सका और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं,
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, है ना
1: जी। बिल्कुल,
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम

0: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें। तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीजें होती हैं तो हम फोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हाल चाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखा के दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं
1: हाँ,
0: आपको।
1: क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा
0: जी
1: पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और
0: जी
1: पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम
0: जी
1: बताइएगा
0: जी
1: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए, ऐसी
0: बिल्कुल
1: स्थिति भी होती है कई बार।
0: जी
1: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था, घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी
0: जी
1: समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे,
0: बिल्कुल
1: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते, अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे,
0: जी
1: सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
0: जी ये एक एक जो चीज होती है ना, जो आप हम मानसिक जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना,
1: हाँ
0: कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं, आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते,
0: जी
1: बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में ही समझते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा, कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज को अच्छे से समझता है, तो वो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीजें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है
0: जी
1: कि भाई
0: हाँ
1: आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये
0: जी
1: अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है,
0: जी
1: इस तरह
0: और
1: की चीजें
0: जी
1: नहीं खानी है।
0: बिल्कुल, और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं, कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना,
0: जी
1: हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके, और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच। सबसे
0: जी
1: बड़ी बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
0: जी हाँ
1: आपने
0: अक्सर
1: अगर
0: होता है।
1: खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए, अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं तो नमक ऊपर से और लेती हूँ,
0: जी
1: तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो
0: बिल्कुल
1: कैसे आपको ठीक करेंगे, और फिर
0: बिल्कुल
1: जब आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
0: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है इस बात के बारे में भी, अगर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं, तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही जरूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है, तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए, छोटी
0: जी
1: छोटी चीजों का जो स्वाद जीव को लग गया है ना उस पर हमें कंट्रोल
0: बिल्कुल
1: रखना
0: कंट्रोल
1: चाहिए।
0: करना
1: जैसे अब
0: चाहिए
1: आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना
0: जी
1: हमारे श्रोता, तो मैं थोड़ा
0: जी
1: कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर हर समय नहीं।
1: बिल्कुल, अच्छा, आपको सीधा

0: सादा खाना, मौसम के अनुरूप खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ भोजन खाइए।
1: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन।
0: फल फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
1: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
0: बहुत तरीके हैं खाने के,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहे या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहे, स्वस्थ रहे।
1: तो हमारे जो श्रोता है वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं, ये
0: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा?
1: बिल्कुल
0: है?
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
0: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं, पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
1: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
0: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो है डॉक्टर है। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
1: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी

0: पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं, इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टरों के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है।
0: तो एक गीत सुनते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
0: जी,

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। 3:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की

0: थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
0: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
1: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
0: जी,
1: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
0: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है।
0: जी?
1: तो विमलेश जी, आप जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
0: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी,
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी,
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी, कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी।

0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी।
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
8: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
7: जी मैम,
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो

0: बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
2: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: जी मैम। यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
4: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और

0: करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर

0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
1: इस
0: समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
2: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो क्या बात है, बोलो।
2: मैं बोलूं? अच्छा देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
3: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करें? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना, करो।
4: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
6: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी है। अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
3: मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
3: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
3: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
3: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा है। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं ये पानी में डूब रहा हूँ। मैं अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई

कोई कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़ आखिर आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर।

0: श्रोताओं, शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट मुनव्वर जहां, आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। और इसमें करते हैं हम आपसे जो भी बात करते हैं एक नए विषय के साथ। और आज हमारी जो नया विषय है वो है हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रखती है। इस विषय पर हमारे श्रोता अपनी क्या क्या राय रखते हैं, आइए सुनते हैं उनकी बात उन्हीं के जुबानी। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रही हैं?
1: जी, मैं मुनव्वर जहां जी, आपको सादर आदाब। और हम गंगवार बैगलाइन से बेचेलाल गंगवार बोल रहे हैं।
0: जी बेचेलाल जी, कैसे हैं आप?
1: मुझे लगता है पहली बार ही आपसे बात हो रही
0: है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगता नहीं है, हो ही रही है, फर्स्ट टाइम आपसे बात। और कैसे हैं बेचेलाल जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम, अपने परिवार में बताएं, सब लोग कैसे हैं आकाशवाणी परिवार में?
0: जी सब लोग बढ़िया है और हम उम्मीद करते हैं कि सारे लोग खुश रहे, अच्छे से रहे, है ना? बेचेलाल जी, आज का आपने टॉपिक देखा होगा तो हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं, इस बारे में आप क्या बताएंगे?
1: जी, आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया रखा है आपने। और सही बात यह है कि हमारे नियमित खानपान से और नियमित उठने बैठने से यानी नियमित दिनचर्या से
0: जी
1: हम 30% स्वास्थ्य अपने आप अपना ठीक कर सकते।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि अगर हम थोड़ा दिनचर्या को अपने ठीक कर ले तो काफी हद तक हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं।
1: और मैम जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जी हम लोग सोचते नहीं हैं, जैसे खाने के जो भी आइटम है, तिलहन हो गया या मान लो धनिया हल्दी मिर्च जो भी है, शायद है कि अपने घर का या अपने सामने का चीज हम भले ही महंगी हो, अब हम सोचते हैं हमें सस्ता मिल गया, डॉक्टर को हम 1000 रुपए का पर्चा बनवाएंगे, उससे अच्छा है कि हम महंगा खरीद के खाएं।
0: सही बात है, जो भी चीज ले वो जांच के लिए कि वो शुद्ध है या सही है या नहीं है, सस्ते की वजह से कोई ऐसी चीज ना ले ले जिससे कि हमारी सेहत को नुकसान हो। बहुत अच्छा लगा बेचेलाल जी आपसे बात करके, क्योंकि आज तक तो आपसे पत्रों के माध्यम से बात होती थी, आज फोन कॉल पे बात हो रही है। और आज बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम जी, घर द्वार फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनवा दें क्योंकि

0: हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते। आप कौन बात कर रहे
1: मैं
0: हैं?
1: खुर्जा से लखराज अरोड़ा
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है और
1: जी।
0: आपकी कॉल लग गई है। और कैसे हैं तिलकराज जी आप?
1: बहुत ही अच्छा है, कॉल लग गए तो और भी ज्यादा अच्छे हो गए आज।
0: जी, आज तक आपके पत्र आते हैं, आते थे और उन्हें पढ़ते थे। आज आपसे पहली बार बात करने का मौका मिल रहा है मुझे।
1: मुनव्वर जहां जी लग रही है मुझे, ये प्यारी सी आवाज। तो
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना। मैं मुनव्वर
1: श्रोताओं के
0: जहां,
1: दिलों पे राज कर रही है।

0: बहुत शुक्रिया भाई आपकी
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों का नजरिया है जो आप लोग इतना प्यार बांटते हैं सारे लोगों पर, है ना?
0: जी जी जी, जी।
1: तिलक राज जी, आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: सुबह शाम योग कीजिए और टहलने जाइए, और समझ लो योग और टहलने जाओगे तो डॉक्टर से दूर ही रहोगे।
1: जी बिल्कुल। और एक और सबसे अच्छी आदत क्या है कि हाथ धोते रहना समय समय पर। कोई भी चीज है खाने, घर से जब घर के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो उस समय सबसे पहले हमें हाथ धोना चाहिए, उसके बाद घर की कोई चीज छूना चाहिए, है ना? और बच्चों को तो ज्यादातर घर में जब घुसे वो तो उनके हाथ पैर धुलाना चाहिए। दूसरी चीज ये, नींद कम से कम 7 या 8 घंटे की प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान इतना बिजी हो गया है कि वो नींद अपनी पूरी नहीं ले सकता, और नहीं ले पाता है नींद, जिसकी वजह से आए दिनों कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती है और डॉक्टर के यहाँ जाता रहता है,
0: परेशान होता है।
1: तिलक राज जी, और क्या कहना चाहेंगे आप, अपने विचार कुछ रखना चाहेंगे? मानसून आ गया है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, और आज हमारे यहाँ बारिश भी हुई है सुबह से। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में भी साफ सफाई होती है, और ज्यादातर मोस्टली बरसात के मौसम में डॉक्टर की दुकानें भरी हुई चलती हैं, इस बारे में क्या श्रोताओं से?
0: बहुत चलता है
1: जी,
0: जरा भीगने से बचे
1: जी,
0: और भीग जाए तो कपड़े तुरंत बदल लें,
1: और पानी इकट्ठा ना होने दें जिससे कि मच्छर ना पनपे, और मच्छर
0: भी उबलाओ वापी है।
1: तिलक राज जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए हमारे श्रोताओं को। आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: फिल्म शागिर्द का गीत है, बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो।
1: शागिर्द का बहुत अच्छा सॉन्ग आपने पसंद किया है, लीजिए भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर ये गीत।
2: ऐसे ना बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो, ओ बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो हसीना क्या चाहे,
3: यही तो मालूम नहीं है हम

ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किप

अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गा।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं?
1: बेलगाम डिस्ट्रिक्ट निपानी कर्नाटक से शिवानंद वचनर बात कर रहा हूँ मैडम। मैं
0: कर्नाटक से बात कर रहे हैं, नाम क्या बताया?
1: शिवानंद।

0: मैं कर्नाटक से बात कर रहे हैं। नाम क्या बताया?
1: शिवानंद।
0: शिवानंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। क्या करते हैं आप शिवानंद?
1: मैं मैडम ड्राइविंग करता हूँ और पत्रकार भी हूँ मैं।
0: अच्छा।
1: हमेशा गाड़ी चलाते वक्त रेडियो चालू रहते हैं और हम गाने सुनते हमारा सफर बहुत अच्छा होता है मैडम।
0: जी जी।
1: रात के वक्त को सब पैसेंजर सोए हुए रहते हैं, हम लोग अकेले ही ड्राइविंग करते रहते हैं, पर खाली हमारे साथ देने के लिए आकाशवाणी एक ही रहता है मैडम। उससे हमारा सफर अच्छा होता है मैडम और हमको तकलीफ टेंशन कौन सा भी नहीं रहती, क्योंकि अलग अलग माहिती मिलती है और गाने सुनने को मिलती है, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगता है मैडम।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने रेडियो को एक अपना सच्चा साथी और दोस्त बना रखा है, जो रात और दिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ता है।
1: आपके आकाशवाणी के बारे में मैं एक छोटा सा कविता बोलता हूँ मैडम।
0: जी बिल्कुल।
1: कागज के फूल से खुशबू लेने में क्या मजा, कागज के फूल से खुशबू लेने में क्या मजा, जिस घर में बरेली आकाशवाणी न हो उस घर में बैठने में क्या मजा।
0: बहुत बढ़िया।
1: बरेली से मिलती है प्यार, प्यार से सुनिए सब लोग एक बार, सुनते ही रहोगे बार बार, अच्छा रहता है बरेली आकाशवाणी का सिलसिला, इसीलिए मेरा नेपाली कर्नाटक से बरेली आकाशवाणी से दिल मिला।
0: बहुत बढ़िया।
1: आकाशवाणी बरेली वेरी वेरी बेस्ट, रेन और शाइन, आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम इज वेरी वेरी फाइन।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी आपने पंक्तियाँ लिखी हैं और एक एक पंक्ति में बहुत बहुत सारे अर्थ छुपे हुए हैं और सारे अर्थ ये बयान कर रहे हैं कि आकाशवाणी बरेली द बेस्ट है ना?
1: हाँ मैडम, और मैं इससे दूर रहता हूँ इसीलिए मैं एयर ऑन न्यूज पर मैं मोबाइल पर सुनता हूँ, आपका फंक्शन के बारे में सब मैं फेसबुक पर सब देखता हूँ मैडम, इसीलिए आपका इतना दूर रहने पर भी हमारे दिल के पास और हमारे कानों के पास आपका आवाज।
0: जी जी,
1: हमको
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने दूर होने के बाद भी आप अपने दिल में बसाए हुए हैं आकाशवाणी बरेली को। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं, इस बारे में शिवानंद जी आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कैसा मैडम, एक एक बार क्या होता है कि पेशेंट जो रहता है बहुत उनका बीमारी रहते हैं, वो बीमारी की वजह से वो डॉक्टर लोग अच्छी तरह से हमारा देखभाल करते हैं, इलाज करते हैं, पर ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है कि वो उसके डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता, वो पेशेंट को नामुमकिन के लिए उनको बहुत तकलीफ होता है, पर उनका प्रयत्न तो हमेशा रहता है कि पेशेंट तैयार हो जाए और उनका सब जो तकलीफ है वो सब दूर हो जाए, देखते हैं, पर फिर भी कई बार ऐसा होता है, इसीलिए हम उनसे शिकायत न करते उनको पूछने चाहिए कि हम क्या करें, हमारी एक ही नहीं दूसरे और पेशेंट या दूसरे लोगों को हम क्या सीखना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को पूछना चाहिए, खाली पीने उनको डॉक्टरों को नाम रख के नहीं चलता मैडम, ऐसा मुझे लगता है।
0: जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, मैं क्लियर कर दूं अपने सारे श्रोताओं से, आपके कहने का मतलब ये है कि हमें डॉक्टर से एडवाइस अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या ऐसी चीज करें, क्या ऐसे काम करें जिससे कि हम एक स्वस्थ जीवन जिए, तो इसके लिए आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं।
1: होता है मैडम, जी हम बिना कुछ पर्ची के न लेते हुए हम सीधा औषध और कुछ भी गोलियां औषध हम खाते हैं, उसके बाद हमारे तकलीफ होता है और हमारी बीमारी बढ़ जाती है, फिर हम बाद में डॉक्टर के पास जाने के बाद वो कसूर हमारा रहता है मैडम, बिना पर्ची के हम औषध खाते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होता है, इसीलिए हमको तबीयत बिगड़ जाता है, फिर हम डॉक्टर को बोलने के लिए जो गलत होती है मैडम, इसीलिए ऐसा सुझाव है मैडम।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि पहली बात अपने स्वस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए हमें डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में क्या चीजें शामिल करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रहे, है ना? और एक चीज ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि कभी भी अपने आप मेडिकल से कोई भी दवा लेकर ना खाएं, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना ले। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे श्रोताओं को शिवानंद जी। आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: क्रांति फिल्म का गाना सुनने का है।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम परेली, पुरानी मुसी परेली से बोल रहा हूँ।
0: जी लाल मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका।
1: जी शुक्रिया।
0: आज की हमारी जो बात है वो है, हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं, इस बारे में क्या श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे?
1: जी बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बारिश भी शुरू हो चुकी है और बारिश के मौसम में तरह तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं, जिसकी वजह से हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। और कौन सी बातें हैं जो डॉक्टर के पास हमें जाने से रोक सकती है? तो सबसे पहले तो यह है कि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई का मेन ध्यान रखें, ताकि साफ सफाई अगर रहेगी तो उसकी बीमारियां नहीं होंगी और उसकी वजह से हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकते।

0: जी
1: एक बात और है कि बारिश जब होती है तो लोग बिना पानी में भीगते हैं, वो भी नुकसानदायक होती है, जो डॉक्टर के पास जाने को मजबूर कर देती है। अगर बिना वजह ना भीगे और अपने आप को सही और स्वस्थ रखें तो भी डॉक्टर के पास आप जाने से बच सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं, मान लो कम खाएं और मतलब खाना कम खाएंगे तो हमारे पेट का पाचन क्रिया भी ठीक रहेगा और पानी ज्यादा पिए तब भी हमारी किडनियों की सफाई होती रहेगी। ये भी आदतें भी है जो हमें डॉक्टर के पास जाने से रोक सकती है। तो ये सारी बातें हैं, अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे हम तो हम डॉक्टर के पास कम से कम जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
0: एक खाने पीने से अलावा अगर हम देखें तो आज के टाइम में तनाव बहुत चल रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो जाता है, बच्चे हैं उनको भी तनाव है, अरे पढ़ाई का टेंशन, तो ये भी एक बीमारी का कारण बनता है कि तनाव करना। तो आज के टाइम में हम
1: मतलब ये है कि अगर कोई काम है, मान लीजिए किसी प्रकार का व्यक्ति को टेंशन है तो सिर्फ दिमाग पे जोर लेने से टेंशन को दूर तो नहीं किया जा सकता, कोशिश ये की जाए कि उसका मसला कैसे हल होगा, किस तरीके से हमें तनाव से मुक्ति मिलेगी, या मान लीजिए किसी हमें परेशानी है तो हम उस परेशानी में कैसे निकलेंगे, उसका मसला हमें खोजना चाहिए। दिमाग पे टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, दिमाग अगर हम टेंशन ना लेंगे तभी हम डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बातें आपने बताई लाल मोहम्मद जी। आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज गाना सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है दहली, उसका एक गाना है महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, बेवफा जा तेरा वादा दे।
0: बहुत प्यारा सा सॉन्ग आपने सुनने की फरमाइश की है, लीजिए हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन और कहाँ से?
1: अस्सलाम वालेकुम मैम। जी,
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सुल्तान रजा बात कर रहा हूँ मैम आज आपसे।
0: जी सुल्तान रजा, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए मैम, आप कैसे हैं?
0: कुतुबखाना से?
1: जी जी
0: जी बिल्कुल, और हम भी
1: पहचान लिया।
0: जी।

0: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को नहीं पहचानेंगे तो और किसे पहचानेंगे जी।
1: शुक्रिया।
0: सुल्तान रजा, आज का हमारा टॉपिक है, हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं, तो इस बारे में आप क्या बताएंगे?
1: सबसे पहले तो एक लाइन आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारे पास जब पानी के घड़े थे हम बीमारी दूर खड़े थे, आज हमारे पास पीने को आरो है और बीमारी भी हजारों है।
0: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। घड़ों की जो कंपैरिजन है वो तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आज आरो आने के बावजूद भी हर घर में घड़ा देखने को मिल जाता है, और उसके जो पानी की बात है वो तो खैर कोई पानी की तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें सारे ही खनिज मिलते हैं घड़े के पानी में ठंडे होने के साथ साथ।
1: जो कि हमारे पास आरो है उसके बावजूद भी हम लोग इस बीमारी में ग्रस्त हो चुके हैं
0: जी,
1: कि जो घड़े से नहीं देते आज हो चुके हैं
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी
1: बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं देखना चाहिए, वरना ये भी एक डॉक्टर के पास ले जाने वाली दवा है।
0: जी जी, बहुत छोटी सी बात और बहुत ही काम की बात आपने ये बताई है, कि अक्सर लोग अमूमन खाना खाने के बाद लेट जाते हैं, या तो टीवी देखने लगते हैं या मोबाइल देखने लगते हैं, है ना
1: जी। और सबसे पहले तो आजकल टीवी छोड़ो मोबाइल देखते हैं ज्यादा, खाना खाने के तुरंत बाद और खाना खाते हुए भी देखते हैं। इसमें एक बात और भी होती है कि हम लोग आजकल जो है जल्दी सुबह उठ नहीं पाते, खाना जो है वो सुबह का दोपहर में, दोपहर का शाम में, शाम का रात में, ये चल रहा है, सारा डाइजेशन बिगाड़ रखा है हम लोगों ने अपना।
0: जी बिल्कुल, मतलब
1: अगर टाइम से खाना खाया जाए,
0: कहने का मतलब ये है अगर हम अपनी दिनचर्या संभाल लें थोड़ी सी, तो काफी हद तक हम मतलब सेहतमंद रह सकते हैं, और कई चीजों में हम डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा।
1: ऐसी प्रकृति का नियम है कि सुबह का नाश्ता जो है 7 बजे, 7:15 बजे कर लें, उसके बाद 12 बजे हमें राइट भूख लगती है, हम खाना खा लें, उसके बाद शाम का जो है 8 से 9 के बीच खाना खा लें और सो जाए। तो ये हमारे ऑटोमेटिक ही चीज ऐसी डॉक्टर के पास ले आने, क्या नाम भी नहीं ले सकते उन डॉक्टरों का, हम जगह जाते हैं लेने के, पेट खराब है, गैस के लिए हमें गैस बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये कुछ भी नहीं होगा।
0: और आज एक चीज, एसिडिटी, बहुत से लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं, लाइन लगी हुई है डॉक्टर के
1: यहाँ। खाना ना खा के चाय पीते हैं ना,
0: चाय भी नुकसान देती है, कि खाने की वजह, अगर खाने की जगह हम चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, है ना,
1: ज्यादा करते हैं।
0: बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही काम की चीजें आपने बताई हैं, जिन्हें ध्यान रखकर हमारे श्रोता काफी हद तक अपने आप को बिना डॉक्टर के पास जाए स्वस्थ रख सकते हैं, है ना,
1: बचा सकते हैं।
0: और सुल्तान राजा,
1: मैं कहता हूँ खाना खा के थोड़ा सा आप टहल ले तो अच्छा रहेगा, चाहे भले से आप किलोमीटर ज्यादा ना जाए, 2 से 3 किलोमीटर घूम ले या 1 किलोमीटर घूम ले, तो आपके सारे जो है खाना जो खाया हमने वो सारा अच्छे से मिल जाएगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा, और हम अपने आराम से फिर आगे लेटे या फोन चलाएं कुछ भी करें।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये होता है ना कि जब हम खाना खाने के बाद टहलने जाते हैं ना, तो हमें अलग ही स्फूर्ति महसूस होती
1: मिल जाती है,
0: स्फूर्ति महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है खुद भी इंसान को, और जब भी
1: खा के तुरंत लेट जाते हैं तो फिर पेट भी भारी और खुद भी भारी हो जाते हैं फिर लोग।
0: जी जी जी, और फिर तो एक काम करके करने का मन नहीं करता होगा,
1: आलस आने लगता है, और ज्यादा खाना भी ना खाए, थोड़ा सा खाना खाए, मतलब इतना खाए जो कि पेट में जगह रहे, कि हमें सांस भी लेनी है, कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं तो थोड़ा सा जोलते रहते हैं उधर।
0: अक्सर ऐसा होता है लोग दोपहर में हल्का और शाम को भारी खाना खाते हैं, लेकिन यही चीज उल्टी करते हैं, दोपहर में भारी खाना खाना चाहिए और शाम में,
1: और शाम को हल्का खाना,
0: हल्का खाना खाना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी और बहुत ही काम की बातें अगर याद रखेंगे लोग, काफी हद तक डॉक्टर से दूर रहेंगे।
1: बरेली में जो आरजे है ना, वो शायद आपसे ज्यादा इस मामले में अच्छे से बात करती है, मतलब जो कि आप अच्छा प्रेजेंट करती है प्रोग्राम।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जरा नवाजी। और अब ये बताइए कि आज आपकी कॉल लगी है, गीत कौन सा पसंद करेंगे?
1: मूवी का नाम चलेगा मैम बेवफा सनम, दिल पे चलाई छुरियां।
0: दिल पे चलाई छुरियां, चलिए हम भेजते हैं आपके पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: मैं रामचंद्र मखेजा बोल रहा हूँ, धमतरी से। मानसून पर बोलना है ना मैडम? जी
0: रामचंद्र मखेजा?
1: जी धमतरी। बढ़िया
0: कैसे हैं रामचंद्र जी?
1: बढ़िया।
0: आज मानसून पे नहीं बोलना है, मानसून भी रिलेटेड है इस चीज से कि हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं। विषय ये है हमारा,
1: जी
0: लेकिन मानसून भी इस विषय में आ जाता है क्योंकि मानसून में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए उससे दूर रहने के लिए।
1: जी जी
0: जी बताइए, आपकी क्या राय है, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए।
1: हमें क्या बीमार डॉक्टर से दूर रहने के लिए हमें जो है अपने आप को मौसम प्रकृति के अनुकूल रहना है, विपरीत रहना है। जैसे ठंड पड़ रही है तो अपने को स्वेटर पहनना है और खान पान में जो है ध्यान देना है। अब बरसात आ रही है तो भीगे नहीं, इससे क्या है फ्लू फैल सकता है। सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त होते हैं, तो हमें अपने आप को संभालना है, खान पान में ज्यादा ध्यान देना है। मौसम के
0: बहुत
1: अनुकूल हमको रहना है।
0: नहीं, मौसम के अनुकूल तो रहना है, लेकिन मौसम के अलावा भी अगर नॉर्मल भी मौसम होता है उसके बावजूद भी बहुत
1: हाँ
0: सारी
1: तो
0: आदतें
1: हाँ
0: होती
1: तो
0: हैं।
1: अपने को योगाभ्यास करना चाहिए। सुबह उठते दिनचर्या जो रहती है अपनी निपटा के
0: जी
1: योग करें, तो योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। क्योंकि
0: जी बहुत अच्छी
1: हमारे
0: बात।
1: ऋषि मुनि जितने भी तपस्या करते थे जंगलों पहाड़ों में, खान
0: जी
1: पान उनका अलग, कम ज्यादा रह जाने, ज्यादा खाना अच्छा नहीं है शरीर के लिए।
0: जी
1: संतुलित आहार ही शरीर को स्वस्थ रख सकता है और निरोगी काय हो सकती है योग से।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई रामचंद्र जी। और आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आप सुनाइएगा, जमीर फिल्म का गीत है, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।

0: हेलो जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं मास्टर राधेश्याम बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
0: कैसे
1: हैं आप सुनाइए।
0: जी जी सब बढ़िया है। और आज का टॉपिक है, हमारी कौन सी आदतें हमें डॉक्टर से दूर रख सकती हैं, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप राधेश्याम जी?
1: मैं ये कहना चाहूँगा, हम जैसे सुबह सुबह उठे तो एक गिलास गर्म पानी पी के और एक घंटा मॉर्निंग वॉक करें,
0: लेकिन इस
1: लें और पर्याप्त जो है शाम को 7 से 8 घंटे की नींद लें और हर साल में जो है एक बार पूरे बॉडी का चेकअप अवश्य कराएं।
0: हर तीसरे या छठे महीने में या ईयरली कराना जरूरी है। और आप बताइए, लेकिन एक बात हम ये कहना चाहेंगे, जैसे गर्मी ज्यादा पड़ रही थी अभी, अब तो खैर बारिश हो गई है तो थोड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन जब गर्मी तेज पड़े तो उस टाइम में कोई भी गर्म पानी निहार पेट ना ले ज्यादा तेज, है ना? हल्का नॉर्मल पानी
1: दिन में तो ठंडा ही पिए।
0: जी जी,
1: पानी ज्यादा पिए, पानी गर्मी पड़ रही ज्यादा तो
0: पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। बहुत सारी बीमारियां तो हमारी पानी ही फिल्टर कर देता है, क्योंकि पानी जब पीते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर ऐसी हैं जो कि विषैले पदार्थ होते हैं, वो सारे ही बाहर निकल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है इंसान को कि कौन कौन सी बीमारियां पानी के जरिए, यूरिन के जरिए बाहर निकल रही है ना। तो पानी ज्यादा से ज्यादा तादाद में पिए जो भी हमारे श्रोता है। और 7 से 8 घंटे की जो आपने प्रॉपर नींद कहा है, तो नींद भी लेना बहुत जरूरी है। काम में, टेंशन में या जिम्मेदारियों में इतने ना उलझ जाएं कि खुद को ही भूल जाएं, क्योंकि नींद ना लेना, नींद ना लेने का मतलब ये हुआ कि इंसान खुद को भूल रहा है। और नींद प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए और हाथों को साफ बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर अमूमन ऐसा होता है बच्चे घर में आते हैं, बाहर कहाँ खेल रहे हैं कहाँ नहीं खेल रहे हैं कुछ पता नहीं रहता है, और वो ऐसे ही आके घर में कोई भी चीज छू लेते हैं। तो बच्चों के तो खास तौर से घर में एंट्री होते ही उनके हाथ जरूर धुलाना चाहिए,
1: क्योंकि तुरंत हाथ धोने चाहिए। जी जी, तो सही कह रही हूँ, ठीक है
0: जी, बिल्कुल, क्योंकि उनके जरिए और दूसरे लोगों को भी बैक्टीरिया लग सकते हैं, है ना? ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेगा इंसान तो काफी हद तक डॉक्टर के पास नहीं जाएगा कि छोटी मोटी चीजें लेकर कि एसिडिटी हो रही है या पेट में भारीपन है या हमें परेशानी इस बात की, छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो नहीं जाना चाहिए, है ना? आज आपकी कॉल लगी है राधेश्याम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गीत कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है गुनाहों का देवता, गाने के बोले ए सनम ए सनम।
0: लीजिए राधेश्याम जी, आप सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, मेरी कॉल कट हो गई उस समय।
0: जी जी सद्दाम अली, कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं मैम?
0: सब बढ़िया है। बताइए आप, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खास टॉपिक है कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग आदतें ऐसी अपनी अपनाते हैं कि आदतों की वजह से डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, बीमारी की वजह से नहीं बल्कि आदतों की वजह से।
1: बिल्कुल बात सही है मैम।
0: तो कौन सी ऐसी आदतें हैं वो जो डॉक्टर के पास ले जाती हैं?
1: ऐसी आदतें हैं मैम, जैसे कि किसी के मौसम में आप, ठंड का मौसम है और मौसम में आप टाइम बे टाइम नहा रहे हैं
0: जी,
1: और ये खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, काम के लक्षण पैदा हो जाते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही मौसम बारिश अगर हो जाए तो हम नहा लें तो इससे भी हमें हानि भी है।
0: जी जी बहुत अच्छी बात बताई, और सबसे अच्छी बात आपने ये जो बताई, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है, जब गर्मी लगती है जब मन करता है तभी नहा लेते हैं, शाम के वक्त बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, रात में, है ना? रात का वक्त ऐसा होता है कि इसमें नहाना जो है वो इंसान को नुकसान दे जाता है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं और अननेसेसरी अपने जब भी मन करा तभी नहाने के लिए चले जाते हैं, है ना? ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें इंसान अगर याद रखे तो काफी आदतों को सुधार कर डॉक्टर से दूर रह सकता है, है ना? इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप श्रोताओं से?
1: मैं श्रोताओं पर ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर से, जो इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, समाधान है, अपना बचाव रखें, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं के लिए समय से देख कर उस काम का समय है या नहीं। अगर बगैर समय कोई काम करते हैं डॉक्टर की सलाह लेना पड़ेगी, क्योंकि बीमार पड़ते हैं लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, बहुत से लोग होते हैं सर में दर्द है, या वो सर का दर्द पता नहीं बीपी की वजह से हो रहा है या टेंशन की वजह से हो रहा है, लेकिन वो लोग जाते हैं मेडिकल से और दवा ले आते हैं ऐसे ही, और वो चीज काफी नुकसान देती है, और कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं कि लोगों की ऐसे में जान तक चली जाती है। सबसे बड़ी आदत ये खराब होती है कि बेवजह में कोई भी परेशानी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना, है ना? तो सबसे पहले इसी आदत को छोड़ना चाहिए। सद्दाम, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम फिल्म का

श्रोताओ, ये तो बात चल रही थी कॉल्स की। हमारे पास फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आए हुए हैं, जिन्होंने इस बारे में बताया है कि डॉक्टर से कैसे दूर रह सकते हैं हम अपनी आदतों की वजह से। इसी बारे में ये हमारे पास पहला कमेंट जो आया है, साधु शहर राजस्थान से भेजने वाले हैं राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़। ये लिखते हैं, सबसे पहले हमें तो अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि हमारा मन बहुत भट है। खास तौर पर खाने पीने में स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में संतुलित आहार लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आगे लिखते हैं, देसी भोजन बगैर मसाले वाले, खास तौर पर हरी सब्जियों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। नमक का इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए और चीनी भी हमेशा कम या परहेज करें चीनी से भी। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी के पीना चाहिए। इसके अलावा नियमित व्यायाम, सुबह मॉर्निंग में हरियाली, सुबह की हरियाली में घूमना चाहिए। जहाँ पार्क हो, वृक्ष हो, पेड़ पौधे हो, वहाँ पर नंगे पैर घूमना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए, आँखों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। आगे लिखते हैं, रात्रि को भोजन की मात्रा कम करना चाहिए और भोजन करने में 1 या 2 घंटे बाद सोना चाहिए। बहुत अच्छी इन्होंने बातें बताई हैं। और आगे भी लिखते हैं, अच्छी नींद आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम चिंता मुक्त होकर सोए। अगला कमेंट दोस्तों हमारे पास आया है दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से।

ये भेजने वाले हैं विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी मिस्कीन, आरव मिस्कीन। ये भी कुछ इसी तरह से लिखते हैं कि डॉक्टर से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका बीमारियों से नहीं बल्कि अच्छी आदतों से दूर रहना है। अच्छी आदतों से दूर रहना नहीं है दोस्तों, इन्होंने लिखा गलत, थोड़ा कन्फ्यूजन इन्हें हो गया है। अच्छी आदतों को पास लाना है जिससे डॉक्टर से दूर रहना है। ये लिखते हैं आगे, संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, रोज व्यायाम, पर्याप्त नींद, भरपूर पानी, तनाव को नियंत्रित करना चाहिए और धूम्रपान से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक लिखा है, धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हालांकि अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए इतने सारे अभियान चल रहे हैं और लोगों को बार बार बताया जाता है और जो इसके लोगो होते हैं उन पर दिखाया जाता है कि इससे जो कैंसर की बीमारी से कितना गंदा सा सीन लिखा बना होता है, लेकिन तब भी लोग इसे खरीदते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, आप लोगों के खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप लोग खाते हैं और लत पुरानी लग गई है तो धीरे धीरे करके ये लत भी जा सकती है। आगे ये हमारे पास एक और आया है कमेंट, तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, अरहम बाबू और किशबा नूर। ये लिखते हैं, आदतें सक्रिय जीवन शैली, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम या तेज कदमों से सैर करें। ये आपके हृदय को स्वस्थ रखता है, वजन नियंत्रित करता है और शुगर व ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता। इन्होंने तो इतना प्यारा टिप दिया है कि ज़्यादातर आज के वक्त में लोग इन्हीं चीज़ों की टेंशन लेते हैं कि कहीं हृदयघात ना हो जाए, वज़न अनियंत्रित ना हो जाए, शुगर ना हो जाए, ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। तो उसके लिए व्यायाम और इन्होंने सुबह की सैर के लिए कहा है। पौष्टिक आहार, संतुलित आहार, अपनी थाली में हरी भरी सब्जियाँ ज़रूर रखें, साबुत अनाज को शामिल करें, चीनी और नमक कम, मसालेदार चीज़ें कम। आगे हमारे पास ये आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट, ये भेजा है गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी से। ये लिखते हैं, निम्न आदतें हमें डॉक्टर से दूर रखती हैं। इन्होंने भी व्यायाम, खान पान और बाहर के खाने से मना किया है। बाहर का जो खाना फास्ट फूड वगैरह बिकता है, और मसाले सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, मसालों का कम प्रयोग करें। और इन्होंने भी यही लिखा है कि सुबह जल्दी उठें और रात में 10 बजे तक सो जाएं और सुबह में टहलने ज़रूर जाएं। आगे जो हमारे पास जितने भी आए हैं कमेंट, उन्होंने अपने नाम लिखे हैं केवल और कुछ बताया नहीं है। इसके अलावा एक रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप कुमार पाल हैं, इन्होंने लिखा है, सुबह अपना खान पान पर व्यायाम करें और आगे लिखें चाय और जो और चीज़ें हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लें। और ये बात सही लिखी है, दवाई वगैरह बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए। आगे जिन लोगों ने लिखा है उसमें प्रदीप चौहान है, योग व्यायाम करना, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, पौष्टिक आहार लेना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको स्वस्थ रख सकती हैं। जिन लोगों ने भेजे थे कमेंट, बहुत ही अच्छे टिप दिए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे सारे श्रोता इन सारे टिप्स को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या में लाएंगे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और अब कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए आप प्रस्तुत है आज और कल में प्रस्तुत और रिले होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त समीक्षा।

श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नारी संसार। इसमें कुछ खास विषयों पर होगी चर्चा, जैसे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार पर। साथ होगा नए मेहमान के लिए सेगमेंट इनसे मिलिए। शाम 6 का समय रहेगा कार्यक्रम युववाणी का। इसमें कुछ खास है आज, में आप जानेंगे वन महोत्सव के सप्ताह के बारे में। शाम 6:30 का वक्त रहेगा ग्राम जगत का। चर्चा होगी ग्रामीण विकास एवं कुटीर उद्योग। साथ होगी एक परिचर्चा अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस, कृषि दिवस और वन महोत्सव पर। एक भेंटवार्ता सुनेंगे आप, जिसका विषय होगा धान की रोपाई की तैयारी और वृक्षारोपण। इस संबंध में कृषक मुकेश सिंह से कन्हैया की बातचीत आप सुनेंगे। आज शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम अनुरोध गीत। शाम 7 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि पाठशाला। आज का विषय होगा ऊष्मीय तनाव को कम करने हेतु कम लागत वाले आवासीय संशोधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकेश सिंह और कृषक होंगे रवि कुमार। श्रोताओं, कल सुबह 8:15 पर आप जानेंगे बरेली के हालचाल कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। 8:45 पर आप सुनेंगे लोक धुनों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत। आपकी पसंद सुनेंगे कल सुबह 10 से फेसबुक के माध्यम से। आपके रेडियो सेट पर बिखरेंगे रंग कार्यक्रम सब रंग में।

कल पूर्वाहन 11 बजे से। झुमका गिरा रे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 11:15 से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का आनंद लीजिएगा 11:30 से। आपके पत्रों पर आधारित फिल्मी गीत सुनिएगा कार्यक्रम अनुरोध गीत में कल 1 बजे से। रस रंग आपके कानों तक पहुंचेगा हर रोज की तरह कल 2 बजे से। 2:30 पर सुनिए विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। दोस्तों NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग होगा कल 3:30 से। आपकी बात आकाशवाणी के साथ होगी कल 4 बजे से। और हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कल दोपहर 2:30 से अपने निर्धारित समय पर। कल शाम 5:05 पर सुनिए भजन संध्या। नारी संसार का समय रहेगा हर बार की तरह कल शाम 5:30 से। इसमें वार्ता होगी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता। इस विषय पर वार्ताकार होंगी पूजा मिश्रा। शाम 6 बजे का समय होगा युवाओं का एनर्जी से भरपूर कार्यक्रम युववाणी का। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी कल शाम 6:30 से। कल शाम प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए कृषि पाठशाला। कल का विषय याद रखिएगा वर्ष भर चारे की उपलब्धता और हाँ, इसके लिए उत्पादन योजना। और कल के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राकेश पांडे, कृषक होंगे अमित गंगवार। कल शाम 7:15 पर आप सुनेंगे ICC वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत द ओवल ग्राउंड लंदन से इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच का ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र, अनलिमिटेड मनोरंजन का खजाना। शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम नारी संसार, जिसे लेकर शिल्पी चौधरी स्टूडियो में आ चुकी हैं।

नमस्कार बहनों, आज आपके अपने प्रोग्राम नारी संसार में मैं शिल्पी हूँ आपके साथ। बहनों, आज 1 जुलाई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है आज का, क्योंकि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है, जो देश के सबसे सम्मानित चिकित्सकों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों में से एक थे। भारत देश में 1991 से इस दिवस को मनाना शुरू किया गया। डॉक्टर्स को समाज में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। जब कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा होता है तो वही डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी सहायता करते हैं और हमें ठीक करते हैं। डॉक्टर्स को सभी तरीके की बीमारी, उसके लक्षण, उपचार की पूरी पूरी जानकारी भी होती है, जिससे वो सभी मरीजों को ठीक कर देते हैं। और डॉक्टर्स के लिए तो कोई छुट्टी भी शायद नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं तो डॉक्टर्स ना तो ये देखते हैं कि फेस्टिवल है और ना ही ये देखते हैं कि आज दिन है या रात है, अब टाइमिंग्स ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर्स के पास जब भी आप जाते हैं तो वो हमेशा आपको अवेलेबल मिलते हैं, भले ही आप इमरजेंसी में ही क्यों ना दिखाना पड़े। बस उनका मेन मोटिव अपने पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट देना होता है। और बहुत बार डॉक्टर्स हमारे पेशेंट्स को एक नया जीवन भी देते हैं, इसलिए हम सबको डॉक्टर्स को दिल से एक थैंक्स ज़रूर देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके हमें निरोगी काया देते हैं।

बहनों, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना, जन भागीदारी अभियान मॉडल के तहत निजी अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी के साथ पहुँच, गुणवत्तापूर्ण देखभाल और जागरूकता को बढ़ावा देना है। SNPSA महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विषय जैसे कि एनीमिया है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर के लिए प्रॉपर चेकअप कराना है। आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य शिविरों में शिक्षा के माध्यम से स्वच्छता, पोषण तथा कल्याण पर जागरूकता को बढ़ावा देना है। स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की पूरी देखभाल करना है, क्योंकि अगर परिवार में नारी स्वस्थ नहीं होगी तो वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख पाएगी। नारी परिवार की एक धुरी होती है और नारी का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ नारी एक परिवार को स्वस्थ रख सकती है।

0: बहनों, हम लोग अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, और अपने परिवार का ध्यान रखते रखते, उनकी हर जरूरतों को पूरा करते करते, अपनी अगर हमारी कभी कोई तबीयत खराब होती है तो यूं ही दवा ले लेते हैं या फिर सोचते हैं ऐसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि जब तक एक घर की नारी स्वस्थ नहीं होगी तो उसका परिवार कैसे स्वस्थ हो सकता है। यानी कि अगर नारी स्वस्थ है तो उसका परिवार भी स्वस्थ हो सकता है। तो आज इसी विषय पर हमारे संग रेणुका जी हैं, तो हम जानते हैं, रेणुका जी से बात करते हैं कि रेणुका जी इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नारी संसार में।
1: धन्यवाद शिल्पी जी।
0: हाँ, तो रेणुका जी, मैं ये कह रही थी, जो हम महिलाएं हैं खास करके दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, अगर वर्किंग वूमेन्स हैं
1: जी
0: तो भी घर का सारा काम करके अपने वर्किंग प्लेस पर पहुंचते हैं, और जब वहां से वापस आते हैं फिर से हमें घर का सारा काम करना होता है। इस बीच में बहुत सारी स्ट्रेस होता है, थकान होती है, शरीर में परेशानी होती है, कभी सर दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है, तो फिर अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं।
1: नहीं देती हैं। हाँ जी हाँ जी,
0: तो इस
1: ये बात बिल्कुल
0: बारे
1: सच है कि
0: में, हाँ
1: फीमेल्स जो हैं वो वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, इन सब पे काम तो पड़ता ही है। थोड़ा सा कमर में दर्द हुआ तो दवा ले ली, थोड़ा सा हल्का सा बुखार आया तो घर में सबके पास फर्स्ट एड किट रखा रहता है, पैरासीटामोल खा ली। तो इसमें जो हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो
0: जी
1: लॉन्ग रेज हो जाते हैं।
0: मतलब अक्सर वही परेशानियां होने लगती हैं ना, तो वो डॉक्टर को दिखाती हैं,
1: दिखा पाते
0: और
1: हैं क्योंकि उन्हें समय ही नहीं है।
0: बिल्कुल अपने लिए समय निकालना बिल्कुल भूल जाती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में भी आ जाती हैं और वक्त रहते इलाज ही नहीं करवाती हैं, और जब उन्हें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है।
1: देर
0: तो
1: हो चुकी होती है।
0: इस बारे में आप हमारी बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: देखिए शिल्पी जी, आपके माध्यम से मैं बस एक ही सलाह देना चाहूंगी कि चाहे छोटी छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सब अपने जब आप

0: वो अग्नि कहते पिलर हैं
1: जी,
0: आप गृहस्थ जीवन के, आप अपने परिवार का पिलर हैं। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होंगे। तो जरूर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और छोटी मोटी बीमारी के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करें।
1: और क्या होता है कि जैसे अगर हम वर्किंग प्लेस से होकर घर पर आते हैं तो वर्किंग प्लेस का भी प्रेशर होता है, उसके बाद घर का भी प्रेशर होता है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है कि अरे दोपहर में क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, रात के खाने में क्या बनेगा, क्योंकि खाना ऐसा बनाना होता है हम लोगों को कि वो सबके सुटेबल हो, चाहे बच्चा है, हस्बैंड है तो वो वर्किंग है, या घर में और फैमिली मेंबर्स है, सबके बारे में सोच। और अगर पूछो कि क्या बनाए तो कहा जाता है अरे कुछ भी बना लो, है ना। तो ये भी दिक्कत आती है सामने। और सबसे ज्यादा ये चीज है कि जैसे अगर बच्चे हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता और हमारा फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर भी निकलता
0: है, बच्चों के ऊपर भी निकलता है। जी जी, देखिए अगर एक वर्किंग वर्किंग वूमेन है तो उसके लिए सारी चीजें मैनेज करना थोड़ा टफ पड़ जाता है
1: जी,
0: क्योंकि वो बेचारी बाहर से भी थकी हुई आई है, फिर घर पे का घर का भी है, बच्चा भी है, ये सारी चीजें टफ पड़ जाती है। देखिए चीजें मैनेज करना सीखना चाहिए।
1: और मुझे लगता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो परिवार के और सदस्य हैं, उन्हें भी इस चीज को समझना चाहिए।
0: जी
1: मतलब
0: अपने अपने स्वास्थ्य की ओर अपने ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।
1: नहीं, और उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर हम उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज में तो हेल्प करें, उनकी
0: सहयोग करना जरूरी होता है।
1: और अगर उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है या तबीयत खराब हो रही है तो उनको भी रेस्ट की जरूरत होती है। अगर सामने वाला नहीं आपको वो कह रहा है कि रेस्ट के लिए, तो आपको खुद इतना होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारी तबीयत खराब है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज करें। क्योंकि
0: परिवार में ये सब चीजें देखनी चाहिए, सारे जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ा होना चाहिए। सब साथ रहते हैं तो किसकी क्या जरूरत है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए हर एक परिवार मेंबर को।
1: और अच्छा, क्या करते हैं कि जो घर में रखी हुई दवाइयां होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उसी को यूज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वही मेडिसिन
0: वही सबसे ज्यादा खतरनाक मेडिसिन
1: होनी चाहिए, है ना।
0: नहीं करनी चाहिए। जी जी, नहीं करनी चाहिए। मैंने जैसा कि पहले कहा कि छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर का कंसल्ट लेकर दवाइयां लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कई सर में अक्सर दर्द होता है कि सर में दर्द है, है ना। तो लेकिन क्या होता है कि सर में दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है, ये बीमारी जो हमारे शरीर में कोई पनप रही होती है उसका इंडिकेशन होता है, उसी का इंडिकेशन होता है। तो कोई भी अगर परेशानी है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए।
0: जी जी,
1: और अपने ऊपर ध्यान दें, तभी हम परिवार के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: जी,
1: आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी सलाह दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी जी, धन्यवाद शिल्पी जी।

बहनों, अगर आप भी ग्लोइंग स्किन चाहती हैं तो सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बैलेंस डाइट की ज़रूरत है।

है। नींद का आपकी त्वचा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब आप सोते हैं तो आपकी त्वचा की कोशिकाएं खुद को पुनः जीवित करती हैं और नई त्वचा कोशिकाएं बनती हैं। पर्याप्त नींद ना मिलने से जो हमारी स्किन है वो बेजान हो जाती है, इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है पानी। जी हाँ बहनों, पानी का हमारी स्किन के लिए एक बहुत बड़ा रोल है। पानी की कमी से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और हमारी स्किन का ग्लो भी ख़त्म हो जाता है। आप घर पर ही फेस पैक बना सकती हैं। आप बेसन, हल्दी, दही और एलोवेरा को मिक्स करके पेस्ट बनाकर फेस पैक बनाकर यूज़ कर सकती हैं। आप उसे यूज़ करें और इससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। दही को अगर आप डेली फेस पर लगाते हैं तो स्किन सॉफ्ट तो होती ही है, इसके साथ ही साथ जो स्किन पे अगर स्पॉट्स होते हैं तो वो स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। आप जैतून का तेल की भी एक दो बूंदें लेकर अपने फेस पे लगा सकते हैं, इससे भी अगर फेस पर किसी भी तरीके के स्पॉट्स हैं तो वो हट जाते हैं। इसी तरीके से आप नारियल के तेल में कपूर मिला के अगर स्पॉट्स वाली जगह पर लगाते हैं तो भी आपके फेस के स्पॉट्स चले जाते हैं। और इसी के साथ अगर मुल्तानी मिट्टी में आप गुलाब जल मिक्स करके एक फेस पैक बनाकर फेस पर लगाते हैं और उसको सूख जाने के बाद आप नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लें और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है। और अब समय हो चला है आप सबसे अनुमति लेने का, तो दीजिए शिल्पी चौधरी को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब युवा दोस्त सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसे लेकर हाजिर हो गई हैं आबिदा परवीन स्टूडियो में।

हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युवाणी और इस खास सफर में आपके साथ जाने वाली हूँ मैं यानी आबिदा फातिमा। हर बार की तरह इस बार भी युवाणी का ये मंच तैयार है दोस्तों युवाओं की ऊर्जा, उनके सपनों और उनकी आवाज को एक नई उड़ान देने के लिए। अगले कुछ मिनट यानी कि 29 मिनट हम और आप मिलकर बुनेंगे यादों का एक खूबसूरत ताना बाना। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा। और साथियों, आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं चिकित्सा जगत के उस रॉक स्टार की, जिनके बिना हमारे देश के डॉक्टरों की कहानी अधूरी है और जिनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। दोस्तों, डॉक्टर बीसी रॉय वो जादुई डॉक्टर थे जो मरीज की नब्ज पकड़ते ही बीमारी का पता लगा लेते थे। कहते हैं, महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक देश का हर बड़ा नेता अपनी सेहत की चाबी इन्हीं के हाथों में सौंपता था। जब डॉक्टर विधान ने लंदन के दो कॉलेजों में एक साथ एडमिशन लेना चाहा, तो अंग्रेजों ने उनका फॉर्म 30 बार, जी हाँ साथियों, 30 बार रिजेक्ट किया, लेकिन विधान झुके नहीं। 31वीं बार में उन्होंने एडमिशन पाया और मात्र 2 साल में दोनों डिग्रियां एक साथ पूरी करके अंग्रेजों को हैरान कर दिया। आजादी के बाद जब पश्चिम बंगाल दंगों, गरीबी और शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था, तब नेहरू जी के कहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी और हर दिन सुबह मुख्यमंत्री बनने से पहले आम जनता का मुफ्त इलाज करते थे। डॉक्टर विधान की जिंदगी का सबसे अनोखा सच तो ये है साथियों कि उनका जो जन्म और मृत्यु है दोनों ही 1 जुलाई को ही हुई, और इसी अद्भुत संयोग के कारण उनकी याद में 1 जुलाई यानी कि आज ही के दिन को हम नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। तो उन्हीं की याद में हम ये डॉक्टर वाला सॉन्ग भी सुनते हैं।

0: चुप है।
1: जल्दी से जाके ले आओ इनके दिल का डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर मामिया।

सर्दियों मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम का ये दौर जो है वो हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। आजकल जैसे ही गर्मी से बरसात या ठंड की शुरुआत होती है तो हवा में अचानक बदलाव आता है। तो बदलते मौसम में कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये है कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जब तापमान ऊपर नीचे होता है तो हवा में वायरस और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं। यही वजह है कि इस मौसम में सबसे पहले खांसी, जुकाम, वायरल बुखार और गले में खराश, जैसे कि आपको भी लग रहा होगा। मैं आपसे मिलने तो आ गई हूँ लेकिन मेरी जो आवाज़ है वो शायद आज थोड़ा कम साथ दे रही है, तो ऐसी ही कुछ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और कमज़ोर इम्यूनिटी, मौसम बदलते समय हमारे शरीर को जो है वो नए तापमान में ढलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, जिससे जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। इससे बचाव का तरीका है कि इस मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचें, गुनगुना पानी पिएं और अपनी डाइट में विटामिन सी और थोड़ी सी गर्म चीज़ें शामिल करें। क्योंकि मुझे अभी खुद भी खांसी जुकाम है।

इस मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी पीने से बचें, गुनगुना पानी पिएं और अपनी डाइट में विटामिन सी और थोड़ी सी गर्म चीजें शामिल करें। क्योंकि मुझे अभी खुद भी खांसी जुकाम है, इसलिए बदलता मौसम ही इसकी मुख्य वजह है। तो आप भी अपनी दवाई टाइम से लीजिए और फिलहाल अभी इंजॉय करते रहिए और इस सॉन्ग को सुनिए।

आप बनी हुई अपनी दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ और सुन रही हैं प्रोग्राम यो वाणी। और आइए साथियों, अब प्रोग्राम में वक्त है हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट चक्रव्यूह का। तो चक्रव्यूह के पिछले अंक में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे, सबसे पहले तो हम आपके उसके उत्तर बता देते हैं। क्वेश्चन थे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? और इसका सही उत्तर है विटामिन ए। हमारा अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आप भी सोच रहे होंगे, इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एक बार फिर से सुनिए, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमने ये प्रश्न आपसे पूछा था और इसका सही जवाब है रूस। और हमारे चक्रव्यूह का एक अंतिम क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? जी, और इसका बिल्कुल सही उत्तर है मंडूकनिषद। तो हमारे चक्रव्यूह के पिछले अंक के जो क्वेश्चन थे वो हमने आपसे पूछ लिए और उम्मीद करते हैं कि आपने जो आंसर सोचे थे और वो हमारे आंसर से मैच करे होंगे। और अभी आप कहीं मत जाइएगा, अपना कॉपी पेन लेकर के यहीं बैठिए, क्योंकि हम इस सॉन्ग के बाद आपसे हमारे आज के जो चक्रव्यूह के क्वेश्चन हैं वो पूछेंगे। तो आप जल्दी जल्दी उन्हें नोट करिए और सही सही आंसर हमें लिख भेजिए।

और साथ ही हमारे आज के चक्रव्यूह के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, और हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। एक बार फिर से सुनिए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। हमारा अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। एक बार फिर से सुनिए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें बिल्कुल सही सही नोट कर रहे होंगे, क्योंकि आपको इनके उत्तर हमें लिख भेजने हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। और हमारे चक्रव्यूह का आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, भारत के किस राज्य को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। और साथियों, इसी के साथ जो हमारा चक्रव्यूह का आज का सेगमेंट था वो समाप्त होता है। इसी के साथ साथ हमारा आज का जो प्रोग्राम है उससे भी हम आपसे अनुमति लेते हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने प्यारे प्यारे पत्रों के माध्यम से। हमारा पता है वाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली, हमारा पिन कोड नंबर है 243001। और अब दीजिए अपने दोस्त आबिदा को इजाजत इस उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में आप सब साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आप सबको आपके अपने भैया कृष्णवीर सिंह
1: और कन्हैया की ओर से
0: राम राम।
1: देखो कृष्णवीर भैया, हम अपने श्रोतन के बीच में उनको मनपसंद कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आज जो है ना, एक विशेष दिन है।
0: विशेष दिन तो हर रोज होता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात हम अपने साथियों तक पहुंचाते हैं, कौ न कौ विषय को लेकर के। तो आज भी आपने कही है कि विशेष है, तो बताओ का विशेष है।
1: देखो भैया, आज है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस और साथ ही कृषि दिवस भी है, उससे जुड़ो हो।
0: अच्छा।
1: क्योंकि फल हमारे कृषक साथी जो है ना, अपने खेतन में ही तो उगाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है कि वन महोत्सव की शुरुआत भी हो रही है।
1: हाँ भैया, बरसात शुरू हो चुकी है और पेड़ पौधा हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। जिनने पहले गड्ढा खोद कर रखे हैं, वे अब पौधा लगा करके अपने खेतन को और हमारे देश को हरियाली दे सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक चीज देखी आपने कि आज सुबह ही जब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो अच्छी खासी वर्षा हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। और जहाँ तक बात है पेड़ पौधा लगाने की, तो सब साथी भली भांति परिचित हैं कि जैसे ही चौमासे को महीना शुरू होंगे और हमारे किसान साथी और जो ग्रामीण साथी हैं, वो तरह तरह के पेड़ अपने खेतन के आसपास या फिर जहाँ भी खाली जगह है, उन्हें पशु बांधने की जरूरत है पेड़ लगाने की, तो वहाँ भी पेड़ लगा देते हैं।
1: बिल्कुल। और देखो कृष्णवीर भैया, वहीं अगर बात करें हम अपने गांव विकास की, तो आजकल बहुत छोटी छोटी कामकाज जो हैं, वे हमारे साथी करके अपने गांव को विकास कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए उसमें निपुणता हासिल करना बहुत जरूरी है।
0: अगर वे कहूँ से कोई काम न शुरू करने हैं, तो वह को प्रशिक्षण लेंगे या जानकारी इकट्ठी करेंगे पहले कहूँ से
1: जी।
0: तो जब काम में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही उन्हें सफलता मिलेगी।
1: और भैया राज ही ये है, अगर कोई काम को हमें सफलतापूर्वक करने हैं, उससे अच्छी आमदनी अर्जित करनी है, तो भैया बाकी कहना पौष्टिकता और सुंदरता और गुणवत्ता, इन चीज़ों को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखने होगा। और ध्यान हम कब रख सकते हैं, जब हम उसमें निपुण होंगे, सक्षम होंगे वह काम करने को, तभी।
0: अच्छा, बिल्कुल बात सही है। अब जब बताओ, जो बात आप कह रहे हैं कि फल दिवस
1: जी
0: मनाया जा रहा है, तो बाकी बारे में क्या कहना चाहोगे?
1: देखो भैया, फल दिवस के बारे में, आजकल बारिश को मौसम है, बहुत सारे फल हैं इस समय हमारे किसान साथियों के खेतन में या बागन में तैयार हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इस वर्ष की, तो भैया जो फल दिवस जो है, विशेष रूप से एक बात से और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आम की, अमरूद की, नाशपाती की, बहुत सारे फल ऐसे हैं, लेकिन वहीं पर एक खजूर जो है, बाकेले विशेष महत्व दो है।
0: बात सही है। और हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो खजूर के पेड़ खड़े देखे जाते हैं
1: जी,
0: है ना। और हम तो जब कई बार ट्रेन से आते तो देखते हैं कि लाइन के किनारे किनारे खजूर के पेड़ खड़े हुए हैं,
1: और भैया
0: खजूरियाँ आप पकड़ने लगी,
1: पीली पीली पड़ रही हैं, लाल पड़ रही हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं।
0: बिल्कुल। और इस बार को जो आदर्श वाक्य है फल दिवस को, वजह है पौधे लगाएं, सीखें और जश्न मनाएं
1: जी।
0: दुनिया भर के सभी लोग इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। कैसे मतलब, जो है कि भाई आप अच्छे अच्छे फलदार पेड़ लगाएं और मतलब अच्छे अपने जीवन जिए, है ना
1: जी।
0: और तो जो भी बहुत सी बातें हैं फल दिवस के संबंध में साथियों, अब कन्हैया भैया एक क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता आप करके लाए हो आज।
1: भैया क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता, आज देख रहे हैं आप बारिश बहुत हुई, और भाई बारिश में हमें एक कृषक साथी मिल गए घूमते हुए।
0: अच्छा।
1: अपने खेत पर से काम काज करके आ रहे हैं, तो उनसे कुछ बातें आज हमने करी हैं, तो वे अपने श्रोतन को सुनवा दें।
0: बिल्कुल भैया।

0: आपको नाम कहाँ है?
1: मुकेश,
0: किस गांव में रहते हैं मुकेश जी?
1: राजपुर कला गौटिया,
0: ये किस ब्लॉक का गांव है?
1: मजगमा।
0: मुकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की?
1: हमने हाई स्कूल तक पढ़ाई करी।
0: स्कूल आगे क्यों नहीं पढ़े?
1: आगे के लिए काम धंधे में लग गए, घर पर कोई काम करने वाला नहीं था।
0: अच्छा, तो फिर जो है घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई।
1: हाँ, पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर आई।
0: आज के दौर में पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है, तो आज आप चूंकि हाई स्कूल करके अपनी काम से लग गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आज आपको क्या लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो क्या कर सकते थे, या आपने कम पढ़ाई की तो कोई समस्या नहीं आती है?
1: समस्या कुछ नहीं आती है, अब तो पढ़ाई लिखाई को जवान हुआ। जा टाइम हम पढ़े,
0: हाँ,
1: उस टाइम हमने इतनी गौर नहीं करी।
0: अच्छा,
1: हाँ, और फिर पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी
0: घर की।
1: घर की
0: जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई, आप कह रहे हैं काम से लग गए, तो हम अपने सुनने वालों के लिए जान लेते हैं कि आप किस काम से लग गए?
1: इसी काम से लग गए, जैसे खेती है और घर पे भी काम है
0: जी,
1: भैंसों भैंसों का खेती का काम है।
0: हम आपसे जानना चाहेंगे, खेती की बात जहाँ आपने की है, तो इस समय मौसम जो है करवट ले रहा है, और खेती बाड़ी के कामकाज जो हैं अब मौसम को देखते हुए बड़े हैं या घटे हैं?
1: बड़े हैं।
0: अच्छा, तो अब बारिश हो गई है, तो क्या क्या कामकाज बढ़ गए हैं?
1: अब तो ये कामकाज बढ़ गए। अब क्या है, जमीन को जोतो, उसमें कंधार करो और धान लगवाओ।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो धान की तैयारी चल रही है?
1: धान की तैयारी चल रही है, 2-4 दिन में हम लग्गा लगवाएंगे। कुछ लोगों के गांव में गड़ रहे हैं।
0: अच्छा, तो जो धान की बात आपने की है, तो बहुत सारे श्रोता हमारी आपकी बातचीत को सुन रहे हैं, तो वो भी इस समय अपनी खेती बाड़ी में धान है और फसलें जो हैं वो लगाएंगे। खासकर इस समय खरीफ में ज़्यादातर जो है धान की फसल इस समय रोपाई आपने कहा शुरू हो चुकी है, तो रोपाई पे आपसे बात करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे रोपाई में?
1: जैसे हमने खेत में खाद डाल दिया है, देसी घूर।
0: अच्छा,
1: हाँ, जैसे जोत कर,
0: हाँ,
1: और फिर उसमें क्यारी फ्यारी डालेंगे।
0: हाँ,
1: उसके बाद कदर उधर कर लगाएंगे उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ, फिर उसके बाद धान लगा देंगे उसमें।
0: ठीक, आपने कहा था कि देसी गोबर की खाद डालने से क्या होता है?
1: देसी गोबर की खाद डालने से होता है फसल दम अच्छी देती है।
0: अच्छा,
1: उसमें जाए एक बार के लिए आप ये यूरिया है अपनी कम लगा दो, तब भी फसल बढ़िया होगी देसी खाद से।
0: अच्छा, पैदावार अच्छी मिलती है?
1: पैदावार अच्छी मिलेगी उस।
0: अच्छा, ये जो धान की बताया कि आपने रोपाई करेंगे तो क्यारी डालेंगे, फिर अच्छी से मेड़बंदी करेंगे। अच्छा, कंधैल कितना पानी करके लगाते हैं आप?
1: कंधैल इतना पानी लगाते हैं जैसे कुछ जमीन उसमें दिखाती रहे।
0: अच्छा,
1: हाँ, जैसे ज़्यादा पानी हो जाता है तो उतना बढ़िया नहीं लगता है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ कम पानी होता है तो बढ़िया लगता है कंधैल।
0: मतलब हल्के पानी में लगाएंगे तो कंधैल अच्छा लगेगा?
1: अच्छा होगा।
0: धान की रोपाई करते समय लगभग कितना पानी खेत में समान रूप से होना चाहिए तब धान की जो है गड़ाई कराएं?
1: 4 से 5 इंच तक पानी उसमें भरा रहे।
0: अच्छा,
1: हाँ, और जैसे 4-5 दिन बाद, जैसे ये दवाई अपनी है, जैसे कोई घास की है वो है, उसे बखेरने के बाद फिर उसमें 4-5 दिन उसे पानी को काट दिया जाए।
0: अच्छा, अगर ज़्यादा दिन तक पानी भरा रहेगा खेत में तो कोई नुकसान हो सकता है? जब धान की रोपाई करें और लंबे समय तक पानी भरा रहने दें रोपाई करते समय, तो कोई नुकसान हो सकता है?
1: हाँ, हो सकता है। जैसे हम ज़्यादा दिन उसमें पानी भरा रहने देंगे खेत में, तो हमने ये पौध लगाई है, ये पौध गलने की संभावना रहेगी।
0: अच्छा,
1: हाँ, जैसे मौसम खुल गया, गर्मी पड़ने लगी, घाम पड़ने लगी
0: जी,
1: जैसे बादल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे बादल नहीं है, घाम है, गर्मी पड़ रही है, तो पौध गलने की संभावना रहेगी उसकी।
0: अच्छा, और अगर ऐसे मौसम में जो अभी बादल भी लगातार छाए हुए हैं, मौसम ठंडा बना है, तो ऐसे मौसम में अगर रोपाई की जाए तो कैसी रहती है?
1: ऐसी बढ़िया रहती है, ये तो बहुत बढ़िया मौसम है। जैसे हमने दूसरे खेत से पौध लाकर उसमें रखी, तो बहुत जल्दी पौध लगेगी खेत में।
0: अच्छा,
1: हाँ, इससे बढ़िया पौध लगती है और बढ़िया करके धान अपना लग के फिट होता है
0: ऐसे मौसम में
1: ठंडे मौसम में
0: जी। ये जो मौसम की बात आपसे करी ली है, तो ये जो सुहावना मौसम बना है, ये किसान साथियों के लिए कितना लाभदायक है?
1: ये तो

0: खूब ही लाभदायक है ये तो।
1: अच्छा, ऐसे मौसम में सब काम काज होते रहेंगे।
0: खूब बढ़िया काम होंगे इसमें, तड़ी में।
1: जी, अभी आपने कहा था कि 2 4 दिन में धान हम लगा देंगे, तो आपसे ये भी जान लेते हैं कि आप जब धान की रोपाई करेंगे, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी जब रोपाई करेंगे तो वो कितनी रखते हैं आप?
0: लगभग एक बिलांत की दूरी से रखते हैं पौधे
1: अच्छा,
0: के लिए, तो अच्छा होता है उसमें।
1: क्या अच्छा होता है?
0: उसमें जाए ये पौधा चेंगा भी अच्छा लेता है।
1: जी,
0: हाँ, वैसे खरपतवार हो जाए तो नराई में उसमें आराम रहता है। हाँ,
1: अच्छा
0: और फिर पौधा को हवा भी बढ़िया मिलती है उसके अंदर।
1: जी, बारिश के समय में आपसे हमारी बात हुई, तो ये जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आप आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं अभी?
0: ये देसी खाद ले गए इसमें भर के, वो मिलाया खेत में जाके,
1: जी,
0: उसी से अपने डंगरों के लिए कबार लेके आए, काट के चरी
1: पशुओं के लिए,
0: पशुओं के लिए।
1: तो हरे चारे में इस समय चरी खिला रहे हैं।
0: जी
1: आपने बताया था कि आप पशुपालन भी करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं, तो बहुत सारे कृषक साथी हैं जो कि खेती बाड़ी तो कर रहे हैं लेकिन पशुपालन उन्होंने कम कर दिया, क्या कहेंगे?
0: जैसे खेती तो बिगर पशु के अधूरी है।
1: अच्छा,
0: तो खेती करेंगे तो पशु के लिए खिलाएंगे, और पशु से हमें दूध गोबर हमें मिलता है, उससे
1: जी,
0: गोबर के लिए अपने खेत में लगाएंगे जाके, उससे हमारी फसल बढ़िया होगी।
1: अच्छा, तो पशुओं के साथ खेती बाड़ी बड़ी आसानी से की जा सकती है।
0: जी
1: अभी बरसात का मौसम है, खास करके जो हमारे पशु हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां इस समय आती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप इस बरसात के मौसम में किस तरीके से अपने पशुओं की देखभाल करते हैं?
0: अपने पशुओं की ऐसे देखभाल करते हैं, जैसे चरी है, चरी में थोड़ा भूसा मिलाया उसमें, उन्हें उसे खिलाते हैं। और जैसे बीमारियां हैं, मुंह पका है, पैर पके हैं, जैसे ये बीमारियां ये बरसात के मौसम में आती
1: जी,
0: हैं।
1: तो इसके बचाव के लिए क्या किया आपने?
0: इसके लिए तो हमने जो 1 महीना पहले टीका लगे वो लगवाए थे सारे जानवरों के लिए।
1: अच्छा, तो इन टीकों से सुरक्षा हो जाती है?
0: जी
1: ये जो बरसात के मौसम में बीमारियां हैं उनसे आप निश्चिंत हैं
0: जी
1: क्योंकि आपने टीकाकरण करा लिया है,
0: जी
1: तो अब जो पशु हैं आपके बरसात के मौसम में जहाँ बनते हैं वहाँ सर्दी भी होती है, और कुछ हमारे किसान साथी हैं जो कि अपने पशुओं को बरसात के मौसम में खुले में रखते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे चूँकि आप एक पशुपालक भी हैं, तो बरसात के मौसम में कितने समय तक या कितनी देर तक अपने पशुओं को रखना चाहिए और कितने समय तक नहीं रखना चाहिए?
0: जैसे बारिश हो रही है तो खबाए रहे उनके लिए, खबाए पे आ गए फिर उसके बाद अंदर बांध देते हैं उनके लिए।
1: जी
0: हाँ, जैसे चौमासे का महीना है, अब तो बारिश होती रहेगी,
1: जी जी
0: तो अगर उन्हें हर समय बाहर थ्रू रखेंगे उनके लिए।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: तो
0: अंदर भी करते हैं।
1: जी, तो आपके कहने का मतलब है कि उनको खिला पिला करके अंदर बांध देना चाहिए।
0: जी
1: जो पशुशालाएं हैं उनमें भी अक्सर नमी आ जाती है, पानी भर जाता है, तो उनकी देखभाल के लिए क्या करना चाहिए?
0: जैसे पशुओं की तो छाया के लिए, जैसे ऊपर से छाया होती है उसमें थोड़ी बहुत नमी रहती है, तो उसमें कीड़ों फीड़ों की धुंधले की ये दवाई डाल देते हैं।
1: अच्छा, मुकेश जी, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस और वन महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, हम आपसे इस बरसात के मौसम में जानना चाहेंगे जो आज अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस के मौके पर आप क्या कहेंगे?
0: जैसे आम है, अमरूद है, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस पर
1: जी
0: हम सब लोगों से यही कहेंगे, जैसे ये आम है,
1: जी
0: अमरूद है, नाशपाती है, ये फल हैं, इसने कटे फटे हुए नहीं खाना चाहिए।
1: जी
0: और इस समय बरसात के मौसम में खजूर भी मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: अब की मैं एक बात कहनो और चाहूँगो,
1: हाँ
0: जैसे खजूर के लिए
1: जी,
0: सरकार ने कुछ और घोषित करो है।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: बहुत अच्छी जानकारी है आपको। तो यहाँ पर अब हम वन महोत्सव सप्ताह, मुकेश जी, शुरू होगा, तो वन महोत्सव सप्ताह प्रारंभ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: जैसे बरसात शुरू भई तभी हम पेड़ लगाने की, अपने पौधों लगाने की शुरुआत करते हैं।
1: जी,
0: जैसे पेड़ लगान की सीजन में बरसात की जहाँ में

0: जैसे पेड़ लगाने से हमारे लिए कई लाभ मिलते हैं।
1: कौन कौन से?
0: जैसे लकड़ी मिले हमारे लिए
1: जी,
0: और उसकी छाई मिले और फिर उससे हमें ऑक्सीजन मिले,
1: जी
0: तो उससे हमें काफ़ी फायदा होते हैं।
1: जी
0: हम तो यही कहेंगे हर व्यक्ति को पेड़ ज़्यादा ही से ज़्यादा लगाने में फायदा है।
1: जी ये जो बरसात का मौसम है आपने बताया कृषक साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वहीं पर पशुओं के संबंध में आपसे बात हुई कि किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, क्या चीज़ खिलानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन चलते चलते अपने कृषक साथियों के लिए, चूँकि आप इतनी मेहनत और लगन के साथ खेती से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, तो संदेश के रूप में हमारे जो कृषक साथी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: वैसे बरसात तो हुई रही है, जो हमारे भैया लोग हैं वे अपनी पौध उनकी तैयार है, वो अपने धान फान गाड़ें।
1: अच्छा।
0: हाँ, और पशु के लिए चारा खिलाएं और उनको दुएं और दूध पिए, अच्छे से उनकी देखभाल करें और बढ़िया उनको खिलाएं। और जैसे बरसात हो रही है तो कुछ अंदर के लिए बांध दें, जैसे ज़्यादा बरसात हो रही है
1: जी
0: तो उसके लिए क्या कहते हैं अंदर के लिए बांध दें। वैसे थोड़ी बोड़ी तो बरसात होती है तो कोई बात नहीं, उन्हें बाहर बंधे रहेंगे।
1: जी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया मुकेश जी, हमारी और आपकी बात हुई, आपने अपने जो खेतीबाड़ी संबंधी पशुपालन संबंधी अनुभव थे वो हमारे और हमारे श्रोताओं के बीच में रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णवीर भैया देखो अब जो हमने बातचीत करी ही उन्हें कितनी बढ़िया तरीका से बताओ हो कि धान की रोपाई कैसे करनी है, कितने समय पर, कितनी दूरी पर और कितना पानी रखनी है।
2: बात सही है, और इन सब बातों को ध्यान हमारे किसान साथी जब रखते हैं तभी वो फसल अच्छी होती है उनकी।
1: जी और साथ ही देखो हमारे आज कृषि दिवस हुआ और कृषि दिवस पे तो खासकर हमें जो खेतीबाड़ी संबंधी जानकारी जैसे मिले वह भैया जुटानी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। अच्छा बातचीत तो अपनी जारी रखेंगे, लेकिन जब कार्यक्रम को सारी सुनते जाके सोचते हैं कि बातचीत बहुत लंबी कर देते हैं ये लोग और कुछ सुनवा ना रहे हैं।
1: अच्छा आपको मन जो है अब गौने ही बजने ही कह रहा हूँ, तो देखो हमारे जो साथी हैं रेडियो सेट के पास अब बैठे हुए हैं, अपनों कार्यक्रम बड़ी मेहनत और लगन के साथ में सुन रहे हैं, लेकिन उनने कुछ सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से कुछ हमारे जो साथी हैं भी अपने नाम लिख करके भेजा था, का कुछ नाम आज मिले हैं?
2: बिल्कुल मिले हैं। सबसे पहले हमारे एक श्रोता हैं, इनको संदेश हमारे सामने है, कोहका विधायक छत्तीसगढ़ हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल
1: जी,
2: धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल,
1: और आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्मी, मोहिनी, ऋतिक, तनवीर, बलवीर और तनवीर सिंह।
2: आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही मेहरा जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और आप हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी और नबीद हसन अब्बासी। एक कमेंट आप पढ़ो भैया कहां से हो?
1: जी हैं भैया हमारे नियमित श्रोता हैं ग्राम्बा पोस्ट ललुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम, शिखा, ऋचा, गुड़िया और सुरभि यादव और इनके समस्त परिवारीगण।
2: हाँ आप लिख रहे हैं आप दोनों भैया जी को सादर नमस्ते, तो इनको भी
1: जी
2: सादर नमस्ते। और एक और श्रोता है जमुना प्रसाद मौर्य, किरण, दृष्टि और मानवी मौर्य, कट्टा चांद खां, पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य जी भी जुड़े हैं यहीं से, साथ में हैं सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। तो एक लोकगीत बहुत अच्छा निकाल के लाए भैया आज।
1: बिल्कुल तो पहुंचा दे उनके बीच में।
2: बिल्कुल

0: साथियों भैया आपने सुनो जो मधुर लोकगीत। कन्हैया भैया कैसे लगो जब बताओ आपको।
1: भैया लोकगीत बढ़िया लगो, लेकिन आवाज किसकी है?
0: आवाज ही बबीता शर्मा की।
1: और जहाँ हमने इसलिए पूछी कि हमारे जो श्रोता है ना वे इच्छुक रहते हैं जानन के। लेकिन भैया एक बात कहना चाहूंगा, जब ठंड के मौसम में अगर मनोरंजन भरपूर हो जाए तो पूरी थकान उतर जाएगी
0: ठंड के मौसम में,
1: क्योंकि बरसात चल रही है ना। बरसात हो गई थोड़ी बहुत, तो अब ठंड बन चुकी है, तो जो मौसम परिवर्तन वो ठंड बनी है, बाकी हिसाब से अगर मनोरंजन भरपूर हो जाए तो फिर आनंद ही अलग।
0: बिल्कुल, तो आनंद तो आओ ही है। और एक पत्र हमारे एक श्रोता साथी हैं उनको मिलू है। आप हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कटहरिया, ग्राम दूनी नगर से, साथ में हैं परिवार के सभी लोग। तो भैया एक बार बताओ
1: जी,
0: बातचीत तो भाई और लोग भी सुनवाओ एक अच्छो सो। आज

0: मारो मन जो है कि एक लोग की दुआ सुनवाओ।
1: अब तुम्हारो मन है भैया, तो उम्मीद हम जा करते हैं कि हमारे श्रोतन ने जब आपकी आवाज़ सुनी होगी तो भैया खुश हो गए होंगे, क्योंकि आज भरपूर गौने बजनी उन्हें सुनने को मिल रही है।
0: तो लोकगीत तो हमने सुनवाओ बबीता शर्मा की आवाज में, अब आप का निकाल के लाए जा बताओ।
1: अच्छा, तो अब आप हमारे पिटारे से सुनवाओ। हाँ। तो भैया ओम प्रकाश और साथियों की आवाज में हम उनके बीच में जो लोकगीत पहुंचा रहे हैं और बहुत सारे हमारे श्रोतन की पसंद रहते हैं।
0: तो कौन करवा रहे हो
1: जी?

डलई डलवल मैं डार भवरिया और बलमान सुदारी बिसुराय और पिंगुल गढ़ के बीच में मारू और कैसे बलमा को चिठिया।

0: साथियों, अभी आपने सुनो जो मधुर लोक गीत ओम प्रकाश भैया व उनके साथी इनके स्वर में और कन्हैया भैया। अब कार्यक्रम ग्राम जगत में है एक रेडियो कृषि पाठशाला, तो जो खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला है उसके प्रायोजक हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली।
1: और भैया जो आपको विषय है ऊष्मीय तनाव को कम करने हेतु।

0: कम लागत वाले आवासीय संशोधन। और इसके वार्ताकार हैं डॉक्टर मुकेश सिंह, कृषक रवि कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया रविंद्र कुमार।
1: कृषि पाठशाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान साथियों को राम राम। और आज की कृषि पाठशाला का विषय है ऊष्मीय तनाव को कम करने हेतु कम लागत वाले आवासीय संशोधन। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश सिंह जी को, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं IBRI इज्जत नगर बरेली से। और हमारे साथ आज एक किसान भाई हैं जो कि धौरा टांडा से हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, श्री रवि कुमार जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। नमस्कार साथियों।
1: कृषि पाठशाला की शुरुआत करते हैं और हमारे जो किसान भाई हैं वो कुछ सवाल लेकर आज इस कृषि पाठशाला में उपस्थित हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई डॉक्टर साहब से अपना सवाल करें।
3: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरा पहला सवाल है कि गर्मी के मौसम में पशुओं को जो तापमान होता है, जो बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, उससे बचाने के लिए किस तरह का सेट या व्यवस्था रखें उनके आवास की?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हम सब लोगों को गर्मी लगती है, पशुओं को भी इसी प्रकार से गर्मी लगती है। और जो हमारे उत्पादक पशु हैं, जिनसे हम दूध ले रहे हैं या जिनको हम मांस के लिए पाल रहे हैं, तो उनको अपने शरीर के तापमान को बैलेंस करने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और अगर हम उनको बाहर से ठंडा रखने का कोई अगर इंतजाम नहीं करते हैं, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जो अपनी ऊर्जा लगाते हैं, जो ऊर्जा उनके प्रोडक्शन में लगनी चाहिए थी, इसीलिए आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में अगर हमने ठीक से व्यवस्था नहीं की तो उनका उत्पादन घट जाता है, चाहे वो दूध का उत्पादन हो या मांस का उत्पादन हो या उनकी ग्रोथ हो। तो इसलिए हमें अलग से पशुशाला के टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पशु अगर धूप में बंधा हो तो कम से कम छाए में ही उसको बांध लें। दूसरा एक ये है कि हम उसको शीतल पानी पिलाएं। क्या होता है कि पशु बंधा हुआ है और अगर खुला है तो जो पानी भरा हुआ है, चाहे वो गर्म हो गया हो कुछ हो, तो थोड़ा सा वो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी लेता है, मगर पेट भर के पानी नहीं पीता जितना कि जो उसकी आंतरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं, उसके लिए उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी दो प्रकार से पशुओं को जरूरत है, एक तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, दूसरा जो उसने खाया पिया है उसको पाचन करने के लिए। तो एक मुख्य ये है कि हमको उसको छाए में पहले बांधना चाहिए, चाहे वो पेड़ के नीचे बांधे या पशुशाला के नीचे बांधे। दूसरा, ठंडा पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके साथ साथ तमाम तरह के जो हैं प्रयोग किए गए हैं, पशुओं की छतों पे मॉडिफिकेशन किया गया है। कई बार हम पशुओं की छतों पर पेंट कर देते हैं, आजकल एंटी रिफ्लेक्टिव पेंट आ रहे हैं। अगर जो पशुशाला की छत आपकी सीमेंट की चादर की बनी है या टीन की बनी है, तो उसके बाहरी ऊपरी सतह पे हम अगर पेंट कर दें तो जो सूर्य से गर्मी आ रही है वो परावर्तित हो जाती है और सेट के अंदर का टेम्परेचर कम होता है।
1: जी रवि कुमार जी, और भी सवाल आपके पास है तो अगला सवाल आप कीजिए डॉक्टर साहब से।
3: जी डॉक्टर साहब, गर्मियों में पशुओं के लिए जैसे छायादार पेड़ उसमें तापमान को कम करने के लिए उपयोगी है?
2: बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। अब देखिए, पूर्व में भी जो पशु हैं वो तो बाहर ही रहते थे, और अगर हम शेड में भी पशु रह रहे हैं तो उसके आसपास अगर हमने पेड़ लगा दिया तो जो ये प्राकृतिक वातावरण शीतलता है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये दो काम करता है, एक तो वातावरण को शीतल रखता है और वायु को भी शुद्ध रखता है। क्या होता है कि गर्मी के टाइम में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के पशु आप देखिए थोड़ा हांफने लगता है, तो उसको जो है शुद्ध वायु की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर हम शुरू में नहीं हो, मगर अगर हम वृक्षारोपण कर देते हैं पशुशाला के आसपास या जहां पशु हम बांध रहे हैं दिन में, तो उसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और पशु स्वास्थ्य पर और गर्मी को ताप के कम करने के लिए दोनों में ही जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर आप देखें तो डे आवर हमारा बढ़ जाता है, सुबह 7 बजे ही रोशनी हो जाती है और शाम के 7 बजे तक, तो हम हर टाइम हम पशु को पशु के शेड में नहीं बांध सकते, तो अगर आसपास वृक्ष लगा हुआ है तो पशु घूम फिर के उसके नीचे भी आ जाता है।
3: गांव देहात में क्या होता है, पशुओं को चराने की व्यवस्था होती है, लोग घुमाने भी ले जाते हैं, तो मैं चाहूंगा किस समय ले जाएं ताकि पशुओं को ज्यादा नुकसान ना हो या दूध को नुकसान ना हो या किसान को नुकसान ना हो।
2: ये भी है और लोग अपनाते भी हैं कि ये कोशिश करें कि जब बहुत ज्यादा धूप हो तो हम पशुओं को बाहर घुमाने के लिए न ले जाएं, या तो मॉर्निंग आवर में जब सूरज की ताप कम हो तब ले जाएं, या शाम के समय जब ताप हो कम हो जाए तब ले जाएं, और उसी समय वो खाएगा भी। क्या होता है कि जब दिन में बहुत ज्यादा ताप होता है तो पशु खाना भी नहीं चाहता, क्योंकि पचाने और खाने में उसकी शरीर की ऊर्जा लगती है जो उसको शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इसलिए वैसे भी कहा गया है गर्मी के टाइम में हम दाना या चारा या तो सुबह के पहर में दें या शाम को जब मौसम

0: ठंडा हो जाए तब दें, तो तब वो अपने जितना जरूरत होती है पेट भर के खाना खा लेगा, नहीं तो वो उतना ही खाना खाएगा जितना उसको लग रहा है कि भाई कुछ खा लें, जो मगर जितना उसको खाना चाहिए अपनी उत्पादकता को बरकरार करने के लिए वो उतना नहीं चाहता। तो इसलिए जब भी हम उनको घुमाने टहलाने ले जाएं, कोशिश ये करें कि भीषण गर्मी ना रहे, खासतौर से 11 से 3 के बीच में जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है उस समय पशु को बाहर न ले जाएं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरा और है जो मैं करना चाहूंगा
0: जी,
1: कि पशुओं के बाड़े जो होते हैं हम जो, वो किस दिशा की तरफ रखे जाए, धूप ज्यादा ना आए, मतलब किस तरह के सेट बनाए?
0: मुख्य तौर पे जो हम ये
1: दिशा क्या
0: कहा गया है कि जो पशुओं के बाड़ा है वो पूर्व पश्चिम दिशा में होना चाहिए, जो लंबवत उसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व पश्चिम दिशा में हो, जिससे कि जब सूरज उगे पूरब से और पश्चिम में जब वो अस्त हो तो शेड के एक तरफ तो आपके धूप रहे, दूसरी तरफ आपके छाया रहे। अगर हम पूरा पश्चिम नहीं कर सकते हैं तो जितना भरसक प्रयत्न हो हमको पूरा पश्चिम दिशा रखना चाहिए। उत्तर दक्षिण अगर हम कर देंगे तो सुबह भी धूप रहेगी आप पशुशाला में और शाम को भी धूप रहेगी, तो गर्मी का प्रचंड प्रभाव पशुशाला पे पड़ता है जो अल्टीमेटली जानवरों पे पड़ेगा। तो कोशिश करना कि जितना भी हो हम पशुशाला की जो दिशा है वो पूरा पश्चिम में रखें, जिससे कि हमें दोनों समय में, गर्मियों में हमें एक तरफ छाया मिलेगी और जाड़ों में वही हमें वो जो धूप तब आवश्यक रहती है तो वो रहेगा। और हवा का डायरेक्शन जैसे आपने बताया, हवा भी हमारा या तो पछुआ चलती है या पूर्वी चलती है, तो उससे क्या है कि जो गर्म हवा है वो पशुशाला से निकल जाएगी अगर हमने उसमें खिड़कियां और रोशनदान की अच्छी व्यवस्था की है पशुशाला में, और ठंडी हवा जो है नीचे से अंदर आ जाएगी, तो इससे पशुशाला भी ठंडा रहेगा और पशुओं को भी शीतलता प्रदान होगी।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे, मैं जानना चाहूंगा पशुओं को गर्मी लगी है नहीं लगी है, ताप में है नहीं है, उसके कुछ ऐसे लक्षण जैसे चारा कम खाना या कमजोर होना उसका या दूध में कोई, ये कुछ
0: नहीं, वो कई उसके लक्षण हैं जिससे आपको पता लग जाता है कि पशु को गर्मी लग चुकी है। कुछ लक्षण तो गंभीर हैं जिनमें पशु हांफने लगेगा, बिल्कुल आपको लगेगा कि हिल रहा है और मुंह से उसके झाग भी निकल रहा है अगर अत्यधिक गर्मी काफी दिन तक हमने उसको ध्यान नहीं दिया। चारा तो लाजमी गर्मी होते ही पशु छोड़ देता है, कम से कम खाता, क्योंकि चारा को पचाने में गर्मी, जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है, तो पशु हमेशा ठंडे टाइम में या तो सुबह अगर अवेलेबल तो चारा खाएगा या शाम को चारा खाएगा। कोशिश ये करनी चाहिए चारा हरा होना चाहिए, जितना हरा चारा होगा उतना पशु को पचाने में भी आसानी रहेगी और जो शारीरिक गर्मी है उतनी उसको नहीं करनी पड़ेगी। और अधिक पानी पीना चाहेगा पशु, अगर गर्मी लगती है तो पानी भी पीना चाहता है तो उससे भी उसका पेट भर जाता है तो खाना कम खाता है। तो हमें अगर पानी ठंडा रहेगा तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए जो उसकी नांद है पानी पीने वाली नांद वो भी छाए में हो या उसके ऊपर सेट हो, ताकि जो पानी पीने का एक तो शुद्ध होना चाहिए, आजकल मतलब लोग वाई ना हो कि उससे और किसी और तरह की बीमारियां पेट के कीड़े वगैरह ना हो जाए, और ठंडा पानी हम पिलाएं 2-3 बार हम उसको ऑफर करें कि ताकि वो पानी खूब पी ले। दूसरा जैसा बताया कि खाना छोड़ देता है, हांफता है, दूध भी कम कर देता है और बेचैन सा रहता है, कभी यहां खड़ा होगा कभी वहां खड़ा होगा, तो एक ये कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि पशु को गर्मी लग रही है।
2: रवि कुमार जी, आपका एक प्रश्न है और मैं डॉक्टर साहब से कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, बात ये है कि जो कम लागत के आवासीय प्रबंधन है
0: जी
2: वे क्या हैं और कैसे उन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है?
0: बहुत सुंदर सवाल है और मुख्य टॉपिक हमारा यही कम लागत के आवासीय प्रबंधन पे है। आवासीय प्रबंधन एक्चुअली हम लोग जब करते हैं तो, क्योंकि वैज्ञानिक पशुपालन में क्या है कि हम पशुओं को ऐसी विधि से पालन करते हैं ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए, पशुओं का जो उत्पादन न प्रभावित हो, चाहे वो दुग्ध के लिए हो या मांस के लिए हो, चाहे बड़ा जानवर हो गाय भैंस हो या बकरी और भेड़ हो, इवन मुर्गी भी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कई प्रयोग हम लोगों ने IVRI में किए कि अगर छत पे, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम रिफ्लेक्टिव पेंट लगा दें और अगर टीन की छत है तो उससे काफी फायदा होता है, अंदर के टेम्परेचर कम होता है। दूसरा एक प्रयोग हमने किया कि सीट के नीचे, जो आपकी छत है उसके नीचे अगर हम छप्पर 4 इंच का छप्पर लगा देते हैं तो उससे भी 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर छत का कम रहता है, क्योंकि अगर छत गर्म भी हो गई टीन की या सीमेंट की तो वो छप्पर जो है इंसुलेशन का काम करता है तो वो सीधी गर्मी नीचे नहीं आती है। तो वो ये प्रयोग द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि नीचे गर्मी नहीं आती तो हम, और छप्पर की उम्र भी बढ़ जाती है क्योंकि छप्पर भींगता नहीं है और वो आपको 5 से 6 साल तक एक बार बस छत के नीचे छप्पर लगा देना है 4 इंच का, उससे काम हो जाता है। एक उसके अलावा एक अगर आप देखें आजकल टेंट वाले एक 1.5 इंच का गद्दा देते हैं थर्मोकोल टाइप का, हाँ उसका भी प्रयोग किया गया, वो सस्ता भी है और लाइट भी है, उसको भी वो 4x6 या 6x3 के आते हैं टुकड़े, उनको हमने लगा के देखा तो उसमें उसका असर और ये छप्पर का असर ऑलमोस्ट बराबर था, एक से 2 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल 2 बजे के टाइम में हमने नोट किया। और एक हमारा प्रयोग था जिसमें करीब हमारा आधा किलो दूध जो है उन कंट्रोल से जो जिनको हमने सीधे टीन में रखा था या जिनको हमने छप्पर के नीचे

0: लगाया था या ये हम थर्मोकोल की सीट लगाई थी उनमें हमको थोड़ा बढ़ा हुआ मिला। तो एक ये प्रयोग है और कम लागत का है, कुछ नहीं, आपको जो ऑलरेडी आपका छत है उसी के नीचे इसको लगा देना है, और बस ये छप्पर जब लगाएं तो ध्यान देना है उसमें आग वाग लगने का थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, बीड़ी वगैरह वहां पे ना पिए। और दूसरा ये है कि ये जो अपनी एग्रो नेट है ना, ये जो ग्रीन वाली आपने देखा होगा जो आती है, उसको भी हम उन इलाकों में जहां से धूप आ रही है वहां पे हम उसको लगा दें, तो वो क्या है उसमें छेद होता है तो हवा का आवागमन भी रहता है और आपको धूप नहीं आएगी, तो उससे भी हम धूप को रोकते हैं या तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम मान लीजिए बंद है हमारा पशुशाला तो खिड़कियां ओपन रखें, साफ सफाई कर दें और उसके अगर ऊपर रोशनदान बना दें। अक्सर क्या हुआ है आजकल, अब रोशनदान की प्रथा खत्म हो गई। रोशनदान बहुत आवश्यक है प्राकृतिक कूलिंग करने के लिए, ठंडी हवा नीचे जाती है, अगर ऊपर गर्म हवा निकल जाए तो वो ठंडी हवा पूरी जगह ले लेती है, अगर रोशनदान नहीं होता है तो वो गर्म हवा आपके ऊपर वहीं घूमती रहती है और वो शेड को जो है गर्म करती रहती है, और अगर एक छोटा सा रोशनदान हम बनाए तो उससे ऑटोमेटिक गर्म हवा निकल जाएगी और फिर जो वो निकली अंदर से नीचे ठंडी हवा आ जाती, तो इस एक ये चक्रीय तरीके से भी हमारा तापमान कम हो जाता है सेट का।
1: तो डॉक्टर साहब आपने बताया कम लागत के आवासीय प्रबंधन क्या है एवं कैसे प्रयोग में लाए, इसके अतिरिक्त और ऊष्मीय प्रभाव को संतुलित करने हेतु क्या प्रबंधन क्रियाएं हैं जिनको कर सकते हैं?
0: इसके अतिरिक्त एक तो ये आवासीय प्रबंधन था, दूसरा ये है कि इसके जैसे मान लीजिए जो सब अर्बन हमारे शहरी क्षेत्र की जो हमारे पालक जहाँ जगह कम होती है तो वहाँ हम आजकल बहुत अच्छी अच्छी तरह के स्प्रिंकलर आ गए हैं, फैन आ गए हैं और इन ये सब सोलर से आजकल चल रहे हैं, तो अगर आपने छत पे सोलर के पैनल लगाए और उसी एनर्जी से आपके वो फैन चलते रहते हैं तो उससे भी एग्जास्ट फैन आ गए हैं, तो अगर मान लीजिए कम जगह है आसपास खुला हुआ नहीं है तो वो गर्म हवा बाहर फेंक देगा और अंदर ठंडी हवा आ जाएगी। कुछ आजकल मिस्टर आ गए हैं छोटे छोटे जो पहले केवल ग्रीन हाउस में लगते थे मगर आजकल उनको पशुशाला में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक बहुत फाइन ड्रॉपलेट पानी की डालते हैं जिससे पानी की भी बचत होती है और वातावरण आपका जानवरों के ऊपर खासतौर तो भैंसों को तो बहुत अच्छा है, हमने अपने अपने यहाँ भी लगा रखा है, तो उससे वो कम पानी में आपका वातावरण जो है पशुशाला का ठंडा हो जाता है। इसमें बस एक हमें ध्यान सावधानी ये जरूरत है कि जो जहां भी हम पानी का प्रयोग करें ठंडा करने के लिए तो जो हमारी आर्द्रता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो ध्यान रखें वो नहीं बढ़नी चाहिए, अगर वो दोनों तरफ से बंद है कोई पशुशाला हवा का बाहर नहीं निकल रहा है तो वो एकदम अंदर बहुत ज्यादा आर्द्रता बढ़ जाती है तो जिससे पशुओं को फिर सांस लेने में दिक्कत आती है। तो जब भी हम मिस्टर का या इस तरह के स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करें तो एग्जास्ट जरूर चलाएं या कोई एयर सर्कुलेटर फैन चलाएं जिससे कि हवा जो है बाहर और अंदर का जो आर्द्रता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो बरकरार रहे। इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि पशुओं को थोड़ा घूमने के लिए भी बाहर जगह दें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया कि जो एक बाड़े में कितने पशु रखे जाएं, गर्मियों में हम उनको कम कर दें
1: जी।
0: सघनता है अगर वो कम कर दें तो आप आसपास से भी पशु जो है जो गर्म नहीं होंगे तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, अगर हम जहां छह बांध रहे हैं अगर हम चार बांधने लगे पांच बांधने लगे उससे भी पशुशाला की गर्मी जो है उनका तनाव कम हो जाता है। हरा चारा दें, मैंने पहले ही बताया, पानी की पूरी उपलब्धता रखें, भैंसों को तालाब में नहाना अच्छा लगता है तो उसको हम अगर बैलोइंग कहते हैं, अगर कोई ऐसा इंतजाम हो कि हम थोड़े देर के लिए उनको वहां छोड़ें तो उनसे भी उनका तापमान कम हो जाता है। खासतौर से छोटे बच्चों का और जो गर्भधारी जो हमारे पशु हैं उन उनमें भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो उनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो सम बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं हो।
1: डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कृषि पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो किसान भाई थे रवि कुमार जी उन्होंने भी अपने प्रश्न किए, अपने सवाल किए, जो उनके मन में सवाल थे विषय था ऊष्मीय तनाव को कम करने हेतु कम लागत वाले आवासीय संशोधन, इस विषय पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप दोनों लोग कृषि पाठशाला में उपस्थित हुए, आपका कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी का जो आप यहाँ पधारे और रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: श्रोताओ अभी आपने कार्यक्रम ग्राम जगत के इस खास सेगमेंट रेडियो कृषि पाठशाला के प्रायोजक थे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली और कृष्णवीर भैया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कृषक साथी इस कृषि पाठशाला के माध्यम से सारी बातें भली भांति जान गए होंगे और सामने दीवार में लगी घड़ी जो है वह इशारों कर रही कि भैया विदा लेने को समय आ चल हुआ है।
3: तो बिल्कुल साथियों अगले कार्यक्रम ग्राम जगत में फिर आपसे बातचीत करेंगे बहुत सारी और आपको मनोरंजन भी कराएंगे। बढ़िया तरह से मनोरंजन अच्छे अच्छे लोकगीतन से। तो अब आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से दो अनुमति हम दोनों जनों को हम दोनों

0: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे दोस्तों गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय होगा महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। बरेली का एसटीडी कोड है 0581। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना एक बार फिर सुन लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 3 जुलाई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है महिलाओं में पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। दोस्तों, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिएगा। विषय रहेगा महिलाओं की पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 2 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओं। अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन VV-Jeeramji अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov

0: covid.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BVGRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रूपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रूपए से कम थी वहाँ अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा एयर कनेक्ट

0: ड्यूटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:31 और 10 सेकंड हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

हेलो हाय नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आपके साथ आपके इस कार्यक्रम में जिसमें आप भेजते हैं बहुत ढेर सारे पत्र, अपने नाम पते के साथ अपनी पसंद का गीत भी लिखते हैं। हम अपने नए श्रोताओं को बताना चाहेंगे अगर वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। इस पते पर आप अपना नाम पते के साथ अपनी फरमाइश का गीत लिखकर भेजिए और फिर वेट कीजिए इस कार्यक्रम के समय का। फिलहाल जिन लोगों के पत्र हम तक पहुंच गए हैं उन्हें पढ़ने का सिलसिला जारी करते हैं, उनके अनुरोध पर गीत सुनवाने का सिलसिला भी शुरू करते हैं। दोस्तों ये पहला पत्र मेरे हाथ में है, ऊंची मस्जिद उस हैज से आया हुआ है। भेजने वाली है चांद मियां, आरती तवसुम बेगम, बेटा अशद मियां सत्तार, शाहजहां बेगम, अली बाबा, मर्जीना, डॉक्टर अलबख्श, गंज ढूंढवारा उत्तर प्रदेश से हैं, एम एच लल्ला, एन बी मिर्जा, मुनव्वर हुसैन, नसरीन बेगम, कैकशा बेगम, अनवार मियां, गुमनाम शाह, बेनाम शाह और मालूम शाह। श्रोताओं ये पत्र आया है आदर्श नगर मलौट पंजाब से। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा भेजने वाले हैं। दोस्तों ये पत्र हमारे पास आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। भेजने वाले टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से हैं, विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा और परिवार के सभी सदस्य, बरेली जंक्शन से हैं, गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, विक्की भारद्वाज, सोनू वीरेश सिंह चौहान, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, जमशेदपुर बड़ा बाम्बो सुपई साई से, देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं, अभिजीत गवहाणकर राही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं, श्रीमती वैशाली शैलेश गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर, कुमारी धवनी गवहाणकर परी बदलापुर मुंबई से हैं, सिद्धांत गवहाणकर और परिणीता गवहाणकर और साथ में है इनकी लाडली टुकटुक गवहाणकर। मालवा रेडियो श्रोता संघ परमिलागंज अलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं, बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल

पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और इनके साथ में है ऋषि वर्मा। ये पत्र आया है राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से भेजने वाले वीके जौहरी, विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पित और शायना जौहरी। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लावारिस से। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की, गीत अनजान का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत। दोस्तों, ये पत्र इस कार्यक्रम में आया है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली यूपी से। भेजने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना मनोरमा देवी, अजय, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से है, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। श्रोताओं, ये पत्र आया है कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से। भेजने वाले हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, आदिल अलवी, आहिल बाबू अलवी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे, उत्तम जमदांडे। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। जिला बदायूं, ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सतेंद्र कुमार, गुड्डू विशाल, संगम वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेनू, कुमकुम, निब्या, सरिता और अंतिमा। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार। रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। और ये पत्र हमारे पास आया है पीतम लाला के मकान के पास ककराला बदायूं से। भेजने वाले डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, धर्मवीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव और अमजद अंसारी। और इनके साथ है समस्त परिवार व दोस्त। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से है फजुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुविया निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। श्रोताओं, ये पत्र आया है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से। पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता कुमारी, दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। श्रोताओं, ये पत्र आया है इंदिरा बिहार रायगढ़ से। भेजने वाले वसीम अकरम नूरजहां।

डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्ला अकरम नूरजहां, राजनांद गांव से याकूब आसमा यूसुफ इमरान इरफान, जेल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और अदीबा तिवारी। श्रोताओं आप ही आइए आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज से सजा हुआ ये गीत, जिसे लिखा समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम बलमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली पर। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है मीरगंज बरेली यूपी से, भेजने वाले हैं ओपी सागर। और इसके अलावा ये पत्र आया है मोहल्ला गड़ैया बरेली से, मोहम्मद कैसर शमसी, मोहम्मद अजीम शमसी, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नवीद, रजिया शमसी और बेबी। करनाल से है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता और जगमोहन प्रजापति। परिमहल कासगंज से है आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, शमसुल कमर। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज, समरीन, मोहम्मद रेहान, मायरा नूर। क्रांतिकारी छात्र परिषद भूड़ बरेली से रजत कुमार, ब्रह्मचार्य कुमार। खुर्जा उत्तर प्रदेश से है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से है मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से है डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से है लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। चंडीगढ़ से है सतीश अनेजा, विमला अनेजा। श्रोताओं, ये पत्र आया है पीर बहोड़ा बरेली से, भेजने वाले आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तबा खान, पोतरी आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। लुधियाना पंजाब से हैं अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, अदीबा कौर। बिहार कॉलोनी महासमुंद से हैं वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन, असमा फकीर। बुलंदशहर से हैं बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। सरगुना मैन पार्ट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा। बिहार कॉलोनी लोनी से है परवीन डोम, शरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जेल रोड मथुरा से है वसीम, आसमा, अकरम। श्रोताओं, ये पत्र आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। डोगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश तानी, सूरज सुजला, ज्योति ठाकुर और रियांश।

पंचकुला सेक्टर 9 से हैं स्वानी चुंग, गोविंद चुंग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भवीर और धींगरा। अस्तपुरा जिला मऊ यूपी से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत नीरज का, संगीत SD बर्मन का, फिल्म का नाम शर्मीली।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने को है। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के कार्यक्रमों से।

0: कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता की वार्ता नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति चित्रण।
1: मिथिला में एक पुरानी कहावत है, जे माटी में जन्मल माटी ओकर माए, अर्थात जो इस धरती की मिट्टी में जन्मा है यही मिट्टी उसकी माँ है। नागार्जुन को समझने के लिए इस कहावत को केवल पढ़ना काफी नहीं, इसे महसूस करना होगा। वैद्यनाथ मिश्र, जो साहित्य जगत में नागार्जुन नाम से जाने गए, नागार्जुन ने प्रकृति को किसी विश्वविद्यालय में नहीं सीखा, ना किसी पाठ्य पुस्तक से जाना, उन्होंने उसे जिया। नंगे पांव खेत की मेलों पर चलकर, नदी की कच्ची मिट्टी में पांव धंसाकर, बरसात में भीगते हुए, यही कारण है कि उनकी कविताओं में प्रकृति किसी सजावटी तत्व की तरह नहीं आती, वह एक जीती जागती उपस्थिति बनकर आती है। डॉक्टर राम विलास शर्मा ने इस संदर्भ में कहा है कि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति एक स्वतंत्र चेतना के रूप में आती है, वह केवल पृष्ठभूमि नहीं बनती बल्कि वह वही बिंदु है जहां नागार्जुन हिंदी काव्य परंपरा के अन्य कवियों से अलग हो जाते हैं। घर से दूर जाने पर जो पीड़ा होती है वह किसी भी कवि की कलम को धारदार बना देती है। नागार्जुन का जीवन बेहद घुमक्कड़ रहा, श्रीलंका, वर्मा, काशी, कलकत्ता, दिल्ली, बहुत जगह घूमे, लेकिन उनका मन हमेशा तरौनी के उन खेतों में, उन लीचियों की छाया में, मिथिला के उस नम और उर्वर भूगोल में डूबा रहा। सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता में जब वे अपनी मातृभूमि को याद करते हैं तो वह स्मृति केवल एक व्यक्तिगत भावना नहीं रहती, वह एक पूरे भूगोल की जीवंत तस्वीर बन जाती है। वे उस प्रकृति को याद करते हैं जो आम लोगों की जिंदगी में घुली मिली है। नागार्जुन की यात्राएं जितनी भौतिक थी उतनी ही काव्यात्मक भी थी। जब वे हिमालय की ओर गए तो उन्होंने वहां देवताओं का निवास नहीं खोजा बल्कि एक ऐसी प्रकृति को खोजा और देखा जो अपनी भव्यता में भी बेहद यथार्थवादी और ठोस थी। उनकी बहुचर्चित कविता बादल को गिरते देखा है हिंदी काव्य में प्रकृति वर्णन का अद्वितीय उदाहरण है। यह कविता किसी पर्यटक के अनुभव की तरह नहीं लिखी गई है, इसमें वह व्यक्ति बोल रहा है जो वहाँ रुका है, जिसने उस एकांत को भोगा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल यह केवल बर्फ का वर्णन नहीं है, यह एक ऐसी भाषा है जो चित्र बनाती है। हिमालय की झीलों में तैरते हंसों का दृश्य कवि ने इस तरह उकेरा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीले हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यह प्रकृति के प्रति एक खोजी दृष्टि है जो रहस्य से ज्यादा सच की तलाश करती है। नागार्जुन जन कवि थे, उनकी प्रकृति केवल सौंदर्य की वाहक नहीं थी, वह जीवन के संघर्ष की भी गवाह थी। जब सूखा पड़ता है, जब बाढ़ आती है, जब अकाल के कारण खेत सूने हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तब प्रकृति का कौन सा चेहरा सामने आता है। नागार्जुन ने इसे बेहद मार्मिकता से, बड़ी गंभीरता से दर्शाया है। उनकी कविता अकाल और उसके बाद इस दृष्टि का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। इसमें प्रकृति और मनुष्य की भूख एकाकार हो जाती है, एक हो जाती है। यह एकमात्र कविता है जहां चूल्हा, चक्की, छिपकली और चूहा सब एक साथ पीड़ित हैं, सबकी वेदनाएं एक साथ हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी

0: भर की आँखें, कई दिनों के बाद कौवे ने खुजलाई पाखें, कई दिनों के बाद। यहाँ प्रकृति और प्राणी जगत एक साथ भूखे हैं। चूल्हा रोना और चक्की का उदास होना ये केवल अलंकार नहीं है, ये उस गांव की वास्तविकता है जहाँ हर चीज एक दूसरी से जुड़ी हुई है। मनुष्य, जानवर और निर्जीव वस्तुएं भी नागार्जुन की यही ताकत है कि वे जब प्रकृति को देखते हैं तो उसे मनुष्य के दुख से अलग नहीं करते। वर्षा ऋतु नागार्जुन की प्रिय ऋतु थी। बिहार के मिथिलांचल में वर्षा का अर्थ केवल पानी नहीं, वह जीवन का पुनर्जन्म है। कदंब के फूल जो केवल सावन में खिलते हैं, नागार्जुन के लिए उस पूरी वर्षा चेतना का प्रतीक। टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदंब, फूले कदंब। सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आँखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है छूले कदम फूले कदम। कदम्ब के फूल टहनियों पर गेंद की तरह झूल रहे हैं। यह उपमा किसी काव्यशाला में नहीं मिल सकती, यह उन आँखों से आती है जिन्होंने सावन की बारिश में भीगते हुए कदम्ब के पेड़ को देखा है। बादल का कोप नहीं रीता, बारिश अभी थमी नहीं, इस पंक्ति में सावन की अनंत उपस्थिति है। नागार्जुन के हेमंती बादलों का यह चित्र भी अद्भुत है, जहां वे नवंबर के बादलों की तुलना बोनस पाए मजदूर से करते हैं। यह प्रकृति का लोकतंत्रीकरण है। प्रकृति के भाव को श्रमिक वर्ग की भाषा में कहना यह नागार्जुन ही कर सकते हैं। ओह कैसे मूड में इधर को निकल आए हैं हेमंती बादल। हिंदी कविता में प्रकृति चित्रण की समृद्ध परंपरा रही है। सुमित्रानंदन पंत ने प्रकृति को एक स्वप्निल कोमल सौंदर्य दिया। महादेवी वर्मा ने प्रकृति को अपनी वेदना का साझीदार बनाया। निराला ने प्रकृति में विद्रोह और शक्ति देखी और नागार्जुन इन सब से बिल्कुल अलग खड़े हैं। उनकी प्रकृति में न स्वप्न है, न रहस्य है, न वेदना की ओट है। उनकी प्रकृति जमीन पर है, उसी जमीन पर जहाँ किसान हल चलाता है, जहाँ मजदूर स्त्री भोर में उठकर पानी लाती है, जहाँ बच्चे आंगन में धूप सेकते हुए गुड़ चाटते हैं। यह प्रकृति देखी हुई नहीं, जी हुई है। नागार्जुन ने एक बार कहा था कि वे कविता इसलिए नहीं लिखते कि कविता लिखनी है, वे इसलिए लिखते हैं क्योंकि भीतर से कुछ उमड़ता है और जो भीतर उमड़ता है वह है मिट्टी, वह है नदियाँ, वह है पेड़, वे है पक्षी, वे किसान, वे मजदूर, वह पूरा जीवन संसार जो उन्होंने बचपन से अपनी आंखों में भरा था। हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण के अनेक रूप मिलते हैं, लेकिन नागार्जुन का रास्ता सबसे अलग और सबसे ईमानदार है। उनकी प्रकृति में कोई मुखौटा नहीं है, वहाँ धूप असली है, बारिश असली है, ठंड असली है और उस ठंड में ठुठुरता इंसान भी असली है। फूले कदम्ब हो या बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हो या सिंदूर तिलकित भाल, नागार्जुन की प्रत्येक प्रकृति कविता एक खिड़की है जिसे खोलते ही सामने आ जाती है वह धरती जिसने उन्हें जन्म दिया, जिसे उन्होंने जिया और जिसके लिए उन्होंने लिखा। यही उनकी प्रकृति चेतना की सबसे बड़ी ताकत है और यही कविता उन्हें सबसे अलग भी करती है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्रवण कुमार गुप्ता की वार्ता नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति चित्रण। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा। राग होगा जोग कौस।

हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए आज का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं बेला सुलाखे की स्वर में गाए कुछ भजन। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस रचना के साथ।

इस भजन के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना बेला सुलाखे के स्वर में भजन। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सनम तेरी कसम फिल्म के इस गीत के साथ, आवाज किशोर कुमार की है।

लोफर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप कार्यक्रम का ये गीत। आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाजों में सीता और गीता फिल्म से ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप आकाशवाणी लखनऊ का ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की

0: भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: वीपीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के

0: सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जन संचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण

0: गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे, सोनू निगम का गाया हुआ। समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री।

0: पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत से सवारा है MM क्रीम ने।

0: साथ आ।
1: आइए अब सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है जतिन ललित ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो।

0: आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं, जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

फिल्म पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

0: इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।
1: इन प्यार की राहों में तेरा ही सहारा।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: 1.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज गए हैं। अब लीजिए सुनिए पुरानी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में पतंगा फिल्म के इस गीत के साथ।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे फिल्म पतंगा से, आवाजें सी रामचंद्रा और शमशाद बेगम की थी। आगे बढ़ चलते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में आर पार फिल्म से।

0: मिस्टर एंड मिसेस 55 इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में। आगे बढ़ चलते हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अधिकार से किशोर कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गीत है।
1: कुछ पर कमाई डूब जाती है, कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई।

0: आती है।
1: अच्छा कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है, कहो तुम कुछ भी लेकिन ये समझदारों का कहना है।
2: क्या
1: लुटा देती

ने, अरे जम्फरों ने मार डाला है। तेरी दिवाली की खातिर मेरा निकला दिवाला है। मैं कड़का हूँ,

0: नकल का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। नकल का जेब से तू सेंट कपड़ों में लगाती है। कमाता हूँ बहुत कुछ पर कमाई डूब जाती है।
1: बसें भी शहर में चलती हैं।
2: तो चलने तो क्या हुआ,

पहन कर रेशमी सा, अरे मोरी सा हमोरी हमोरी सा, नखरबाली नखरबाली सुन ले मोरी सा, सारे गामा पाधानी सा, सानी धापा मागारे सा, इडी साड़ी तू है निपट अनारी, पहने लेछमी छाली, पहन कर रेशमी साड़ी, तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे ऐसे चलती हो, तुम ऐसे ए ए ए ए ए मैं बात

0: बीजुना जाके कह जे हाथ मलो शों
1: दबाते मुंह में सिगरेट आप ऐसे ऐसे चलते हैं
0: है?

0: आती है। भांडू नका नहीं दम भांडू नका नहीं दम मेरे पास दम नहीं है
1: मालिश तेल मालिश कैंपेन।

कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। अब आगे बढ़ चलते हैं और आज का प्रोग्राम ओल्ड इज गोल्ड का जो आखिरी नगमा है ना, अब उसका समय हो चला है। आपको सुनवाने जा रहे हैं आज का कार्यक्रम का आखिरी गीत मनमौजी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।

इस गीत के साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन AIR ऐप से आपके स्मार्टफोन और DTH पर आप हमारा ये प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन, राग है जोग कौस।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण चंद्र गुप्ता का विचित्र वीणा वादन, राग था जोग कौस। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

मीडियम वेव 400.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में आप समाचार सुन सकते हैं।

0: और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार

0: गुजराल डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साई रमुजतबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission Grameen or Viksit Bharat G. Ramji Act 2020 has been across the country today. Under the act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese

0: In men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chesterler Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 11:10 हो गए हैं। अब मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की दूसरी व अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:50 पर अपनी कल की पहली सभा के विविध कार्यक्रमों के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।